मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर, एफएम पर 100.1 मेगा हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 जुलाई 2026 ईस्वी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12,000 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का

0: वंदना कार्यक्रम के आरंभ में आपने अनुराधा पौडवाल और साथियों को सुना। आइए अब सुने अनूप जलोटा की आवाज में भक्ति रचना।
1: पकड़े जाते हैं और माता यशोदा के सामने लाए जाते हैं। महाकवि सूरदास जी के शब्दों में सुनिए।

कर कन्हैया मुस्कुरा कर बोले, हाँ मैया मैंने ही माखन खाया। ऐसी बातें सुनकर माँ यशोदा कहती है कि अपने घर में क्या कमी है जो तू दूसरों के घर में जाकर माखन चुराता है।

यशोदा मैया आश्चर्य से उन्हें देखने लगती और कहती है, कन्हैया क्या तू सच बोल रहा है? कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ग्वाल बाल के रूप में कई देवता भी थे। मां तू तो बड़ी भोली है ना, तू उन्हें पहचान भी ना सकी। मैं

भक्ति संगीत का वंदना कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आइए अब सुने अशोक सन्होत्रा की आवाज में ये भक्ति रचना।

0: अभी आप भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए चिंतन, वाचक स्वर स्वामी धर्मेंद्रानंद जी का है।
1: प्रेम की आज का चिंतन है प्रेम। वैसे तो इंसान अपने विचारों के अंदर प्रेम को अनेकों प्रकार से परिभाषित करता है, लेकिन अगर हम प्रेम को समझने का प्रयास करें कि प्रेम है क्या, तो उस प्रेम की गहराई तक हमें पहुंचना पड़ेगा। जो प्रेम आज हम अपनों के प्रति कहते हैं कि मेरा देश के प्रति प्रेम है, या मेरा समाज के प्रति है, या अपने रिश्तों के प्रति है, तो वो एक दिखावा मात्र है। वो एक इंसान की निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए है। अगर सच्चाई में उस प्रेम को समझना है, तो समझिए आज हमारी सृष्टि, जिसकी रचना उस ईश्वर ने की है, उस परमात्मा की रचना से समझने का प्रयास कीजिए कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति एक पेड़ के पास से गुजरा। उस पेड़ को देखकर उसे हैरानगी होती है कि इस पेड़ को आग लगी हुई है, लेकिन इस पेड़ के ऊपर जो पंछी बैठे हैं वो उड़ नहीं रहे हैं। वो व्यक्ति उन पंछियों से कहता है कि पंछियों, आप इस पेड़ के ऊपर से उड़ते क्यों नहीं, क्योंकि जबकि आपके पास पंख हैं, तुम क्यों नहीं उड़ते? पंछियों, पंख तुम्हारे पास, कि तुम्हारे पास पंख है फिर तुम उड़ते क्यों नहीं? तो आगे से वो पंछी जवाब देते हैं उस व्यक्ति को समझाने के लिए कि इंसान, इस पेड़ ने हमें क्या नहीं दिया? सर्दी से इसने हमें बचाया, गर्मी से इसने बचाया, और पता नहीं कैसी कैसी परिस्थितियों में इसने हमारी रक्षा की है। और आज अगर इस पेड़ के ऊपर समस्या आ गई है और इसे हम छोड़कर उड़ जाएं, ये कहाँ का इंसाफ है? तो वो पंछी जवाब देते हैं कि फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पा कि हमने इस वृक्ष के फल खाए और इसके पत्तों को गंदा किया है। यही हमारा धर्म है, जले इसी के साथ, कि हमें इसी के साथ जल जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो प्रेम को परिभाषित तो वो पंछी कर रहे हैं। आज इंसान जिस कोख से, जिस परिवार से, जिस समाज से जन्म लेता है, आज उसी का हत्यारा बनकर बैठा है। कितनी हत्याएं वो करता है, कितने पाप करता है, क्यों करता है? अगर उसका प्रेम होता अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, तो आज हमारे इस देश के अंदर जो आतंकवाद है, ऐसी घटनाएं ना घटित होती। ये किसी व्यक्ति का अहित नहीं कर रहा है, ये अपना ही बुरा कर रहा है, लेकिन ये इंसान अज्ञानतावश, क्योंकि इसने उस प्रेम का जो बिगड़ा हुआ रूप है उसको प्रेम समझ लिया है, और सच्चाई में, उस हकीकत में, उस प्रेम की जड़ तक नहीं पहुंच पाया है। और जब जब एक इंसान की ऐसी हालत हुई है, तब तब उस इंसान को समझाने के लिए एक ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का इस धरा के ऊपर पदार्पण हुआ है। हकीकत में, सच्चाई में, हमें महापुरुषों ने प्रेम करना सिखाया है। अगर हम अपने इतिहास की तरफ नज़र दौड़ाकर देखें, तो उस वक्त देखिए कि कैसे लोगों के अंदर प्रेम होता था। हर इंसान उस इंसान के प्रेम को समझने के लिए दौड़ता था, और वो उस मिलने के लिए इतनी उस इंसान के अंदर ये बेताबी रहती थी कि कब वो व्यक्ति मुझे मिले। और आज आज अगर किसी इंसान का अपना अपना ही व्यक्ति अगर कोई हमें फ़ोन करता है या हमें बुलाता है, तो हम पहले कह देते हैं कि नहीं, मैं घर पे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। कहाँ गया वो प्रेम? क्योंकि आज का प्रेम केवल स्वार्थों की पूर्ति के लिए, जहाँ से स्वार्थों की पूर्ति होती है, इंसान वहीं पे अपनापन दिखाता है, और जहाँ से नहीं होती, वहाँ से इंसान अपना मुख मोड़ लेता है। और हमारे महापुरुषों ने हमेशा ही इंसान को एक प्रेम की सही डेफिनेशन, परिभाषा दी है कि प्रेम है क्या। प्रेम त्याग मांगता है, और जहाँ त्याग है वहीं पे प्रेम है, और इसी प्रेम को इंसान को बाहरी नहीं, अपने ही अंतःकरण में ऐसे महापुरुषों की संगत, ऐसे महापुरुषों के साथ मिलकर ही प्राप्त हो सकती है, जिस प्रकार से उस पंछी और उस पेड़ के साथ मिलकर उस

0: को परिभाषित किया है, और यही एक संदेश है पूरी मानवता को कि वो इस प्रेम को अंतःकरण से स्वीकार करे, न कि बाहरी तौर पे।
1: ये था आज का चिंतन। वाचक स्वर स्वामी धर्मेंद्रानंद जी का था। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। किसान भाइयों के लिए प्रातः है 7:10 पर। खेती हर वास्ते कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा बेल वाली सब्जियों की देखभाल। दिन में 12:50 पर खेत खलिहान में सुने जानकारी जिसका विषय रहेगा बूंद बूंद सिंचाई पद्धति व इसके लाभ। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 7 बजे। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे मूंगफली की फसल में कीट नियंत्रण, प्रकाश पाश और फेरोमोन ट्रैप्स से कीट नियंत्रण, मधुमक्खी पालन और उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम की भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सुनेंगे वार्ता बीजोपचार के लाभ। वार्ताकार होंगे राजेश गोदारा। लोक संगीत के कार्यक्रम मरु मंगल में सुबह 9:10 पर कलाकार होंगे बैरागनाथ। मानस गान सुनेगा सुबह 7:20 पर। इसमें आज आप सुनेंगे भाग संख्या 306। कार्यक्रम सुप्रभात का समय रहेगा 7:30। इसमें आज विषय रहेंगे संयम ही जीवन है, सदाचार, सांप्रदायिक सद्भाव। कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनिएगा कुछ भजन सुबह 8:45 पर। और चंद गजलें पेश की जाएंगी 12:30 पर और रात्रि 9:15 पर। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में युगल गीत सुनेंगे सुबह 9:30 पर। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत सुनेगा सुबह 10 बजे। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे सुबह 11 बजे, दोपहर 2:30 पर और शाम 7:45 पर। कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम सुनेगा दोपहर 12:05 पर। महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुने दिन में 1:05 पर। इसमें विषय रहेंगे संयम कितना जरूरी, वर्चुअल व्यस्तता के घेरे में बुजुर्ग, बातें हल्की फुल्की घर में आंगन क्यों था जरूरी, पेट को डस्टबिन न बनाएं, बचे खाने का स्मार्ट इस्तेमाल। युवाणी कार्यक्रम सुनेगा शाम 5 बजे। सैरैकी कार्यक्रम होगा शाम 6:05 पर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज सुनेंगे रात्रि 8 बजे। इसमें सुनेंगे जानकारी और गीत। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा रात्रि 10:30। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम होंगे दोपहर 3 बजे से। संदेश टू सोल्जर शाम 4 बजे। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और विनिर्माण के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की क्षमता मजबूत करेगा। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रसेल्स में कल आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, लेकिन अब ये घटकर 12,000 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। श्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री यादव भारत और विदेशों के प्रमुख वस्त्र निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से बातचीत करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पेविलियन का भी अवलोकन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक से भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को मजबूत गति मिलेगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा की जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद की एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: the series 1-0. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेतीहरा वास्ते। आज इसमें जानकारी का विषय है बेल वाली सब्जियों की देखभाल।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज आप बात कर रहे हैं जब बेल वाली सब्जियां की खेती के बारे में, तो अंग बारे में सारों पहले तो आप आ चीज जान लें कि जी बेल वाली सब्जियां होवे अंग जी का फूल होवे वे मोनोइशियस होवे, यानी कि कहने को मतलब कि एक ही बेल पे जी का नर और मादा पुष्प है वह अलग अलग लागे और अंग जी की क्रिया बाजी की मुख्य रूप कीटंग द्वारा ही हुए। जलवायु और आप जमीन की बात कर लें तो आप बेलों की अच्छी वृद्धि खातर 25-30 डिग्री तापमान होना जरूरी है और अंग ऊपर पाड़ा को बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ है। माटी की बात करें आप तो अंग खातर उपजाऊ दोमट माटी सारूं बढ़िया रहे जिठे पानी निकास की व्यवस्था अच्छी हुए और अंग खेती आप गर्मी और बिरखा ऋतु दोनों खातर ही कर सका है। बेल वाली सब्जियां में बात करें भाई लोगों तो हमें प्रमुख सब्जियां में आवे कद्दू, तोरी, लौकी, ककड़ी, टिंडा, खीरा, तरबूज और खरबूजो। अब आगे उपयुक्त किस्म के बारे में जब आप बात करा तो लौकी में आवे पूसा समर प्रोलिफिक लोंग जिन आप PSPL भी कह देवे जिकी लंबी लौकी होवे और एक आवे पूसा समर प्रोलिफिक राउंड जिकी गोल लौकी होवे। और बात करा तो पूसा मंजरी, पूसा नवीन, पूसा मेघदूत और अर्का विहार। कद्दू में बात करा भाई लोगों तो कद्दू में आवे पूसा विश्वास, पूसा अलंकार, अर्का चंदन। खीरा में बालम खीरा, पाइन सेट, पूसा संयोग। करेला में कोयम्बटूर लौंग, पूसा दो मौसमी, अर्का हरित, पूसा विशेष, महिको करेला, ग्रीन लौंग। टिंडा की किस्म की जब आप बात करें तो इनमें आवे बीकानेरी ग्रीन, दिल पसंद, टिंडा लुधियाना, हिसार सिलेक्शन एक और अर्का टिंडो। ककड़ी की जब आप बात करें किस्म की तो इनमें है लखनऊ अगेती और अर्का शीतल। तरबूज में देखा तो तरबूज में शुगर बेबी, आसाही यामेटो, दुर्गापुरा मीठा, दुर्गापुरा केसर, अर्का ज्योति। संकर किस्म में बात करें तो मधु। खरबूजा की किस्म देखा तो इनमें दुर्गापुरा मधु, पंजाब सुनहरी, पंजाब हाइब्रिड, अर्का जीत, हरा मधु, पूसा मधुरस और RM43। धारीदार तुरई में भाई लूंगो पूसा नसदार और चिकनी तुरई में गलगल तुरई जिन आपा पूसा चिकने भी कह देवा ऐंगी किस्म है। बुआई के टाइम की बात करें भाई लूंगो तो तरबूज, खरबूज और ककड़ी ने आपा अब फरवरी और मार्च महीना में और तोरी, खीरो, लौकी, कद्दू, करेलो और टिंडा की जी की ग्रीष्मकालीन फसल की बुआई है आपा अब फरवरी और मार्च महीना में कर सका है। बीमारियों की रोकथाम खातर भाई लोगों आपने जी का बीज है बने बोण पहले 22-2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब में आपा उपचारित कर लेवा। अब भाई लोगों आपने जी का बीजों को अंकुरण है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान पर अच्छी तरह हो कौन सके है तो आपा बीजा ने सीधा खेत में ना बोगे प्लास्टिक की थैलिया में भी माने लगा सका है। थैलिया में एक तिहाई भाग चिकनी माटी, एक तिहाई भाग बाड़ू और एक तिहाई भाग गोबर की खाद मिलाकर आपा एक थैली में दो बीजा ने बो सका है और बिंग वातावरण जी को है वो गर्म बनाए रखने खातर रात के टाइम पे थैलिया ने आपा ढक्के रखा। खाद और उर्वरक पे जब भाई लोगों आपा नजर डाला तो गोबर की खाद 200-250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 80-100 किलो प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 किलो प्रति हेक्टेयर और पोटाश 40 किलो प्रति हेक्टेयर आपा दे सका है। देसी खाद फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की एक तिहाई मात्रा आपा बुआई के टाइम पे आपने जमीन में मिला देवा। बचड़ी नाइट्रोजन की मात्रा बना आपा दो बराबर भागा में बांट के टॉप ड्रेसिंग करके खड़ी फसल में पहली बार बुआई के 25-30 दिन बाद और दूसरी बार फूल आने के टाइम आपा दे सका है। लौकी खातर 4-5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर सही रहे इमें बुंटाऊ बुंटा की दूरी तो अपन रखनी है 1.5 मीटर और कतारों कतार की दूरी अपन रखनी है 2.5-3 मीटर। कद्दू पर जब आप नजर डालना तो भाई लोगों इमें 4-5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर रख सका और कतारों कतार की दूरी 3-4 मीटर और बुंटाऊ बुंटा की दूरी 1.25 मीटर। करेला पर भाई लोगों बीज की मात्रा 4-5 किलो प्रति हेक्टेयर और कतारों कतार की दूरी 1.25 मीटर और बुंटाऊ बुंटा की दूरी 0.5 मीटर। तोरी में भाई लोगों आपा देखा तो तोरी में बीज की मात्रा आपा 4-5 किलो प्रति हेक्टेयर रख सका हाँ इमें कतारों कतार की दूरी आपा 1.5 मीटर रखा और बुंटाऊ बुंटा की दूरी आपा लगभग 0.5 मीटर थोड़ी सी ज्यादा रख सका हाँ। ककड़ी में भाई लोगों आपा बीज की मात्रा लेवा 2 किलो बीज प्रति हेक्टेयर इमें कतारों कतार की दूरी आपा रखा 1.5 मीटर और बुंटाऊ बुंटा की दूरी आपा रख देवा 0.5 मीटर थोड़ी सी ज्यादा। टिंडा में भाई लोगों बीज की मात्रा 4-5 किलो प्रति हेक्टेयर और कतारों कतार की दूरी 1.5 मीटर और बुंटाऊ बुंटा की दूरी 0.25 मीटर आपा रख सका हाँ। खरबूजा में भाई लोगों बीज की मात्रा 1.5-2 किलो प्रति हेक्टेयर, कतारों कतार की दूरी आपा इमें रख सका 2 मीटर और बुंटाऊ बुंटा की दूरी आपा 0.5 मीटर थोड़ी सी ज्यादा रखते हैं। तरबूज में भाई लोगों

0: बीज की मात्रा आपा ले सका 4 साढ़े 4 किलो प्रति हेक्टेयर, बुनता हूँ बुनता की दूरी जी के बार राख का आपा 1 मीटर और कतारों कतार की दूरी आपा राखा 2.5 मीटर। तो अपने किसान भाई आ सब बातों को ध्यान में रखते हुए सारा काम धंधा करें, पर अब तो टाइम इतो ही है, हूँ चालू खेत का नी। राम राम सा, राम राम।
1: बेल वाली सब्जियों की देखभाल। अभी किसान भाई इस विषय पर खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए लोक भजन। कलाकार हैं भजनी मान सिंह।

जन सुन रहे थे, कलाकार थे बजरी मान सिंह। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए मानस गान। आज इसमें सुनते हैं भाग संख्या 306, मुख्य स्वर रविंदर साठे और कविता कृष्णा मूर्ति का है।

रावण को चुनौती देने के लिए श्रीराम ने एक ऐसे वाण का संधान किया जो उसके छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूलों को काटता गिराता तरकस में वापस आ गया। उपस्थित असुर समुदाय आतंकित हो गया। सबको भयभीत देख रावण ने अपने पराक्रम और निर्भयता का उद्घोष किया।

मानस गान की भाग संख्या 306 अभी आपने सुनी। मुख्य स्वर रविंद्र साठे और कविता कृष्णमूर्ति का था। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज नमस्कार देवेंद्र शर्मा की ओर से।

चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज नमस्कार देवेंद्र शर्मा की ओर से।

श्रोताओं, संयम ही जीवन है। मानव जीवन ईश्वरीय सृष्टि का सबसे अनमोल उपहार है। इस जीवन को सुंदर, सफल और सार्थक बनाने के लिए कई मानवीय गुणों की आवश्यकता होती है, जिनमें संयम सर्वोपरि है। सूक्ति संयम ही जीवन है का अर्थ है कि अपनी इंद्रियों, मन, विचारों और आदतों पर नियंत्रण रखना ही वास्तविक जीवन है। इसके विपरीत असंयमित जीवन पतन और विनाश का कारण बनता है। श्रोताओं, जिस प्रकार एक नदी यदि किनारों को तोड़कर बहे तो वह बाढ़ का रूप ले लेती है और तबाही मचाती है, ठीक उसी प्रकार बिना संयम का मानव जीवन भी दिशाहीन होकर नष्ट हो जाता है। श्रोताओं, संयम का अर्थ खुद को बंधनों में जकड़ना या इच्छाओं को जबरन मारना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा और इच्छाओं को सही दिशा देना है। संयम मुख्य रूप से तीन स्तरों पर आवश्यक है: वाणी का संयम, इंद्रियों का संयम और मन का संयम। श्रोताओं, संयम में व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर रहता है, उसे सुख दुख लाभहानि विचलित नहीं करते। जो व्यक्ति अपने मर्यादा में रहता है, समाज उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखता है। असंयम से मनुष्य की ऊर्जा व्यर्थ के कार्यों में नष्ट होती है, जबकि संयम से वह अपनी ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यों में करता है। स्वतः संयम कोई कठिन तपस्या नहीं, बल्कि एक अनुशासित जीवन शैली है। वर्तमान समय में जहां चकाचौंध और भौतिक सुखों की होड़ लगी है, वहां संयम की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। यदि हम अपने जीवन को खुशहाल, तनाव मुक्त और प्रगतिशील बनाना चाहते हैं, तो हमें संयम को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना ही होगा, क्योंकि सच ही कहा गया है, संयम ही जीवन है और असंयम ही मृत्यु है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: श्रोतो, मानव समाज को सुव्यवस्थित, सभ्य और सुंदर बनाए रखने के लिए कुछ नियम और मूल्य निर्धारित किए गए हैं। उन मूल्यों में सदाचार का स्थान सबसे ऊंचा है। सदाचार दो शब्दों के मेल से बना है, सत और प्लस आचार। सत का अर्थ है अच्छा या श्रेष्ठ और आचार का अर्थ है व्यवहार या आचरण। श्रोतो, इस प्रकार श्रेष्ठ और नैतिक आचरण को ही सदाचार कहा जाता है। सदाचार वह कसौटी है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। जिस समाज या राष्ट्र के नागरिक सदाचारी होते हैं, वह समाज हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है। श्रोतो, सदाचार कोई एक अकेला गुण नहीं, बल्कि यह कई मानवीय गुण मूल्यों का एक सुंदर गुलदस्ता है। सत्य बोलना, सत्य का मार्ग चुनना, ईमानदारी, अपने काम और व्यवहार में निष्पक्ष रहना, विनम्रता रखना, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना और समाज के कल्याण के लिए सोचना, सहनशीलता और क्षमाशीलता, दूसरों की गलतियों को माफ करना और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना। श्रोतो, महान दार्शनिकों का मानना है कि धन खोने पर कुछ नहीं खोता, स्वास्थ्य खोने पर थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन यदि चरित्र खो जाए तो सब कुछ खो जाता है। सदाचार मनुष्य के चरित्र की नींव है, एक

सदाचारी व्यक्ति का चरित्र इतना मजबूत होता है कि कोई भी लालच या भय उसे अपने मार्ग पर डिगा नहीं सकता। श्रोताओ, सदाचार जीवन का सच्चा आभूषण है। रूप, सौंदर्य और धन दौलत समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति का सदाचार और उसके अच्छे कर्म युगों युगों तक जीवित रहते हैं। स्वामी विवेकानंद और मदर टेरेसा जैसे महान व्यक्तित्व आज भी अपने सदाचार के कारण पूजी जाते हैं। यदि हम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं और देश को उन्नति के शिखर पर लाना चाहते हैं, तो हम अपने विचारों और शब्दों और कर्मों में सदाचार को अपनाना होगा।

0: श्रोताओ, भारत एक ऐसा अनूठा देश है जिसे दुनिया भर में विविधता में एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदायों और भाषाओं के लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं। इसी विविधता के बीच आपसी प्रेम, आदर और तालमेल बनाए रखना ही सांप्रदायिक सद्भाव कहलाता है। श्रोताओ, एक दूसरे के त्योहारों, रीति रिवाजों और आस्थाओं का दिल से सम्मान करना भी है, यह हमारे देश की आत्मा है, जिसके बिना भारत की प्रगति और अखंडता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्रोताओ, भारतीय इतिहास इस बात का गवाह है कि यहाँ सूफी संतों और भक्ति आंदोलनों के संतों ने हमेशा मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना है। कबीर, नानक, अमीर खुसरो और रहीम जैसे महापुरुषों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को आपसी भाईचारे का पाठ पढ़ाया। स्वतंत्रता संग्राम में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जैसे सभी सभी ने कंधों से कंधा मिलाकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। किसी भी देश की बाहरी सुरक्षा जितनी जरूरी है, उतनी ही आंतरिक सुरक्षा भी आवश्यक है। यदि देश के अंदर अलग अलग संप्रदायों के लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो देश कमजोर हो जाएगा। सांप्रदायिक सद्भाव राष्ट्र को आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में मदद करता है।
1: नफरत की

0: अभी आप कार्यक्रम सुप्रभात सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदी घोष, ताड़ध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
4: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमा सा चेहरा।
5: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
6: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को

0: दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
1: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारे और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज, टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Cabinet clears 2 elevated road projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his 2 siblings begins today

0: मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर 2 शाहराह प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इक्तसादी उमूर की काबीना कमेटी ने वाराणसी में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और सफर में लगने वाला वक्त कम से कम करने की खातिर इन प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में नामानिकारों को जानकारी देते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर के अलावा दूसरा प्रोजेक्ट वाराणसी शहर में तकरीबन 43 किलोमीटर तवील एलिवेटेड कॉरिडोर से मुतालिक है, जिसमें 6 और 4 लेन होंगी। इस पर तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: मरकजी काबीना ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ सेमीकॉन के दूसरे मरहले को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन के पहले मरहले की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए मस्कूरा स्कीम का मकसद आलमी सतह पर सेमीकंडक्टर मंजरनामे पर भारत को आगे रखने के सरकार के अहद के सिलसिले में कदम बढ़ाना है। वजीर मौसूफ ने बताया कि सेमीकॉन के दूसरे मरहले के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए की मालियत की सरमायाकारी होने की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: जनाब वैष्णव ने कहा कि मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ मोबाइल फोन तैयार करने की स्कीम को भी मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। IRCTC ने इस नई बीटा वेबसाइट को बेहतर बनाते हुए 4 अहम इकदाम किए हैं। मुसाफिर अब सभी जुमरों में सीटों की दस्तियाबी को देख सकेंगे। इसके अलावा टिकट बुक करने का अमल अब और ज्यादा सहल हो जाएगा। इसके साथ साथ वेबसाइट में अब मुसाफिरों की तफसीलात महफूज रहेंगी, जिससे उन्हें दोबारा बुकिंग करने में आसानी होगी। इसके लिए वेबसाइट का पता है irctc.co.in/e-ticket/। दिल्ली के तारीखी लाल किले कॉम्प्लेक्स को 15 अगस्त को होने वाली 80वीं योम आज़ादी की तकरीबात तक आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। योम आज़ादी के जश्न के लिए जारी तैयारियों के मद्देनज़र महकमे आसार कदीमा ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। महकमे के एक अहलकार ने कहा है कि योम आज़ादी से कबल हर साल इस तरह के अहकाम जारी किए जाते हैं। मध्य प्रदेश से पहली बैन अलाक्वामी फ्लाइट सर्विस का आगाज किया गया है। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से मुत्तहिद अरब अमारात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली बराह रास्त परवाज को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम मोदी का हमेशा से ये मानना है कि एक आम आदमी को भी हवाई जहाज में सफर करने का मौका मिलना चाहिए। रियासत की एविएशन पॉलिसी इसी नजरिए के तहत तैयार की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ओडिशा के शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ बड़े भाई

0: भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज शुरू हो रही है। रथ यात्रा के सालाना फेस्टिवल के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहन मखसूस रथों में गुंडीचा मंदिर जाते हुए लोगों को दर्शन का मौका फराहम करते हैं। रथ यात्रा को देखने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों अकीदतमंद वहां जमा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडीचा मंदिर के अपने सालाना सफ़र पर रवाना हो रहे हैं और पुरी के पवित्र शहर की फ़ज़ा जय जगन्नाथ की अकीदतमंदों के नारों से गूंज रही है। पुरी में आज सुबह सवेरे से तेज़ बारिश होने के बावजूद लाखों अकीदतमंद बारिश की परवाह न करते हुए पवित्र रथों का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। ख़राब मौसम के तनाजुर में हुक्काम चौकसी बरत रहे हैं। मौसमियात महकमे ने खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर पुरी में बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: उधर झारखंड में सालाना रथ यात्रा पूरी रियासत में रिवायती जोशोखरोश और अकीदत के साथ हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जगन्नाथ चक्कानेन लीला चलवारे।
3: रांची के दुर्वा में तारीखी जगन्नाथपुर के मंदिर में आज सुबह मजहबी रसूमात का आगाज हो गया है। दोपहर बाद देवी देवताओं को रथ पर विराजमान कराए जाने के बाद शाम 5 बजे रथ यात्रा मासीबाड़ी के लिए रवाना होगी। जिला इंतजामिया ने सीसीटीवी निगरानी और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकारों की तैनाती समेत वसी हिफाजती इंतजाम किए हैं। खुंटी में मकामी इंतजामिया ने कल तारीखी रथ मेले के लिए किए गए हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अली।
0: गुजरात में अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में भी 400 साल कदीम जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा शुरू हो गई है। इसके लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद दर्शन के लिए मंदिर के अहाते में इकट्ठा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के शुभ मौके पर भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा पूरी मजहबी अकीदत और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आज सुबह मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने जमालपुर में तारीखी जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शिरकत की और भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके बाद रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने सुनहरी झाड़ू से रथों के रास्तों को साफ करने की अलामती पाहिंद विधि की रस्म अंजाम दी और बाजाब्ता तौर पर रथ यात्रा का आगाज किया। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के अजीम शान रथ दर्जनों अखाड़ों, भजन मंडलियों और लोक रक्स करते हुए ग्रुपों के हमरा 16 किलोमीटर के रिवायती रास्ते से गुजर रहे हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जनाब अमित शाह ने कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता जगन्नाथ रथ यात्रा पुख्ता अकीदे, एतमाद और भक्ति की अलामत है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र रथ यात्रा से भारत के शानदार सकाफती विरसे और भगवान के तई गैर मुतजलजल अकीदत की अक्कासी होती है। केरलम में सबरीमाला मंदिर के कपाट महाना पूजा अर्चना के लिए आज खोले जा रहे हैं। ये मंदिर इस महीने की 21 तारीख तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। अकीदतमंदों को कतार के वर्चुअल निज़ाम के जरिए ही वहां दाखिल होने की इजाज़त होगी ताकि लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ न हो सके। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाज़ों के तहफ़ के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कमज़ोर करने के लिए कल भी ईरान पर हमले किए। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहमियत के हामिल आबी गुजरगाह पर ईरान की गिरफ्त को कमज़ोर करने की खातिर फ़ौजी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के मुख्तलिफ मुतबादिल रास्तों का जायज़ा ले रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत समेत खित्ते में अमरीकी फ़ौज के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका के साथ बातचीत करने का ईरान का कोई मंसूबा नहीं है। अब कुछ खबरें फीफा वर्ल्ड कप की।

0: मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। अमेरिका के एटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1-2 से हरा दिया। वक्फे से पहले कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी थी, लेकिन खेल के 55वें मिनट में एंथनी गोर्डोन ने इंग्लैंड की तरफ से पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया, जबकि लुटारो मार्टिनेज ने 90वें मिनट में गोल करके 2-1 से अर्जेंटीना की जीत में अहम रोल अदा किया। अब इतवार की रात को फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में शोपिया गार्डन्स में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 शुरू होगा। भारत को इस सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने मंगल को बर्मिंघम में पहले 1 मैच में इंग्लैंड को 6 से हराया था। सीरीज का तीसरा और आखिरी 1 मैच इतवार को लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले इलाके और उड़ीसा में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मशरकी राजस्थान, मगरबी राजस्थान और मगरबी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के बाज हिस्सों में आज शदीद गर्मी का इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में जुजवी तौर पर बादल छाए रहने और हवा में नमी के साथ मौसम गर्म रहने की पेशगोई की गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप ने भारत और बरतानिया के दरमियान हुए जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदे के नाफिजुलअमल होने की खबर को अपने पहले सफ़े की बड़ी खबर के तौर पर शाये किया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि ये भारत बरतानिया शराकत दारी में एक अहम लम्हा है। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने पार्लियामेंट हाउस में 2 मुंतखब अरकान मंसूर अली खां और रजनीश कुमार अग्रवाल को राज्यसभा की रुकनियत का हलफ दिलाया। इस खबर को प्रताप ने पहले सफ़े पर पेश किया है। सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए की लागत वाली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इस खबर को कई अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर 2 प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। भगवान जगन्नाथ और उनके 2 भाई बहनों की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज उड़ीसा के शहर पुरी में शुरू हो रही है। अमेरिका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज़ के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को 1-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में सुनते हैं आज भजन।

0: अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम में भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्रालय ने रेल टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए IRCTC की वेबसाइट का नया वर्जन जारी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्य में आज मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस आयोजित किया जाएगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन आज ओडिशा के पुरी में। प्रदेश के विभिन्न कृष्ण मंदिरों से भी रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्रालय ने रेल टिकट बुकिंग

0: को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी की वेबसाइट का नया वर्जन जारी किया है। आईआरसीटीसी ने इस वर्जन में चार बड़े सुधार किए हैं। पहला, इसमें कठिन कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। साथ ही यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। इसमें टिकट बुकिंग करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट पर यात्रियों की जानकारी सेफ हो जाएगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान होगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि ये परियोजना शेखावाटी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और दूरगामी महत्व की है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने, फील्ड में जाकर कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने और परियोजना को तय समय सीमा में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने समझौते के अनुरूप सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता से पूरा करने और जरूरत के अनुसार पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत और यूके के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता देश की आर्थिक प्रगति का नया अध्याय है। उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि इस समझौते से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री शेखावत ने कहा कि भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी साख मजबूत की है और इसी नीति के तहत अनेक देशों के साथ व्यापारिक सहयोग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत कल जयपुर से ब्रिटेन के लिए पहली निर्यात खेप रवाना की गई। ये खेप जयपुर के कनकपुरा स्थित कॉनकॉर्ड डिपो से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। पहली खेप में 4 कंटेनरों के माध्यम से हस्तशिल्प, रत्न आभूषण और औषधि क्षेत्र से जुड़े उत्पाद भेजे गए। जयपुर में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना पर राज्यस्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने योजना की उपयोगिता और एमएसएमई क्षेत्र को मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि ये योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और उनकी आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि योजना से उद्यमों को कारोबार बढ़ाने, रोजगार सृजन और प्रदेश के आर्थिक विकास को मजबूती मिल रही है।
1: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 लॉन्च किया गया है, ताकि अगर कोई एमएसएमई या एविएशन सेक्टर जिसको वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद किसी प्रकार का रीपेमेंट फाइनेंसिंग में, लेबर डिप्लॉयमेंट में या एक्सपोर्ट क्रेडिट्स में कोई दिक्कत आता है तो ये ECGLS में से आप बोरो कर सकते हैं। तो राजस्थान में अभी तक 19,000 कंपनीज ने इस क्रेडिट लाइन का फैसिलिटी अवेल किया है। बैंकर्स के साथ विचार विमर्श हुआ जो इस क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में अक्रॉस राजस्थान डिसमिनेट करेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में आज से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दौरान गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 15 जुलाई से शुरू हुए गर्भवती महिलाओं की सघन स्क्रीनिंग के 5 दिवसीय विशेष अभियान की भी निगरानी की जाएगी। इसके लिए निदेशालय से 15 चिकित्सकों के दल फील्ड में भेजे गए हैं। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों की पहचान कर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जयपुर में आज विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस

0: आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से पहली बार जयपुर में हो रही यह कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगी। इसमें सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देने, फर्जी एजेंटों से बचाव और प्रवासियों के कल्याण, निवेश और पर्यटन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। अजमेर में पुलिस ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन ने बताया कि महिला ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की बात स्वीकार की है।
1: पूछताछ में बात सामने आई कि अवैध रूप से उसने बांग्लादेश से भारत में पिछले महीने जून में एंट्री की और काम के तलाश में घूमते घूमते जयपुर और फिर ब्यावर और फिर अजमेर में कल अजमेर आना उसने स्वीकार किया और उसे डिटेन किया गया। डिटेन करके सारी चीजें पता की गई, उसको डिटेंशन सेंटर पे भेजा गया है। इसमें विशेष रूप से जो योगदान रहा वो सीआईडी सीबी की जो टीम है उनका और किशनगंज थाना की टीम का रहा और अभी उससे पूछताछ जारी है। अभी तक जो बात सामने है स्वयं ही जो बॉर्डर है जो लैंड बॉर्डर है उसी से क्रॉस करके और फिर आगे।
0: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देश और विदेश के लोगों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कामना की है कि ये यात्रा सभी के जीवन में श्रद्धा, सेवा, सद्भाव और लोक कल्याण की भावना को और अधिक मजबूत करे। इस अवसर पर प्रदेश के रथ यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर में जगदीश मंदिर से राजसी वैभव के साथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा में 21 घोड़े, शाही लवाजमा, विभिन्न समाजों की आकर्षक झांकियां, भजन मंडलियां और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे। पाली और बारा में भी रथ यात्रा को लेकर लोगों में उल्लास का माहौल है। नई दिल्ली में आयोजित भारत टैक्स 2026 में राजस्थान का पवेलियन देश विदेश से आए खरीदारों और आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जयपुर के गुलाबी नगर की थीम पर तैयार इस पवेलियन का प्रवेश द्वार ऐतिहासिक अजमेरी गेट की तर्ज पर बनाया गया है। पवेलियन में बगरू और सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट, कोटाडोरिया, बंधेज, लहरिया, हस्तशिल्प, होम फर्निशिंग और रेडीमेड परिधानों सहित राजस्थान के वस्त्र उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। यहां बगरू ब्लॉक प्रिंट और टाई एंड डाई कला का लाइव प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार ये पवेलियन प्रदेश के वस्त्र उद्योग और शिल्पकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का प्रभावी मंच बन रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्रालय ने रेल टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए IRCTC की वेबसाइट का नया वर्जन जारी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्य में आज मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस आयोजित किया जाएगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन आज ओडिशा के पुरी में। प्रदेश भर के विभिन्न मंदिरों से भी रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है मरुमंगल। कलाकार हैं बैरागनाथ।

मरुमंगल कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं।

मरुमंगल में आज कलाकार हैं बैरागनाथ।

अभी आप मरुमंगल कार्यक्रम सुन रहे थे। कलाकार थे बैरागनाथ। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सुनते हैं युगल गीत। ये कार्यक्रम का पहला नगमा मुकेश और कंचन की आवाज फिल्म धर्मात्मा से। इंदिवर की रचना को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आइए सुने फिल्म धनमान का ये नगमा। आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की।

श्रोताओं आइए सुने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है दो रास्ते।

युगल गीत इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म धर्म कर्म से। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

आशा भोसले और आर डी बर्मन को सुनते हैं फिल्म गुमनाम में। हसरत जयपुरी की रचना को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

अपना देश। सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अभी आप युगल गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरोध गीत।

अनुरोध गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। देवेंद्र शर्मा की ओर से श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है फिल्म एक दूजे के लिए से, आवाजें लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की। आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और पसंद करने वाले हैं आप सभी। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से पसंद करने वाले हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। पद्मा टाकी नेपानगर मध्य प्रदेश से पसंद करने वाले हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। इसी गीत को पसंद करने वाला है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। नागपुर महाराष्ट्र से कमल सानी, पिंकी सानी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म अजनबी से। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, और पसंद करने वाले हैं आप सभी। बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। हनुमानगढ़ बस स्टैंड फाजिलका से पसंद करने वाले हैं रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं यहीं से कीर्ति वर्मा और सिद्धक वर्मा, प्रियांशी वर्मा। श्रीकर्णपुर से पवन कटारिया, चालू कटारिया, समीर कटारिया। और इसी गीत को पसंद करने वाले हैं गांव जलालपुरा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम आर्यन, लविश और मुनेश देवी प्रजापति। चक चार MD पत्रोड़ा से पसंद करने वाले हैं मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से पसंद करने वाले हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबिका निष्का और तन्मय गजबिये। सालपुरा जिला बारा राजस्थान से पसंद करने वाले हैं सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं बणवाला हनुमंता फाजिल का पंजाब से विनोद मायल, सीमा लक्षिता, यशिका विद्या देवी और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। गांव कलाना तहसील भादरा से हनुमानगढ़ से पसंद करने वाले हैं विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, कृष्ण मोयल, हनुमान सारण, किरडू राम जाइया जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं कोटवा नारायणपुरा बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। गांव 4M से पसंद करने वाले हैं कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत सिंह, जसदीप। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, शिया सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कोसर। मोहली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह, सुपचंद्र बजाज। इसी गीत को पसंद करने वाला है दादरीगेट बिहानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, सुर कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। लीजिए आप सभी की पसंद पर ये नगमा। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं।

एक बार फिर से सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म गाइड में। शैलेंद्र की रचना को संगीत दिया है एसडी बर्मन ने, और पसंद करने वाले हैं नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, पवन शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र सुथार, कालू मिस्त्री और मोहन लाल सुथार। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं नगराना से लालचंद नाथ, रामपुरा मोटोरिया से मुरारी लाल शर्मा, अजमेर से सुरेंद्र सिंह और

गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर से शोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू, मोहित, हेमंत और इनके बहुत सारे साथी इसी गीत को पसंद करने वाले हैं। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला ओम कुमार सुरलकर, नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तारण, कृष्ण मुकेश तारण, रामचंद्र तारण, कपिल देव तारण और हिमानी जाखड़। चंडीगढ़ से इस गीत को पसंद करना चाहा है सतीश आनेजा और बिमला आनेजा। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओम प्रकाश साई और इसी गीत को पसंद करने वाला है मेन बाज़ार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमकर, प्रमोद और प्रदीप। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, विजया तायड़े, बसंतराव भोजने और पीएस नाहवलकर। इसी गीत को पसंद करना चाहे है मानसी कविता अरोड़ा, नई दिल्ली मोतीनगर से। गुजरात गांधीनगर से पसंद करने वाले हैं परवीन सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। एकता कॉलोनी रोहतक से पसंद करने वाले हैं सीताराम कागड़ा, बबीता बोट, निखिल कागड़ा, तन्वी बोट और अंकित कागड़ा। गांव आरण से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, बिमला सोनू, ममता दीक्षा, मोक्ष, सुशांत विक्रम और पूनम चालिया। लीजिए आप सभी की पसंद पर ये नगमा।

मुकद्दर का सिकंदर। श्रोता सुनते हैं, इस फिल्म में किशोर कुमार को अनजान की रचना को संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने, और पसंद करने वाले हैं गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण, हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बेमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवन रेणवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रणजीत राम करोड़ीवाल, सुरेंद्र भादु। इसी गीत को पसंद करने वाले बीड़ महाराष्ट्र से नंदकिशोर गट्टे, संगीता साक्षी, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय टवुल और बीपी कुलथे। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शैना हसन, अक्सा नाजिया हाफिया, इब्राहिम सद्दाम, अदीब और इनके परिवार के सदस्य। गांव हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से पसंद करने वाले हैं जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। गांव घमड़िया से जगदीश डोकिया, परमिला डोकिया, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अम्मना, तमन्ना, सायना, विष्णु डोकिया और ईवा धारणिया। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं ताज अंसारी, गुलाब साबिर राहिर, मेहराज जहां, ये आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। भोपालगढ़ राजस्थान से पसंद करने वाले हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। बठिंडा रोड मंडी डब्बावाली से पसंद करने वाले हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। किशनगंज बिहार से पसंद करने वाले हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोदपुरी। उदयपुर राजस्थान से पसंद करने वाले रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी, बाबू भाई चांदीवाला। और इसी गीत को पसंद करने वाले सदर बाजार कोरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनू वर्मा। करणवीर हाउस बुच्चो कैंचिया बठिंडा पंजाब से पसंद करने वाले हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू एकम, दमन अभिज्योत। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सेफुल्ला सबाहत, कीरत हुजरे और रेहान शेख। भादरा अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, साहिल राघव, उपेश कुमार, मुरारी लाल शर्मा, ममता, मीतू, कीनू, मदन लालचंद शर्मा, फुसाराम मिल, महावीर लोहा।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अनुरोध गीत कार्यक्रम इस हिस्से में आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज आपके साथ में मैं देवेंद्र शर्मा। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया फिल्म हाथ की सफाई से। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गुलशन बावरा की रचना को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। और पसंद करने वाले हैं जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी सौरव, शैना शर्मा और निमान शर्मा। चक 10 एसटीपी लालगढ़ जाटान जिला श्रीगंगानगर से पसंद करने वाले हैं रामेश्वर निरानिया, सुमन, दिव्या, नूतन, पंकज, मेहरचंद, हेमू, मनीषा और बिरजलाल निरानिया। गांव ढांडी लाल खां, जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खान, सोहेल खान, जुनेद खान, मुखराम और आरिफ खान, एयान खान, अरशद खान, अरमान खान और इनके बहुत सारे साथ।

को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, और पसंद करने वाले हैं जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी सौरव, शैना शर्मा और निमान शर्मा, चक 10 SDP लालगढ़ जाटान जिला श्रीगंगानगर से पसंद करने वाले हैं रामेश्वर निरानिया, सुमन दिव्या, नूतन पंकज, मेहरचंद, हेमू, मनीषा और बिरजलाल निरानिया, गांव ढांडी लाल खां, जावेद खां से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खां, सोहेल खां, जुनेद खान, मुखराम और आरिफ खान, एयान खान, अरशद खान, अरमान खान और इनके बहुत सारे साथी। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं पिपलोड गांव सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। 19 GD से पसंद करने वाले हैं गुरतेज औलख। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं विजय पाटिल, चिरंजीव ज्ञानेश्वर पाटिल, तेजस्विनी पाटिल और इनके बहुत सारे सदस्य। ये महाराष्ट्र से, जिला महाराष्ट्र से, जिला जालना महाराष्ट्र से पसंद करने वाले हैं। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड से जोधपुर राजस्थान से पसंद करने वाले रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से पसंद करने वाले हैं फैसल इमाम, मोहम्मद अफाजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी और इनके बहुत सारे सदस्य घर के। संग्रिया से गोवर्धन दास, कृष्णा देवी माहिर, केदार चित्रा, युवांशी बद्रा और इनके परिवार के सदस्य। गांव कोहला हनुमानगढ़ से पसंद करने वाले हैं महावीर सुथार, दूलीचंद सुथार, सुनील, मोहनलाल, नरेंद्र, भजनलाल और इनके बहुत सारे घर के परिवार के बहुत सदस्य। कस्बा गुन्नौर यूपी से पसंद करने वाले हैं फारूक अली खान, फैजी फताज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हजारी लाल पुरोहित, मोनी पुरो पारिक, भूपेंद्र पारिक। इसी गीत को पसंद करने वाले शादुल शहर से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। जसपुर उत्तराखंड से पसंद करने वाला है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियायत रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। जिला नांदेड़ यताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद, अरुणव, दुर्गेश्वरी राखी और तृप्ति जायसवाल। लीजिए आप सभी की पसंद पर यह नगमा।

लता मंगेशकर को सुनते हैं फिल्म रोटी में। इस गीत को पसंद करना चाहा है बाबा कोटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राकेश राजेश ऋषिता। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिहा, अनस और रेहान। जनकपुरी व सहारनपुर से जॉन डिक्रेस्टो, रोजी डिक्रेस्टो, पाल और विलिस डिक्रेस्टो। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं मानसा से जगदीश राय गर्ग। अकली दीवान मध्य प्रदेश से पसंद करने वाले हैं रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, काजल मीनाक्षी और दिलीप कुमार चंद्रवंशी। पटेल नगर मलोट से पसंद करने वाले हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। झज्जर हरियाणा से पसंद करने वाले हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। विकास कॉलोनी बीकानेर राजस्थान से पसंद करने वाले हैं डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, गौरव शाही, राजश्री। इसी गीत को पसंद करना चाह है गांव जाखोद राजस्थान से समुदल खटक, बिमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। हितेंद्र दास पसंद करने वाले हैं आसाम से और इसी गीत को पसंद करना है शेगांव बुलढाणा महाराष्ट्र से संतोष काले, तेजस काले, लोकेश काले। और मेहरनगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र से पसंद करने वाले हैं अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रिंस परिणीता सिद्धांत और अर्जुन गवाणकर। लीजिए आप सभी के पसंद पर यह नगमा।

श्रोताओं आइए अब सुने फिल्म हमराज का ये नगमा। आवाजें महेंद्र कपूर की, गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत

रवि का। इस गीत को पसंद करने वाला है नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ से डॉक्टर गौरव कंडियारा, मननु कंडियारा और लड्डू कंडियारा। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक और शोभा नायक। अमरगढ़ तहसील सादुलशहर से पसंद करने वाले कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत कौर, गुरनूर, हरविंदर मान, राजा सिंह, कुलविंदर कौर और के एस मान। सादुल शहर से ही पसंद करने वाले हैं ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बेरक, जैतक बेरक और मिका बेरक। मंडी गोलूवाला से पसंद करने वाले हैं बिरजलाल चौहान और नीरज कुमार चौहान। आरायण से बिमला जयपाल, ममता जयपाल, दिशा नव्या भव्या और पूनम जयपाल। मंडी डब्बावाली से मसीता से पसंद करने वाले हैं दर्शन लोट, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी सागर और हनी लोट। लीजिए आप सभी की पसंद पर ये नगमा।

श्रोताओं आइए अब सुने लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को फिल्म क्रांति में। गीत रचना संतोष आनंद की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को पसंद करने वाले हैं आप सभी। पटेल नगर मलोड पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। हरिपुरा पंजाब से महेंद्र बिश्नोई, वेद प्रकाश बिश्नोई, अमित बिश्नोई, अजय बिश्नोई और ज्ञान बिश्नोई। मक्खू पंजाब से पसंद करने वाले हैं बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर और मुनीश बजाज। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान और रवनीत और निशु। लीजिए आप सभी की पसंद पर ये नगमा।

अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। दुर्गा राम नाइक की तरफ से आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुने, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है संगम।

अभी आपने सरगम फिल्म का गीत सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। आइए अब सुने कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है बेटा। आवाज़ें दी हैं अनुराधा पौडवाल और साथियों ने।

आइए श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत सुने। अफलातून फिल्म से आवाजें दी हैं आलिशा चिनाई और साथियों ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है दिलीप सेन ने।

अभी आपने अफलातून फिल्म का गीत सुना, आइए अब सुने कार्यक्रम का अगला गीत। रचना आनंद बख्शी की है और धुन तैयार की है आरडी बर्मन ने, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म आपकी कसम।

श्रोताओं, सुनिए कार्यक्रम का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म है साजन का घर।

आइए श्रोता वो अब सुने आई मिलन की रात फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की स्वर में। रचना समीर की है और धुन तैयार की है आनंद मिलिंद ने।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुने। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में, फिल्म का नाम है सच्चा झूठा।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुने पारस फिल्म से। स्वर दिए हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने। रचना इंदिवर की है और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

आइए श्रोताओं अब सुने आसपास फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। रचना आनंद बख्शी की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

आइए सुने पति पत्नी और वो फिल्म का गीत, महेंद्र कपूर और आशा भोंसले के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ समय बाद दोपहर 12:05 पर कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत खेत खलिहान। यह कार्यक्रम होगा दिन में 12:50 पर। इसमें आज जानकारी का विषय रहेगा बूंद बूंद सिंचाई पद्धति व इसके लाभ। दिन में 1 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले की जाएंगे। 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। इसमें चर्चा का विषय रहेंगे संयम कितना जरूरी, वर्चुअल व्यस्तता के घेरे में बुजुर्ग, बातें हल्की फुल्की, घर में आंगन क्यों था जरूरी, और पेट को डस्टबिन न बनाएं। इसके साथ साथ कुछ हिंदी फिल्मी गीत भी आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे। दिन में 2 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार रिले की जाएंगे। फिल्म संगीत यह कार्यक्रम होगा 2:30 पर। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे दिन में 3 बजे से। संध्या 4 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले संदेश टू सोल्जर। संध्या 5 बजे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे जनसंख्या नियंत्रण, स्वरोजगार सृजन, एक भारत श्रेष्ठ भारत और आज का इतिहास विषय पर भी चर्चा की जाएगी। संध्या 5:30 पर धीनेरी बातें हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले की जाएगी। संध्या 6:05 पर कार्यक्रम होगा सैराइकी। 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और संध्या 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले की जाएंगी। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल में

चर्चा मूंगफली की फसल में कीट नियंत्रण, प्रकाश पाश और फेरोमोन ट्रैप से कीट नियंत्रण, मधुमक्खी पालन और उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। और आज चौपाल कार्यक्रम में आप एक वार्ता सुनेंगे। बीजोपचार के लाभ वार्ताकार हैं राजेश गोदारा। संध्या 7:45 पर फिल्म संगीत, एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, यह कार्यक्रम होगा रात की 8:00। 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, समाचार संध्या 8:45 पर अंग्रेजी में समाचार रात के 9:00 हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएंगी। सुगम संगीत, यह कार्यक्रम होगा रात की 9:15 पर। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे राजस्थान दर्शन, जिसे हम जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। रात के 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण और उनका प्रसारण समय। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 kHz पर हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की खड़ी में दिन के 12:05 होने वाले हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार दुर्गाराम नायक की तरफ से। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में अपने गीत संगीत पर बात करेंगे और ऐसे ही कुछ बेहतरीन संगीत से सजे हुए गीतों का आनंद लेंगे। दोस्तों, गीतों में मानव मन की भावनाएं, हर्ष, उल्लास, प्रेम, मोहब्बत, दुख दर्द के भाव सरल रागात्मक रूप में प्रकट होते हैं। गीत और संगीत एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। संगीत और संगीतकारों के बारे में दोस्तों कहा भी जाता है ना कि सैसे सैतक सात सुर और सात सुरों में राग उतना ही संगीत है जितनी तुझ में आग। और जो कलाकार हैं, गायक हैं, उनके बारे में भी एक खूबसूरत बात कही जाती है कि तनमद धनमद राजमद और विद्या मद है हद, जब उपजत हैं रागमद तो सभी मद हैं अरथ। और दोस्तों, मधुर संगीत और गीत मनुष्य में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। गीत संगीत का क्षेत्र इतना व्यापक कि इसमें प्रकृति, पृथ्वी, आकाश एवं मानव मन की सारी कल्पनाओं का ब्रह्मांड समाया हुआ है। इंसान का बचपन लोरियों में झूलता व सोता है और यौवन प्रेम में मदमस्त होकर गीतों के साथ नाचता है। यही गीत संगीत की ताकत है। दोस्तों, समय अच्छा बुरा कैसा भी हो, हमें उसे उसी रूप में जीना चाहिए और जीवन के हसीन पलों को गीत गाते हुए चलना चाहिए।

दोस्तों, प्रेम को, प्यार को, दर्द को, बिछोड़े को, मोहब्बत को जीने के लिए गीतों का सहारा लेना पड़ता है। ये गीत संगीत हवा की तरह चलते रहते हैं, ये झरनों की तरह चंचल होते हैं, इनमें सागरों जैसी गहराई और पर्वतों पहाड़ों से भी अधिक ऊंचाई होती है। तो प्रेमी हृदय यही कहते हैं।

जी हाँ दोस्तों, गीत संगीत सुख दुख भरे जीवन का इंद्रधनुष है। इन गीतों में एक और फूलों की खुशबू है, कलियों की चटक है, पक्षियों की चहचहाट है और कलरव है।

0: तारों की जगमगाहट है, चौदहवीं के चांद जैसा उज्जवल सौंदर्य है, तो दूसरी ओर कांटों की चुभन है, मेघों की गर्जना है, चंद्रमा की मीठी मीठी चांदनी है, सूरज की तीखी तपन है, जीवन की कोमलता व कठोरता का गंगा यमुनी संगम गीतों में दिखाई देता है।
1: एक तराना, नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

दोस्तों, कवियों की कल्पना में, उनके हृदय रूपी खेत में, सुख दुख के, उमंगों के, खुशियों के, मोहब्बत के, दर्द के गीत जन्म लेते हैं। और जब उन गीतों को मखमली आवाज़ और मधुर संगीत मिल जाए, तो वो गीत, वो संगीत अमर हो जाते हैं।

दोस्तों, गीत संगीत न होता तो संसार दुखी और निराशा में होता। गीत दुख दर्द को मिटाने वाला, शोक को समेटने वाले उपदेश हैं। मानव मन की आकांक्षाएं, इच्छाएं गीतों में सजीव मिलती हैं। आदमी का उल्लास, उमंगें, करुणा, रुधन, सुख दुख की कहानी गीतों में चित्रित होती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज कलाकार हैं पंकज उधास।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान। आज जानकारी का विषय है NPK और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन।
1: किसान भाइयों, किसी भी फसल की अच्छी पैदावार खातर किया गया अच्छा किस्म का बीज या सिंचाई पर्याप्त संभव को नहीं हुआ, बल्कि पौधे ने संतुलित पोषण मिलना भी तो ही जरूरी है। जे पौधे ने अपना टाइम पर सही मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व मिल जाए तो उत्पादन अपनी फसल को बढ़ जाए, गुणवत्ता भी सागे सुधरे, रोगों का प्रकोप भी किएगा अपनी फसल पर कम हुए और जगह अपना किसान भाई पांगी आय में भी किए वृद्धि हुए। बात करें किसान भाइयों, खेती में पोषण के महत्व की तो जगह तरीकों मानव के शरीर ने स्वस्थ रहने खातर संतुलित भोजन की जरूरत पड़े, बी प्रकार ही पौधा ने भी किया आपके विकास खातर न्यारे न्यारे प्रकार का पोषक तत्वों की जरूरत हो। पौधा जका है वह माटी, पानी और हवाओं किए गए पोषक तत्व प्राप्त करें और इनमें कई तत्व ज़्यादा मात्रा में और कई तत्व बहुत कम मात्रा में पौधा ने जरूरी हुए। आवश्यक पोषक तत्वों की जब बात करा तो इनमें प्रमुख है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जब बात करा तो इनमें आवे जस्तो, लोहा, बोरान, मैग्नीज, तांबा, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। आ सारा तत्वों को आपको न्यारो न्यारो काम हुए। बात करें किसान भाइयों, NPK के चीज़ हुए तो NPK जो है वो तीन मुख्य पोषक तत्वों को संक्षिप्त रूप हुए और इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आवे। आ तीनों ने मुख्य पोषक तत्व के हो जावे और क्योंकि यह पौधे ने अंगी आवश्यकता सारो ज़्यादा रेवे। जी हाँ, तीनों को संतुलित उपयोग करो जावे तो अपनी फसल को विकास समान रूप हो सी, पर किसी एक तत्व की जो कमी हो जाए और दूसरा सारा उर्वरक देने के बावजूद उत्पादन जो है वो किसान भाइयों प्रभावित रहे। नाइट्रोजन के महत्व की बात करा तो अब सारों पहला आप बात करा नाइट्रोजन ने पौधे की वृद्धि को इंजन की हो जावे। वो पौधे ने क्लोरोफिल को निर्माण करे। क्लोरोफिल के कारण क्या है कि पौधा हरिया दिखाई देवे और सूर्य के प्रकाश में भोजन बनावे। जे पौधे ने नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिले तो पौधा क्या है एक तो तेजियों बढ़े, सागी बांगी पत्तियां की है बड़ी हुए और शाखा ज़्यादा बने, सागी फसल को रंग गहरो हरे रहे और उत्पादन भी बढ़े। और बात करें किसान भाइयों के किसी फसला में नाइट्रोजन की ज़्यादा जरूरत रहे तो नाइट्रोजन की जिकी आवश्यकता है बाग किसान भाइयों लगभग सारी फसलों में हुए, पर विशेष रूप धान, कणक, मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना में इनकी जरूरत की है ज़्यादा रहे। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण की बात करा तो जो खेत में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो अपन क्या है कई प्रकार का लक्षण दिखाई देवे। जी हाँ, पुरानी पत्तियाँ पीली पड़ जाए, पौधा छोटा रह जावे, पौधे की वृद्धि रुक जावे, सगे पौधे को तनो पतलो रहे, बालियाँ छोटी बने, दाना की संख्या भी कम हो जाए और सागी अपनी फसल उत्पादन जो को है वो भाइयों घट जावे।

और इंगा सागे किया के कई किसान भाई ज़्यादा उत्पादन की आशा में किया के आवश्यकता ज़्यादा यूरिया रेट दिए और ज़्यादा नाइट्रोजन देने की हुआ है कि पौधा बहुत ही कोमल हो जाए, कीट रोग बढ़ जावे, सागी पौधा के गिरन लाग जाए, दाना कम भरे और अनावश्यक पत्तियां बढ़ने लाग जाए और उर्वरकों की बर्बादी हुए। नाइट्रोजन कभी भी एक के साथ गए पूरी मात्रा में अपन नहीं रेड़नी चाहिए, इन्हें दो या तीन भागों में देना चाहिए। जिया कि कणक में आधी बुआई के टाइम आधी मात्रा और बाकी की है पहली और दूसरी सिंचाई पर देनी चाहिए। धान में रोपाई के टाइम, बिंग बाद कल्ला निकालते के टाइम, बाड़ियाँ बढ़ने पहला और यूं किया कि नाइट्रोजन को पूरा लाभ मिले। अब बात करें किसान भाइयों फास्फोरस के महत्व की, तो नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि को इंजन है तो फास्फोरस पौधे की जड़ों की शक्ति है। आप पौधा में ऊर्जा को संचार करें, जड़ों को भी विकास करें, फूल और बीज बढ़ने में सहायता करें। फास्फोरस के लाभ की जो बात करा तो मजबूत जड़ प्रणाली को निर्माण फास्फोरस हुआ है, सागे अपनी फसल की बढ़वार जल्दी हुए, जल्दी फूल आवे, दाना भी टाइम पर भरे, अच्छी गुणवत्ता रहे फसल की, सागी फसल जल्दी पके और सूखे सहन करने की किए के क्षमता भी फास्फोरस फसल में ज़्यादा बढ़े। फास्फोरस किसान भाइयों विशेष रूप हूँ चनों, मसूर, मटर, मूंग, उड़द, सरसों, मूंगफली और सारे प्रकार की दलहनी और तिलहनी फसल में लाभदायक हुए। जे खेत में फास्फोरस कम हो जावे तो पौधा के छोटा रह जावे, पौधे की जड़ा कमजोर रहे, पत्तियां गहरे हरे और बैंगनी रंगी हो जाए, फूल कम लगे और फल किए के फलन भी कम हुआ और फसल देर पके। फास्फोरस माटी में कम गति ऊंचा है, इन खातर किया कि इन्हें हमेशा बुआई के टाइम बीज के नीचे या बगल में रेडनो चाहिए, बाद में देनो किए गए इन लाभ कम हो जाए। बात करें किसान भाइयों पोटास की, तो पोटास पौधे की सुरक्षा को काम करे, वो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता ने बढ़ावे, पानी को संतुलन बनाए रखे और फल और दाना की गुणवत्ता में सुधार लियावे। पोटास का मुख्य जगह लाभ है बांग में पौधे ने एम मजबूती देवे, पोटास तना को विकास अच्छा हुआ है, सुखो सहन करने की क्षमता बढ़े, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े, फल किए के मीठा हो जावे और सागे किए के फल अच्छी गुणवत्ता का भी हुए और दाना को जो वजन है वो किसान भाइयों बढ़े। और जे पौधे में पोटास की कमी आवे तो इंगा लक्षणा में पत्तियां का किनारा पीला पड़न लाग जाए, बाद में वह सूख जाए, सागी पौधा कमजोर हो जाए, रोग बढ़न लाग जाए, फल छोटा बने, सागी गुणवत्ता की है कि फसल की घट जावे। और किसान भाई बात करा कि किसी फसल में पोटास की आवश्यकता ज्यादा है, जिया कि आलू, गन्ना, केला, टमाटर, प्याज, कपास और सब्जियां में की है कि पोटास की आवश्यकता ज्यादा रहे और पोटास ने भी किया कि सामान्य बुआई गए टेम ही देना चाहिए। हल्की माटियां में इन्हें दो भागा में भी किसान भाई देश के। और कई किसान भाई केवल किए कि यूरिया रेड है, शुरुआत में फसल हरी दिखाई देवे लेकिन थोड़ा टाइम बाद दाना कम बने, पौधा गिर जाए, रोग बढ़े, गुणवत्ता भी घटे, इनको कारण है फास्फोरस और पोटास की कमी। इन खातर वैज्ञानिक हमेशा संतुलित एनपीके की सलाह देवे। हर फसल की आवश्यकता किसान भाई न्यारी न्यारी हुए और उदाहरण खातर किए कि कणक, धान, मक्का, गन्ना और सब्जियां सारा खतर किया कि न्यारे न्यारे उर्वरकों की सिफारिश करी जावे और इन खतर किया कि बिना जानकारी के उर्वरक अपने नहीं रहना चाहिए। संतुलित पोषण की शुरुआत किसान भाइयों माटी परीक्षण हुए, माटी की जांच में अपना पता चले नाइट्रोजन कितनी है, फास्फोरस कितो है, पोटास कितो है और किसे सूक्ष्म पोषक तत्व की माटी में कमी है, माटी अम्लीय है या क्षारीय, इन आधार पर उर्वरक ने सही मात्रा निर्धारित करी जावे। और किसान भाइयों केवल यूरिया पर अपन निर्भर नहीं रहना चाहिए, एनपीके को संतुलित उपयोग करना चाहिए, माटी परीक्षण अपन ने करवाना चाहिए, उर्वरकों का उपयोग जो को है वो सही टाइम पर ही अपन करना चाहिए, सिंचाई के साथ उर्वरकों को समुचित अपन है प्रबंधन करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग भी किए जरूर करना चाहिए। अब बात करें किसान भाइयों सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यकता पौधे ने बहुत कम मात्रा में हुए पर क्या है कि इनमें किसी एक तत्व की जो कमी हो जाए तो फसल की वृद्धि, उत्पादन और गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़े। अब बात करें किसान भाइयों सूक्ष्म पोषक तत्व के हुए, तो पौधा ने जके तत्व की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में हुए बना सूक्ष्म पोषक तत्व के हुए, इनमें प्रमुख है जस्ता, लोहा, बोरान, मैग्नीज, तांबा, मोलिब्डेनम, क्लोरिन और निकेल। और आपने देश में ज़्यादातर राज्य में किया कि विशेष रूप हूँ

0: जस्ता और बोरोन की एक है कमी जिकी है बा पाई जावे। जस्तो पौधा खातर विकास खातर सारो महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व तो वहाँ में एक है और वो पौधा में बहुत सारा एंजाइम ने सक्रिय करे और वृद्धि हार्मोन्स के निर्माण में सहायता करे। जस्ता का प्रमुख काम यह हुआ है कि जड़ों का विकास कल्ला बढ़ने में किए गए सहायता और नई पत्तियों का विकास प्रोटीन निर्माण दाना का अच्छा विकास और पौधे की बढ़वार यूं तेजी हुआ है। साथ ही धान और कणक मक्का और फल सब्जियां में इन विशेष आवश्यकता अपन रेवे और जस्ता की पूर्ति करने खातर जिंक सल्फेट लगभग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिट्टी में अपन रलानी चाहिए। जरूरी होने पर 0.5% जिंक सल्फेट पत्तियां पर छिड़काव अपन करना चाहिए। गोबर की अच्छी सड़ी खाद को भी प्रयोग करना चाहिए और सागे माटी परीक्षण के आधार पर मात्रा निर्धारित अपन कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों आज को टाइम ही तो ही देव आ गया। राम राम सा राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान में जानकारी एनपीके और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। अब हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में बदलती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है, जिससे संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। भारत में ही डिजाइन, इंजीनियरिंग और एकीकृत की गई ये रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है, जो उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री जालंधर भी जाएंगे, जहां वे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें राजस्थान के भी कुछ स्टेशन शामिल हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ प्रभावी कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल शासन सचिवालय में गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने और संगठित अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, वरिष्ठ अधिकारियों के नियमित फील्ड दौरे और अपराधों की निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया। मुख्य सचिव ने जिलेवार होने वाले अपराधों में होने वाली बढ़ोतरी और कमी की रिपोर्ट 15 दिनों में प्रस्तुत करने को कहा। राज्य में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत पिछले 9 महीनों में 7,000 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2025 में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ के गठन के बाद नशे के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। इस दौरान करीब 692 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए और 30 अवैध एमडी ड्रग फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध खेती के विरुद्ध 17 विशेष अभियान चलाए गए। सरकार का कहना है कि एआई, मजबूत सूचना तंत्र और विशेष टीमों की मदद से नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई की जा रही है। नशे की लत से जूझ रहे लोगों की सहायता और तस्करी से जुड़ी गोपनीय सूचना के लिए मानस हेल्पलाइन 1933 भी संचालित की जा रही है। सवाई माधोपुर के रणथंबोर बाघ परियोजना क्षेत्र में इन दिनों बाघों और अन्य वन्य जीवों की गणना की जा रही है। ये काम फोटो ट्रैप कैमरा पद्धति से किया जा रहा है। वन विभाग के अनुसार गणना के लिए बाघ परियोजना क्षेत्र में 300 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां 600 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से बाघों और अन्य वन्य जीवों की गतिविधियों का रिकॉर्ड तैयार

0: किया जाएगा। गणना का उद्देश्य बाघों की संख्या का आकलन करने के साथ साथ उनके आवास और वन्य जीव संरक्षण की स्थिति का मूल्यांकन करना भी है। जयपुर में कल रोजगार सहायता शिविर लगाया जाएगा। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की ओर से लगाए जाने वाले इस शिविर में विभिन्न क्षेत्रों के करीब 55 निजी कंपनियां भाग लेंगी और 3000 से अधिक रिक्त पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का प्राथमिक चयन करेंगी। शिविर में निर्माण, होटल, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, ई कॉमर्स, रिटेल और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ये शिविर सुबह 10 बजे चित्रकूट स्थित श्री प्रताप स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। शिविर में 10वीं 12वीं स्नातक, आईटीआई डिप्लोमा, नर्सिंग और अन्य योग्यताओं वाले अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ भाग ले सकेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। सबसे अधिक 33 मिलीमीटर बारिश श्रीगंगानगर में दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 40.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर ही प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। जैसलमेर में 39 डिग्री और बीकानेर में 38.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। विभाग ने कल जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के 13 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। इसके साथ ही हमारा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन शाम 6:30 प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत। पेशकश है अलका वर्मा की।

हाजिर हूँ आप सभी का अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत लेकर। मैं आपकी सखी अलका वर्मा। सखियों, जीवन में सफलता पाने के लिए केवल प्रतिभा या मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि एक ऐसा गुण भी होना चाहिए जो इंसान को हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है, और वो गुण है संयम। आजकल की तेज रफ्तार भरी जिंदगी में हर व्यक्ति जल्दी से जल्दी सफल होना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन, वाणी, क्रोध और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख लेता है ना, वही वास्तव में जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो इसी विषय पर इस महीने की कहानी लेकर हाजिर हूं मैं। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन उतना ही अधीर भी था। अगर उसे कोई काम करना है तो करना ही है, और वो सोचता था कि ये काम अभी का अभी पूरा हो जाए, और अगर वो काम उसकी इच्छा के अनुसार ना हो तो उसे तुरंत गुस्सा आ जाता था। पढ़ाई करते समय भी उसका मन जो है वो जल्दी भटक जाता था, और वो बीच में ही किताब बंद कर देता था। एक दिन गांव में एक बहुत ही वृद्ध संत आए, तो आरव के माता पिता जो थे वो उसे उसके पास लेके गए। संत ने आरव को एक छोटा सा पौधा दिया और कहा कि तुम्हें ना इस पौधे को रोज़ पानी देना है, लेकिन कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी जो है वो तुम्हें इस पौधे में नहीं डालना है। तो आरव ने सोचा कि अगर मैं इस पौधे को ज़्यादा पानी दूंगा तो पौधा जो है वो जल्दी बढ़ जाएगा। तो उसने क्या किया कि वो रोज़ सुबह उसमें खूब पानी डालता, सुबह शाम उसमें पानी डालता, और बहुत ज़्यादा पानी डालने से क्या हुआ कि वो पौधा जो है मुरझा गया। और आरव जो है फिर से दुखी हो गया कि मेरा पौधा तो बड़ा नहीं और ये तो मुरझा गया, और वो फिर क्या है दुखी होकर वापस उन्हीं संत के पास गया और उनको अपनी सारी कहानी जो है वो बताई। तो संत ने उसे क्या जवाब दिया ये हम आपको बताएंगे इस गीत के बाद। आवाज़ें हैं सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, गीत लिखा है संतोष आनंद ने और फिल्म का नाम है प्यासा सावन। आप सुनिए ये गीत और चर्चा को आगे जारी रखेंगे।

क्यों, गीत से पहले हम आपके साथ एक कहानी साझा कर रहे थे कि आरव जो है उसका पौधा जो संत ने उसे दिया था वो बहुत ज़्यादा पानी डालने की वजह से मुरझा गया, और आरव जो है वो दुखी होकर संत के पास पहुंचा। तो संत मुस्कुराए और बोले कि बेटा, हर चीज़ भी सीमा में ही लाभ देती है, बिना संयम के किया गया काम नुकसान पहुंचा ही देता है। फिर संत उसे जो है एक नदी के किनारे लेके गए। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो नदी है वो अपने किनारे के भीतर बहती है, इसीलिए खेतों को सींचती है और जीवन भी देती है। लेकिन जब ये नदी अपना संयम खो देती है तो बाढ़ बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। आरव को अपनी गलती समझ में आ गई, तो उसने न केवल पौधे की देखभाल सही ढंग से करना सीखा, बल्कि अपना क्रोध, आलस और अधीरता पर भी नियंत्रण करना जो है वो धीरे धीरे शुरू किया। धीरे धीरे उसका पढ़ाई में मन लगने लगा, उसका व्यवहार बदल गया, और कुछ वर्षों के बाद वही बालक अपने जिले का सबसे सफल अधिकारी बन गया। जब लोगों ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा कि मेरी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है संयम। तो क्यों, कहानी हमें यही सिखाती है कि संयम केवल क्रोध रोकने का नाम नहीं है, संयम का अर्थ है सोच समझकर बोलना, समय का सही उपयोग करना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना और सही समय का इंतजार करना। आज के समय में सोशल मीडिया, मोबाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच संयम पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। जो व्यक्ति अपने समय और आदतों पर नियंत्रण रखता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो आइए आज हम भी संकल्प लें कि हम अपनी वाणी में मधुरता, व्यवहार में विनम्रता और जीवन में संयम को अपनाएंगे, क्योंकि संयम ही वो शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है। तो चलिए, इसी कहानी के साथ अब कार्यक्रम में वक्त है आपको एक और गीत सुनवाने का। तो आज का अगला गीत लिया है हमने फिल्म वारिस से। सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर में ने इसमें अपनी आवाज़ें दी है। संगीत उत्तम जगदीश का है और गीत लिखा है वर्मा मलिक ने।

तो क्यों विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दूर बैठे लोगों को भी गरीब ला दिया है। लेकिन इस वर्चुअल दुनिया ने हमारे कई बार हमारे घर के सबसे अनमोल रिश्तों को हमसे दूर कर दिया है। आज जो है परिवार के ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने अपने मोबाइल, लैपटॉप और सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं। सुबह की जो शुरुआत है वो मोबाइल से होती है और रात का अंत भी मोबाइल से ही होता है। इस बीच का

कि बुज़ुर्ग जिन्हें कुछ पल बातचीत, अपनापन और साथ चाहिए, वो अक्सर जो हैं अकेले रह जाते हैं। बुज़ुर्ग केवल परिवार के सदस्य ही नहीं होते, वे अनुभव, संस्कार और जीवन की सीख का खजाना होते हैं। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन जब उन्हें अपने परिवार के साथ की सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो कई बार उन्हें केवल हम अभी बिजी हैं जैसा आंसर ही मिलता है। ये सच है कि आज की जीवन शैली व्यस्त है। जी हाँ, ये सच है कि आज की जीवन शैली व्यस्त है। नौकरी, पढ़ाई और जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम अपने माता पिता या दादा दादी के लिए दिन में केवल 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकते। अकेलापन केवल मन को ही नहीं, शरीर को भी प्रभावित करता है। लगातार अकेले रहने से बुज़ुर्गों में तनाव, उदासी और आत्मविश्वास की कमी जो है वो बढ़ जाती है, और यदि परिवार के लोग उनके साथ समय बिताएं, उनकी बातें सुनें, किस्से कहानियां सुनें और उन्हें सम्मान दें, तो उनका मन प्रसन्न रहता है और जीवन में नई ऊर्जा जो है उनकी आती है। सचिव, हम ये नहीं कहते हैं कि तकनीक बुरी है। तकनीक बुरी नहीं है, यदि सही ढंग से इसका उपयोग किया जाए तो ये जो तकनीक है बुज़ुर्गों के लिए भी वरदान बन सकती है। वीडियो कॉल के माध्यम से दूर रहने वाले बच्चे रोज़ उनका हालचाल पूछ सकते हैं, उन्हें ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाओं, भजन, संगीत या ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकता है। लेकिन यह याद रखना होगा कि कोई भी स्क्रीन अपनेपन से भरी दो बातें और हल्की सी मुस्कान की जगह जो है वो नहीं ले सकती। यदि आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो आप कुछ छोटे मोटे प्रयास करके उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां जो है वो आप ला सकते हैं। जैसे कि कुछ समय उनके साथ बैठें, उनकी बातें ध्यान से सुनें, उनके अनुभवों का सम्मान करें, खाना उनके साथ खाएं या चाय पिएं, जैसा भी आपको समय मिले आप उनके साथ वो समय व्यतीत करें। बच्चों को दादा दादी और नाना नानी के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करें, उन्हें ये महसूस कराएं कि वे परिवार की सबसे महत्वपूर्ण जो है कड़ी हैं। किसी भी समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुज़ुर्गों का कितना सम्मान करता है। जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, आज उन्हें हमारे सहारे और साथ की आवश्यकता है, तो वो हमें देना भी चाहिए, क्योंकि रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं बल्कि समय देने से मजबूत होते हैं। मोबाइल की स्क्रीन कुछ देर के लिए बंद की जा सकती है, लेकिन यदि अपने के साथ बिताने का जो समय है वो निकल गया तो वो कभी भी लौट कर जो है वो नहीं आएगा। तो तकनीक का उपयोग करें, लेकिन अपने रिश्तों को उससे पीछे नहीं रहने दें। अपने घर के बुज़ुर्गों को समय दें, सम्मान दें और अपनापन दें। और इसी के साथ सुनवाते हैं आपको अगला गीत, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म का नाम है क्रोधी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: किसी ने क्या खूब कहा है सखियों कि छोटा सा आंगन बड़ी सी खुशियां दे जाता था। छोटा सा आंगन बड़ी सी खुशियां दे जाता था।

0: उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: किसी ने क्या खूब कहा है सखियों कि छोटा सा आंगन बड़ी सी खुशियां दे जाता था। छोटा सा आंगन बड़ी सी खुशियां दे जाता था, हर रिश्ते को अपनेपन का रंग दिखा जाता था। घर बड़ा हो या छोटा, दिलों के बीच का आंगन जो है बहुत सारी खुशियां दे जाता था। जी हाँ, कभी कभी भारतीय घरों की जो पहचान थी वो उनका आंगन था। घर के बीचों बीच खुला स्थान जहाँ धूप भी आती थी, हवा भी खेलती थी और रिश्तों की गर्माहट भी बसती थी। आंगन जो है वो घर का हिस्सा ही नहीं, पूरे परिवार के जीवन का केंद्र था। सुबह की पहली किरण आंगन में उतरती थी, वहीं तुलसी का चौराहा होता था जहाँ दीपक जलता था। पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती थी और बच्चों की खिलखिलाहट से पूरा घर जो है वो जीवंत हो उठता था। बच्चों के लिए आंगन सबसे बड़ा खेल का मैदान होता था, वहीं दौड़ते थे, कूदते थे, खेलते थे और दादा दादी से कहानियाँ सुनते थे। गर्मियों की रातों में पूरे आंगन में चारपाइयाँ बिछती थी, तारों भरे आसमान को निहारते हुए परिवार के लोग देर तक बातें करते थे। वह समय केवल साथ बिताने का नहीं बल्कि रिश्तों को मजबूत बनाने का भी था। घर की महिलाएं आंगन में पापड़, बड़ी और अचार सुखाती थी। त्योहारों पर रंगोली बनती थी, दिवाली पर दीयों की पंक्ति सजती थी और करवा चौथ, तीज और अन्य पर्वों की रौनक भी इसी आंगन में दिखाई देती थी। शादी ब्याह के गीत, हंसी मजाक और पारिवारिक समारोह का असली जान भी यही आंगन हुआ करता था। आंगन का महत्व केवल भावात्मक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी था। खुला आकाश और प्राकृतिक रोशनी घर को हवादार रखते थे। धूप आने से घर में नमी कम होती थी और वातावरण जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता था। बच्चों और बुजुर्गों को ताज़ी हवा मिलती थी, जिससे उनका स्वास्थ्य भी जो है वो बेहतर बना रहता था। आज शहरों में जगह की कमी और बदलती जीवन शैली के कारण बड़े आंगन वाला घर जो है वो कम होता जा रहा है, या ये कहें कि ना के बराबर ही है। फ्लैट संस्कृति में खुला आंगन अक्सर नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके भाव को भूल जाएं। सखियों, अगर बड़ा आंगन नहीं है तो घर की बालकनी, छत या छोटा सा खुला कोना भी परिवार को जोड़ने का स्थान जो है वो बन सकता है। वहाँ पौधे लगाइए, शाम की चाय जो है सबके साथ पीजिए, बच्चों के साथ खेलिए और कुछ समय मोबाइल से दूर रहकर अपनों के साथ बिताइए। आंगन केवल ईंट पत्थर के बीच की खाली जगह नहीं था बल्कि वो रिश्तों का खुला आसमान था। वही संस्कार पनपते थे, वही अपनापन खिलता था और वही परिवार की असली धड़कन सुनाई देती थी। और इसी के साथ आइए सुनवाते हैं अगला गीत, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का और फिल्म का नाम है हिना।

देखियो, आज के समय में बच्चों के सामने खाने के अनगिनत विकल्प हैं। चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और पैकेट वाले स्नैक्स जो है वो आसानी से मिल जाते हैं। स्वाद के चक्कर में बच्चे अक्सर जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं या बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कई बार जो है माता पिता भी बच्चों में प्यार की वजह से हर चीज़ की खाने की ज़िद जो है वो उनकी पूरी कर देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारा पेट कोई डस्टबिन तो है नहीं, जहाँ कोई भी मिला जब मिला बस उसमें डाल दिया। हमारा जो पेट है वो एक बहुत ही संवेदनशील अंग है। ये भोजन को पचाकर शरीर को ऊर्जा, ताकत और पोषण देता है। और अगर हम बिना भूख के बहुत अधिक बार या बार बार जंक फूड खाते हैं तो पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव जो है वो पड़ता है, और इसका सीधा असर जो है वो धीरे धीरे मोटापे की ओर, कब्ज, गैस, सुस्ती, दांतों की समस्या और पोषण की कमी के रूप में दिखाई देता है। बच्चों को छोटी उम्र से ही स्मार्ट ईटिंग यानी कि समझदारी से खाने की आदत जो है वो सिखाना ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि भूख लगने पर ही खाना खाएं, भी केवल इसलिए कुछ ना खाएं कि वो चीज़ जो है हमारे सामने रखी है या कोई और खा रहा है तो बच्चे का मन लल जा गया। नहीं, बच्चे को ये सिखाएं कि जब आपको भूख लगी है तभी आप कुछ खाएं, चाहे वो फ्रूट है, चाहे जंक फूड है, चाहे खाना है, चाहे कुछ भी है, लेकिन आप जब सबको उस बच्चे को भूख लगती है तभी उसे वो चीज़ जो है वो खाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि थाली में उतना ही खाना लें जितना कि वो खा सके, भोजन की बर्बादी ना करें। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे जो हैं बड़ों को देखकर अपनी थाली में बहुत सारा खाना परोसवा लेते हैं और हम लोग परोस भी देते हैं, और फिर बाद में वो बच्चे जो हैं वो खाने को छोड़ देते हैं क्योंकि छोटा सा पेट है, कितना खाएगा। और फिर बाद में जो है वो मम्मियाँ ही उन खाने को ख़त्म करती हैं। इसलिए बच्चे को ये आदत स्टार्टिंग से डालें कि जितनी भूख है उतना ही अपनी थाली में खाना लें, खाने की बर्बादी जो है वो ना करें। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो दोबारा से वो चीज़ जो है अपनी थाली में और ले सकते हैं। जंक फूड को कभी कभी ही स्वाद का जरिया बनाएं, रोज़ का जो खाना है वो नहीं बनाएं। घर का ताज़ा खाना, दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जियां, फल, दही, दूध, अंकुरित अनाज बच्चे को शरीर और दिमाग दोनों के लिए ही जो है वो लाभदायक होते हैं। इसीलिए रोज़ाना की डाइट में घर का खाना दीजिए, कभी कभी वीकली चीट डे बना दीजिए उनके लिए, या मंथली चीट डे जो है वो आप बना दीजिए। बातें आपसे और भी करेंगे सखियों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है अगले गीत का, तो सुनिए सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है और फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली।

क्योंकि हम बात कर रहे थे बच्चों को समझदारी से खाने की आदतें जो है वो सिखाना ज़रूरी है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि उन्हें धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबा कर खाना खिलाना जो है हमें सिखाना चाहिए। जल्दी खाने से पाचन प्रभावित होता है और ज़रूरत से ज़्यादा खाना जो है वो खा लेते हैं।

मोबाइल या टीवी देखते हुए बच्चों को आदत ना डालें। जब ध्यान स्क्रीन पर होता है तो बच्चे को पता ही नहीं चलता कि उसने कितना खाया है। इसीलिए बच्चे को हमेशा से ये आदत डालिए कि वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के या टेबल चेयर पर बैठ के ही खाना खाएं। टीवी या मोबाइल जो है वो उसके सामने ना रखें। माता पिता को भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। अगर पूरा परिवार मिलकर टाइम पर खाना खाएगा, जंक फूड सीमित रखेंगे और भोजन का सम्मान करेंगे तो बच्चों में भी वही आदत जो है वो पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि जितना हम सिखाने से बच्चा नहीं सीखता, उतना वो देखने से सीखता है। एक और ज़रूरी बात है, बच्चों को ये समझाएं कि खाना जो है पेट भरने के लिए नहीं बल्कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होता है। इसीलिए हर तरह के फल और सब्जियां, पर्याप्त पानी और संतुलित आहार उनके दैनिक जीवन का हिस्सा जो है होना चाहिए। साथ ही साथ खाने के साथ शारीरिक गतिविधि भी होना ज़रूरी है। रोज़ खेलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, योग करना बच्चों को स्वस्थ और सक्रिय जो है वो बनाए रखते हैं। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता। इसीलिए खाने का सम्मान करना, उसे बर्बाद ना करना और सोच समझ कर खाना एक अच्छी आदत ही नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। स्वस्थ शरीर का निर्माण रोज़ रोज़ की छोटी छोटी आदतों से होता है। समझदारी से खाया गया खाना दवा का काम करता है, जबकि लापरवाही से खाया गया खाना कई बारी बीमारियों का कारण भी बन जाता है। तो स्वस्थ रहिए, अन्न का सम्मान कीजिए और सुनते रहिए कार्यक्रम महिला जगत। और अब कार्यक्रम अंतिम पड़ाव की ओर है, तो सुनवाते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म कुर्बान से। अनुराधा पौड़वाल और सुरेश फाटकर ने इसमें आवाज़ें दी हैं। संगीत आनंद मिलिंद का है और गीत लिखा है समीर ने।

0: Singh says government is ensuring development and national security progress on same path. Supreme Court suggests CBSE to introduce third language from class 5 or 6. India set to launch first hydrogen-powered train to promote green and sustainable rail mobility. PV Sindhu stuns world number 5 Han Yue of China in straight games to storm into quarterfinals of Japan Open Badminton Tournament. And in cricket, second ODI between India and England to be played in Cardiff this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
2: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
3: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
2: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
1: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
2: There is an urgent need for us.
3: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
1: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
4: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमता

0: क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
1: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और वीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि वीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
2: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जिंद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल CPP की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया

0: कि बैठक में आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन HF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुने। फिल्म का नाम है धर्मा, आवाजें दी हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले ने।

0: चंदन
1: मैं चंदन की खुशबू हूँ,
0: मैं चंदन मैं चंदन मैं चंदन हूँ बहू।
2: आइए श्रोता वो अब सुने शिकार फिल्म का गीत, आशा भोंसले और साथियों की आवाज़ों में। रचना हसरत जयपुरी की है और संगीत शंकर जयकिशन का। आइए सुनें।

लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और बलवीर की आवाज़ों में कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आपने एन दत्ता का संगीतबद्ध के गीत सुना, रचना थी साहिर की। साधना फिल्म के लिए आवाजें दी थी मोहम्मद रफ़ी, बलवीर व साथियों ने। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुने, फिल्म का नाम है हंसते जख्म। गीत लिखा है कैफी आजमी ने और धुन तैयार की है मदन मोहन ने, आवाजें मोहम्मद रफ़ी और बलवीर की।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत के आखिर में सुने मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले को। फिल्म है काला समुद्र।

अभी आप सुन रहे थे काला समुद्र फिल्म का ये गीत। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 326

7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:03 बजे हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

सामीन आदावर्स, ये आकाशवाणी है। सपहर के 3:02 हुए हैं। आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशात का आगाज़ होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामीन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नज़र डालते हैं इस मजलिस में नशोनाले प्रोग्रामों पर।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमारी नशा सुन रहे हैं। दोपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।

मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। मेरी पसंद प्रोग्राम के सभी सामाइन को नईम का आदाब।

ये थी मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है प्रोग्राम अंदाज़े नज़र।

लोगों को जागरूक करने में, और आज उर्दू सहाफत किस मकाम पर पहुंची है डिजिटल मीडिया के दौर में, और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं नाम बता दूं, हमारे साथ है डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब, जो कि डीन है स्कूल

0: लोगों को जागरूक करने में, और आज उर्दू सहाफत किस मकाम पर पहुंची है डिजिटल मीडिया के दौर में, और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं नाम बता दूं, हमारे साथ है डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब, जो कि डीन है स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मानू यूनिवर्सिटी के, मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, और काफ़ी लंबा तजुर्बा फरियाद साहब का रहा है। मुंसिफ टीवी के एडिटर खुर्शीद रब्बानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुंसिफ टीवी से पहले वो कई और चैनल में भी काम कर चुके हैं, और सीनियर सहाफ़ी मारूफ रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कई टीवी चैनलों में और अखबारों में काम कर चुके हैं, काफ़ी लंबा तजुर्बा इनका है। और मैं यूसुफ अंसारी, मैं लंबे समय तक मैं जी न्यूज़ में रहा, और अभी मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ, और हिंदी और उर्दू दोनों में मैं लिखता भी हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे
1: जी
0: जानना चाहूँगा कि उर्दू सहाफ़त का शुरुआती दौर को जब हम देखते हैं, जंग आज़ादी में उसका एक अहम रोल रहा, एक आप रोशनी डालिए कि किस तरह का रोल अदा किया।
1: जी बेहद शुक्रिया। जहाँ तक उर्दू सहाफत का ताल्लुक है, जो उसका आगाज़ भी बहुत मज़ेदार रहा है, जो शुरुआत उर्दू सहाफत की हुई है, आप हम सब वाकिफ़ हैं कि शहर कोलकाता, जिसे आज कहा जाता है, तब कलकत्ता कहा जाता था, उस शहर से उर्दू सहाफत की शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत कराने वालों में एक पंजाबी एडिटर मुंशी सदा शुकलाल, वहीं एक हिंदी के जो उस अखबार के मालिक थे वो पंडित हरिहर दत्ता, और इसके जो पब्लिशर थे वो एक ब्रिटिशर्स थे, और इन तीनों ने मिलकर उर्दू सहाफत की जो दागबेल लिखी थी मार्च 1822 में। लेकिन उर्दू सहाफत का जो शुरुआती मिजाज हम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं जंग आज़ादी के लिए तरह से वो मुजाहिद के तौर पे काम करते थे, और बहुत शोला बयानी हुआ करता था, और उर्दू सहाफत एक तरह से उसका मिशन ही था कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना। आप देखेंगे कि शायद उर्दू के 1822 में जब उर्दू सहाफत शुरू हुई, 1823 में पहली बार एक प्रेस ऑर्डिनेंस ब्रिटिशर्स लाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी लाती है, ताकि अखबारात पे कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि उनको उर्दू सहाफत की ताकत का अंदाज़ा लग रहा था। दीगर ज़बानें भी कहीं ना कहीं इसमें अपना रोल अदा कर रही थी। 1857 के गदर की अगर हम बात करें, जब 1857 में गदर होता है, तो आप सब वाकिफ़ होंगे दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर मौलवी मोहम्मद बाकर, जिन्हें हिंदुस्तान का पहला शहीद सहाफ़ी कहा जाता है। वो वाक़या काबिले ज़िक्र है, क्योंकि उससे हमें उर्दू सहाफत के मिजाज का पता चलता है। उस वाक़े में, जैसे कि जब मौलवी मोहम्मद बाकर का उर्दू दिल्ली उर्दू अखबार, अंग्रेज़ों ने उस अखबार को जिस किसी के पास अगर वो मिल जाए उसको बागी समझते थे, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। ऐसी सूरत में मौलवी मोहम्मद बाकर जब खुद गिरफ्तार हुए, दिल्ली गजेटियर में जिसका जिक्र भी है कि उनको जब गिरफ्तार किया गया और उनसे कहा गया कि भाई अब से भी अगर आप चाहें आप लिख के दे दें कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आप कुछ नहीं लिखेंगे, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ नहीं लिखेंगे, जो मिशन आपका है हिंदुस्तान की आज़ादी आप उससे वापस हो लेंगे, तो शायद आपकी सज़ा को माफ़ कर दें। लेकिन मौलवी मोहम्मद बाकर ने उस वक्त भी कहा था कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, एक अगर आप मुझे आज़ाद करेंगे तो अब तक जितनी ताकत से मैं लड़ता रहा हूँ उससे दुगनी ताकत से आपके ख़िलाफ़ लड़ूंगा, और तब तक लिखूंगा जब तक कि हमारा मुल्क आज़ाद ना हो जाए। इससे आपको उर्दू सहाफत के मिजाज का कहीं ना कहीं पता चलता है। और शायद इसके एवज़ में आप सब ने सुना होगा कि सज़ाए मौत तो उन्हें दी गई, लेकिन ज़्यादातर जो दानिश्वर हैं वो मानते हैं कि तोप के मुँह में बांधकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस तरह की कुर्बानी कहीं ना कहीं उर्दू सहाफत की रही है जंग आज़ादी में, और यही मिजाज मुझे लगता है 1857 में भी जो आप देखने को मिला, ये 1947 तक ये मिजाज उर्दू सहाफत का रहा कि अपने पूरे आब उताब के साथ वो अंग्रेज़ हुकूमत से लड़ती हुई नज़र आती है। उसके साथ साथ मैं ख़ासतौर से जिक्र करना चाहूँगा मौलाना आज़ाद के अखबार अल हिलाल और अल बलाग का, जहाँ एक तरफ जंग आज़ादी मकसद है, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि जो उर्दू के कारईन हैं, जो उसके पढ़ने वाले हैं, उनका जो टेस्ट है, खुद ही एडिटोरियल में 1822 में गालिबन वो लिखते हैं अपने अखबार के एडिटोरियल में, खुद से ही सवाल करते हैं और खुद ही जवाब देते हैं कि क्या उर्दू सहाफत का मकसद पब्लिक डिमांड, जिसे आज हम कहते हैं कि कारीन की जो डिमांड है उसके मुताबिक हम खबरें पेश करें, अखबार में कंटेंट मवाद पेश करें, और खुद ही लिखते हैं कि नहीं, ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये भी होना चाहिए कि कारीन का जो टेस्ट है उसे और बेहतर बनाया जाए और बालातर ले जाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये उर्दू सहाफत के उस मिजाज को हमें सबको देखने को मिलता है। तो ये मिजाज तो 1947 तक मुझे लगता है ये मिजाज बाकी रहा।
0: खुर्शीद रब्बानी साहब, बहुत अच्छी फरियाद साहब ने पूरी रोशनी डाली कि किस तरह उर्दू सहाफत शुरू हुई और कितना अहम रोल रहा। एक बहुत ही अहम बात यह है कि उस वक्त उर्दू एक आम फहम जुबान थी हिंदुस्तान की, और उसमें हिंदी उर्दू के बीच कोई डिफरेंस हम कहें कि कोई लाइन इस तरह से नहीं थी। तो उस वक्त आप ये बताइए कि कौन कौन से अखबार थे, रिसाले थे या मैगजीन थी, اور کون کون

0: निकलती थी, इसमें लिखा जाता था कि एक एडिटर चाहिए, उसकी तनख्वाह क्या होगी कि एक कटोरा पानी और काले पानी की सजा। और आप यकीन मानिए कि कितने लोग उसमें बाकायदा ज्वाइन करते थे, एडिटोरियल लिखते थे, और एडिटोरियल लिखते ही उनको काले पानी की सजाएं हो जाती थी। वो जज्बा इस हिंद की मिट्टी ने दिया था। आप देखिए गोपीचंद नारंग, आप आज भी देखिए, आज के जमाने में भी जितने भी मैं कहूँ कि बुलंद मर्तबा जो उर्दू के तहफुज करने वाले लोग हैं, उनमें हमारे दूसरे हजरात भी हैं, तो उनको ये एहसास कमतरी नहीं होता, हमें ही होता है। जरूरत ये है कि ठीक है, जैसे खुर्शीद रब्बानी साहब ने कहा और बड़ी अच्छी मिसालें दी, और ये गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश की मिसाल है कि हम जब ईटीवी में थे, ईटीवी उर्दू शुरू करने वाले, तेलुगु चलाने वाले, काम करने वाले सारे उर्दू, हम आप, लेकिन ये शुरुआत हमारी तंजीमों ने क्यों नहीं की? आपके पास जराए हैं, आपके पास आशासे हैं, आपके पास माल भी है, आपके पास कुवत भी है, लेकिन वो सोच क्यों डेवलप नहीं होती? या तो हम उसको जानबूझ के नहीं करना चाहते, या सिर्फ हम बार बार रोना रोना चाहते हैं। बच्चे को दूध भी माँ तभी दूध पिलाती है जब तक वो रोता नहीं है। तो पहले हमें अपने अंदर से उस एहसास से कमतरी को निकालना होगा, जिसे कहते हैं कि अभी एक शख्स निकला है, एक खुशबू सी आई है, लगता है शायद वो उर्दू बोलता है। तो वाकई उर्दू वो मीठी वो सीधी जबान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बोली जाती है। जब तहजीब और तमद्दुन का जिक्र होता है तो जाहिर सी बात है, जब उर्दू वाला बोलता है तो कान खड़े होते हैं और धड़कनें तेज हो जाती है कि हाँ वाकई कोई बोल रहा है, चलो उसको सुना जाए। तो इस एहसास कमतरी के औरा से हमें बाहर निकलना होगा। सहाफत आज भी जिंदा है, लिखने वाले आप जैसे, हम जैसे, खुर्शीद रब्बानी जैसे, डॉक्टर फरियाज साहब जैसे, और बहुत सारे हैं जो मौजूद हैं। तो हमें इस अंडर एस्टिमेट जो एरा है उससे निकल के बाहर आना है, ताकि उर्दू को, उस उरूज को वापस जिंदा किया जा सके।
1: वारूफ रजा साहब ने बहुत ही अहम बातें बताई हैं, और उनका जो जोर है कि भाई उर्दू बोलने वाले, उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोगों की दिलचस्पी खुद ही कम हो गई है। और तो उसमें मैं देखा कि साहब जो बड़े इदारे चल रहे थे, जैसे एक बड़ा अखबार बॉम्बे से निकलता था, बाद में उसे उन्होंने बेच दिया। अब क्यों बेचा, क्या हुआ, वो भी बता रही हो।
0: यूसुफ, मैं कता कहला जी,
1: जी
0: यहाँ पर खुर्शीद साहब, फरियाद साहब, आपसे की तवज्जो चाहूंगा। यहाँ पर हमारे पास पंजाबी अकेडमी है, वो हमसे कम तादाद में है, वो तो रोना नहीं रोते। तमिल है, बाकी मराठी, सब जाए, जितने भी लैंग्वेजेस को देख लें, क्या कभी उनका रोना सुना हमने कभी?
1: जी बिल्कुल
0: क्या
1: सही,
0: उनकी तंजीमों में कमी आई, उनके अखबारात या जो चैनल्स हैं उनमें कमी आई, उनके स्टैंडर्ड में कमी आई? नहीं, तो हमारे क्यों कमी आई?
1: नहीं, बहुत अहम बात उन्होंने उठाई। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उर्दू सहाफत के सामने, खासकर आज़ादी के बाद, क्या चैलेंजेस रहे? जैसे एक तो हमारी समझ में आता कि जब हम छोटे थे, हम देखते थे उर्दू अखबार निकलता था तो वहाँ पर वो हाथ से लिखा जाता था, कोई टाइप मशीन शायद नहीं थी। लेकिन आज जो क्रांति हुई है इलेक्ट्रॉनिक आईटी में, उसमें फोनेटिक आ गया है, यूनिकोड आ गया है, यूनिकोड में तमाम भाषाएं हैं, उसमें उर्दू भी है। कि एक चीज़ मैं ये देख पा रहा हूँ कि कुछ साल में, पिछले कुछ साल में, वो हालांकि एक अलग डिबेट है कि सब उर्दू को पर्शियन लिपि में लिखा जाए कि देवनागरी में लिखा जाए, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। तो आप इस मुद्दे पे ज़रा रोशनी डालिए कि आज़ादी के बाद से उर्दू सहाफत को ज़िंदा रखने के लिए क्या क्या चैलेंजेस थे, और आज के दौर में वो चैलेंजेस बढ़े हैं या कम हुए हैं?
2: देखिए, जैसा कि अभी जनाब मारूफ साहब ने पहले ही बताया कि जंगे आज़ादी मुकम्मल हो गई, आज़ादी हासिल हो गई, उस वक्त तक वो मिशन था, प्रोफेशन नहीं था, हर हर किसी का बस एक ही मकसद था कि हमारा मुल्क आज़ाद हो, हिंदुस्तान आज़ाद हो और हम सब खुली फ़ज़ा में सांस ले सकें। ठीक है, 1947 में हमें वो अचीव हो गया, हमें हासिल हो गया। उसके बाद क्या? उसके बाद उर्दू सहाफत के सामने एक बड़ा मसला था कि अब हम आज़ाद तो हो गए, अब क्या करें? जाहिर सी बात है, उसके बाद टेक्नोलॉजी भी बहुत बदली, नई नई चीज़ें आई। उर्दू सहाफत का जो एक अलमिया है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि हम उर्दू वाले शायद एहसास कमतरी के शिकार रहे। हमने जो वक्त के बदलते हालात थे उसको देर से समझा, हमने टेक्नोलॉजी को थोड़ा देर से अपनाया, हमने अपनाया लेकिन थोड़ा देर से, ताखीर की। शायद यही वजह है कि हम दूसरों से थोड़े पीछे रह गए। आज भी जैसे आप सब वाकिफ़ हैं कि आज तमाम उर्दू के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है जितने बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंग्लिश में हैं, हिंदी में हैं, उर्दू में वो टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा आम फहम नहीं है। एक ये वजह हो सकती है। दूसरा, उर्दू अखबारों के सामने एक जो बड़ा मसला था वो मसला ये था कि उर्दू सहाफत किसी वजह से वो रिवेन्यू हासिल नहीं कर पा रही थी, वो कमाई उर्दू सहाफत के सामने नहीं थी जो दिगर जमानों के सामने थी। और ये वही वक्त था जब अंग्रेजी फरोग पा रही थी हिंदुस्तान में, और कहीं ना कहीं सरकारी कामकाज में अंग्रेजी की थोड़ी फौकियत

0: थी, पूरी दुनिया में अंग्रेजी फैल रही थी, तो हिंदुस्तान में भी उसका असर दिख रहा था। शायद यही वजह है कि उस वक्त तक उर्दू थोड़ा एक पसमानदा जबान समझी जा रही थी, और इसका असर हमारे अखबारात या जो भी दूसरे बाद में जो टीवी चैनल्स वगैरह आए उसमें भी देखने को मिलता था कि जो मवाद है, जो कंटेंट है, वो उतना अपडेटेड नहीं था जितना अंग्रेजी चैनल्स में या अखबारात में था। और बाद में हिंदी ने भी बहुत अच्छी तरक्की की, और एक मुहिम मैं देखता हूँ आज़ादी के 20-25 बरस बाद हिंदी को लेकर जो जज्बा पैदा हुआ, और उसकी वजह ये रही कि और हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत तेजी से बढ़ी हमें आज़ादी हासिल होने के बाद। इसकी वजह से अखबारात तो बहुत बढ़े, तादाद में काफी इजाफा हुआ, लेकिन उर्दू अखबारात थोड़ा पीछे रह गए। आपने जैसे जिक्र किया अभी कि वो हाथ से जो उनकी हुआ करती थी, तब तक कंप्यूटर नहीं आया था, और जब कंप्यूटर भी आ गया तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, शायद ये वजह रही हमने इसको अपनाया थोड़ी देर से। दूसरी एक बात जो अहम दिखती है, मतलब मेरा अपना ये मानना है, मैं चूंकि यूनिवर्सिटी में भी मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि हम सब उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम हिंदी से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसी वक्त हमें अंग्रेजी सीखना भी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि मेरा ताल्लुक खुद बनारस से है और पिछले 18-20 सालों से हैदराबाद में हूँ, मैं खुद तेलुगु सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जितनी ज़्यादा जबानें सीखेंगे हम उतना ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे सहाफत में। उर्दू वालों के साथ एक अलमिया ये रहा कि वो सिर्फ उर्दू तक महदूद रहना चाहते थे, शायद इसकी वजह से भी उर्दू महदूद होती चली जा रही है। अगर उर्दू वाले उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी भी सीखें, दूसरी हिंदुस्तान की जो दीगर जबानें हैं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मराठी है, वो भी सीखते हैं, बैरूनी मुल्क की जबान फ्रेंच, रशियन, इटालियन भी सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका मुस्तकबिल ज़्यादा ताबनाक होगा, ज़्यादा रोशन होगा, वो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। अच्छा, उर्दू के साथ एक और अच्छी बात यह है कि उर्दू लश्करी जबान है, तमाम जबानों से मिल के बनी हुई है, दूसरे जबानों के असरात इसमें मुरतब होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें इस बात पर कराहियत नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें जो अंग्रेजी की हैं उसको हम कबूल करें, हिंदी के बहुत सारे जो जुमले हैं, अल्फाज हैं, जो वो है वो भी हम कबूल करें और उर्दू को हम आगे बढ़ाएं। आज के दौर में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उर्दू सहाफत में, आज देखिए आज डिजिटल मीडिया पे उर्दू की अच्छी मौजूदगी है, लेकिन अभी भी कहीं जो मवाद है वो थोड़ा सा उतना अपडेटेड नहीं है जितना अपडेटेड अंग्रेजी के कंटेंट मिले। और आज हमें लगता है कि हम बड़े फख्र के साथ ये बात कहते हैं कि हिंदी सहाफत भी बहुत अच्छा कर रही है, मतलब अंग्रेजी से बहुत कमतर नहीं रहेगी, अंग्रेजी के बराबर है और कहीं कहीं मुझे लगता है उनसे ज्यादा अपडेटेड है। तो हमें लगता है उर्दू के साथ भी हमें कुछ इसी तरह का सलूक करना चाहिए, हम थोड़े रिसर्च बेस्ड काम नहीं हुए, चाहे वो टेक्नोलॉजी के एतबार से उर्दू के जो सॉफ्टवेयर आए जो इनका इस्तेमाल मीडिया में होता रहा वो काफी ताखीर से आए। अगर हम बात करें कि टाइपिंग की भी बात करें, ठीक है आज गूगल वर्ड्स पे भी आप टाइप कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आज हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मैं कभी मना नहीं करता, बिल्कुल अंग्रेजी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, लेकिन साथ साथ उर्दू भी उनको पढ़ाइए। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान की हर शख्स को हिंदुस्तान का जो तीन जबानों का जो फॉर्मूला था उसे अपनाना चाहिए कि अगर हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो एक साउथ की जबान भी पढ़ाएं, अगर हम उर्दू पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो एक जबान और सीखें। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमें मदद करेगा उर्दू सहाफत को उसका जो मकसद है उसे हासिल करने में।
1: डॉक्टर फरिया साहब, आपने बहुत ही अहम बातें बताई और कई जो चैलेंजेस थे उनको, एक मुझे लगता है क्योंकि मैं भी सहाफत में करीब करीब 30 साल हो गए हैं, मैंने जो बात नोट की है और बाकी हमारे साथी खुर्शीद रब्बानी साहब, मारूफ रजा साहब उस पर रोशनी डालेंगे, मुझे लगता है कंटेंट की जो आपने बात कही, उर्दू में अक्सर ये देखा गया है कि ओरिजिनल कंटेंट की कमी उर्दू सहाफत में शुरू से रही है। उन पर तो उर्दू में बड़ा ओरिजिनल कंटेंट मिलता है, लेकिन बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, मेन स्ट्रीम है, वहाँ ओरिजिनल कंटेंट नहीं आता, वो अंग्रेजी से शुरू होता है, अंग्रेजी से ट्रांसलेट होकर हिंदी में भी आता है, फिर वो उर्दू में भी आता है। आज भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो ओरिजिनली तो अंग्रेजी में लिखते हैं, बाद में उसका तर्जुमा वो, रब्बानी साहब आपने चूंकि अखबार में भी काम किया है, टीवी में भी काम किया है और डिजिटल में भी आपने काम किया है, तो इस मुद्दे पर आप किस तरह से सोचते हैं कि आखिर क्या वजह है कि उर्दू जर्नलिज्म में ओरिजिनल कंटेंट की कमी रही है और डिजिटल के दौर में क्या उस कमी को दूर किया जा सकता है?
2: बिल्कुल, दो तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जैसे शुरू में बात हुई कि मिशन से कब प्रोफेशन में बदल गई कोई एक चीज़, और शायद ये बड़ी वजह है कि फिर उसके साथ चूंकि हर एक चीज़ के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत है, ये भी सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये भी सच्चाई है कि तहकीकी जो खबरें हैं वो उर्दू सहाफत में कम मिलती हैं। अक्सर जब हम उर्दूदा तबके के बीच बैठते हैं, खासतौर से उर्दू सहाफियों के बीच बैठते हैं, तो वहां पर इस बात का बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ जिक्र होता है कि अगर आपके पास कोई प्रेस नोट आ गया तो उसमें उस प्रेस नोट को एज इट इज पब्लिश कर देंगे, अगर किसी

0: मौत की भी खबर आ गई तो ये तहकीक किया या एक फोन घुमाए बगैर ही उसको छाप दिया जाएगा भले ही कोई आपका टेस्ट ले रहा हो। तो ये एक बड़ा मसला है। ये भी सच्चाई है कि आप कम से कम, मैं 15 से 20 साल का ये एग्जाम्पल दे सकता हूं कि आप अखबार उर्दू के उठा करके देख लीजिए, फिर अंग्रेजी और हिंदी के अखबार उठा करके देख लीजिए कि कितनी उर्दू की खबरें, एक्सक्लूसिव खबरें, ओरिजिनल कंटेंट जो उर्दू का था वो अंग्रेजी या हिंदी ने लिया है। फिर ये देखे कि अंग्रेजी का और हिंदी का कितना कंटेंट उर्दू वालों ने लिया है। तो इसी से तय हो जाएगा कि उर्दू सहाफियों ने, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मतलब अगर हम आईना देख रहे हैं और उसमें कुछ हमें हमारी कमियां नजर आ रही हैं तो मुझे लगता है कि ये एहसास कमतरी नहीं है बल्कि अपनी कमियों को, खामियों को देख करके उसे दुरुस्त करने का एक बेहतर वक्त हो सकता है। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको दूंगा कि कैसे हम तकनीक अपनाने में उर्दू का तबका थोड़ा सा पीछे रहता है। देखिए, आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि हमने छपाई की मशीन को अपनाने में कितना वक्त लगा दिया, बाकी चीज़ों को हो सकता है तकनीकी चीज़ें हों जो है वो आपके साथ तकनीक उतनी ज़्यादा मेल जोड़ना खाती हो तो उसमें भी हम पीछे रहे हैं। तो मैं 2-3 एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए, न्यूज़ 18 उर्दू 15 अगस्त 2001 में स्टार्ट हुआ, उसका यूट्यूब चैनल यानी डिजिटल पर वो कब आया, 2010 में, तकरीबन 10 साल बाद। ठीक, क्या वजह है? जी सलाम, 2010 में शुरू हुआ और 2017 में वो यूट्यूब पर आया, फेसबुक पर भी आया होगा, ट्विटर पे अभी है, मतलब पिछले 5-7 साल से एक्स जिसको बना दिया गया है। ठीक है, आलमी सहारा 2010 में आया और 2010 के बाद यूट्यूब पे 13 में आया, 3-4 साल के बाद आ गया। डीडी उर्दू 2006 में शुरू हुआ और 2013 में वो यूट्यूब पर आया। तो अब यहाँ पर इस बात को समझने की जरूरत है कि टेलीविजन जो है वो सिर्फ अब टेलीविजन नहीं रह गया बल्कि उसके बहुत सारी शक्लो सूरत होगी, बहुत सारे रास्ते होंगे देखने के। उसमें FB भी है, उसमें X भी है, उसमें YouTube भी है, उसमें जो है इंस्टा भी है, उसमें दीगर और बहुत सारे जराए हैं, OTTs भी हैं। तो वहाँ वक्त के साथ बदलाव क्यों नहीं आया? तो फिर अगेन बात यही होगी, क्या सोचो फिक्र की कमी है, क्या विजन की कमी है, या फिर वसाइल का इशू है? और वसाइल का इशू अगेन रेवेन्यू से कहीं ना कहीं है। तो बहुत सारे बड़े घराने हैं, मीडिया घराने, जिन्होंने उर्दू चैनल शुरू किए और उर्दू चैनल के साथ अच्छा सलूक किया, ये भी सच्चाई है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ कमियां और खामियां रही हैं तो उन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये खुद उर्दू सहाफियों की जिम्मेदारी है, उसमें हम सब लोग शामिल हैं कि हम कैसे कम से कम वसाइल में, कम से कम सुख सुविधाओं में हम बेहतर करने की कोशिश करें। सच्चाई है ये कि बहुत सारी इश्यूज हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, मगर उन परेशानियों से निकलने के रास्ते भी हमें कहीं ना कहीं तलाश करने होंगे और आगे बढ़ने के लिए भी जद्दोजहद हमें ही करनी होगी।
1: मारूफ रजा साहब, जो खुर्शीद रब्बानी साहब ने एक बुनियादी सवाल उठाया कि आखिर क्या वजह है कि हम कंटेंट के मामले में पिछड़े रहे हैं, मुकाबला नहीं कर पाते हैं अंग्रेजी का या हिंदी वालों का, इसके पीछे क्या वजह देते हैं?
2: देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम पढ़े लिखे समाज में रहते हैं और हमारा पेशा भी पढ़ने लिखने का है। जब हम पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो जाहिर सी बात है तस्दीक का, तहकीक का मादा अपने आप आ जाएगा और चीजें आती है। इनोवेशन घर बैठे नहीं आते, आपको उस पर तदब्बुर करना पड़ता है, सोच लगानी पड़ती है, तब जाके आता। और ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी उर्दू सहाफियों की जो खबरें हैं वो पीक पे रही हैं, उन पर तो खबरें बनी हैं, सुर्खियां बनी हैं, तब्दीलियां हुई हैं, बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। दिक्कत ये कि हम दो चीज़ें ले रहे हैं, कंटेंट और टेक्नोलॉजी। कंटेंट पे पैसा खर्च नहीं होता, कंटेंट आप भी बड़ा अच्छा लिख सकते हैं, जो एक रिक्शा चलाने वाला उर्दू दा है वो भी अच्छा लिख सकता है, वो आपकी कलम कितनी अच्छी है, सोच कितनी अच्छी है आप लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी की बात है, पहले बड़ी महंगी थी, अब इतनी आसान हो गई, आप मोबाइल लीजिए और कुछ भी कर लीजिए। खुर्शीद रब्बानी साहब ने इसका जिक्र किया, सोशल मीडिया। तो अब आपको जरूरत नहीं है कि आपको 50-100 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं, आपके पास एक अच्छा मोबाइल है, अच्छा कंटेंट है, अच्छी शक्लो सूरत है, आप कर दिए। अगर आप 30 सेकंड में भी अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया, यू कैन डू ब्लंडर, और नहीं तो आप यू कैन डू वंडर। तो इसलिए लैंग्वेज, पहली बात तो मजहब के दायरे में कैद नहीं है, ये जुबान है, ये जुबान हिंदुस्तान की जुबान है। तो इसमें जिस तरीके से सरकारें आगे आ रही हैं, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रमोशन दिए हैं उर्दू को लेकर के, लगातार गुज़िश्ता 10 सालों की बात करूं,
3: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 4 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा।
4: नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं और अब पेश हैं FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय सुरक्षा

0: नंदन वंदन अभिनंदन, नमस्कार, सुस्वागत आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। संदेश टू सोल्जर्स के आज के संक में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे सोल्जर, एक ऐसे सिपाही से जिसने अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपने लिए, अपने देश के लिए हमेशा परचम लहराया है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह सहस्त्र सीमा बल से। सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी का। भागिंदर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैम। जय हिंद मैम।
0: जी जय हिंद। और आप जैसे सोल्जर से सिपाहियों से जब भी हम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सीना जो है वो गर्व से फूल जाता है और हम ये महसूस करते हैं जैसे हम भी ना कहीं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता यहाँ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञापित कर रहे हैं। और आपकी जो मंद मुस्कान है, प्यारी सी मुस्कान है, वो इस बात का सबूत है कि 20 सालों से आपने जो अपनी सेवाएं दी हैं सहस्त्र सीमा बल के माध्यम से देश के प्रति, अत्यंत गौरवशाली रही होंगी। और आज हम अपने सभी श्रोताओं से साझा करना चाहते हैं कि 2005 में भागिंदर सिंह जी ने सहस्त्र सीमा बल में अपना पदार्पण कर अपने आप को वहां दर्ज कर अपने लिए एक मुकाम हासिल किया और इस मुकाम को, इस यात्रा वित्रांत को इन्हीं के माध्यम आज

0: हम सुनेंगे। तो आपका हम पुनः स्वागत करना चाहते हैं भागिंदर जी, और आप ही से जानना चाहते हैं कि ये जो 20 सालों की जो यात्रा है कितनी सुखद रही है।
1: जी मैम, जैन मैम,
0: जी जय हिंद।
1: सबसे पहले तो मैं FM रेनबो को अपनी पल की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो कि FM रेनबो के सभी कर्मियों को। मेरा जीवन बहुत सरल है मैम। मैं अपने गांव से रामपुर भांगर से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर जो कि जेवर के पास है। मेरा जीवन जो है प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ, सरकारी स्कूल से, वहीं से मेरा जीवन

0: क्या बात है। तो कहीं ना कहीं वो परिवेश था, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये अनुभूति पहले से हो गई थी कि आपके लिए वो रास्ता कौन सा है।
1: जी मैम, बिल्कुल। ये जो है मेरे को प्रेरणा जो मिली है मेरे जो है ताऊ के लड़के थे उनसे, मेरे ताऊ जी से और गांव के जो फौजियों से, उनसे मिली है मैम। मेरे को भी दिल था कि मैं भी जो है ये जो कैमोफ्लाइज वर्दी पहन के आते हैं जो ये मैं पहनूं और देश की सेवा करूं।
0: वाह क्या बात है। तो निश्चित रूप से आप लगातार किस्से कहानियां सुनते होंगे और उन किस्से कहानियों ने कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि हमारे मन में एक सपनों का सागर बनने लगता है, तो सपनों के सागर की ओर आकर्षित आप उन किस्से कहानियों से जरूर हुए होंगे।
1: जी मैम, मेरे जो ताऊ जी थे वो फौज में थे, उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई देखी है तो पाकिस्तान के किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे काफ़ी मात्रा में। जब जो 1962 में युद्ध हुआ था मैम, तो उसमें से जो है काफ़ी मात्रा में जो है हिंदुस्तान ने उनके जो सैनिक बंदी बनाए थे और लड़ाई जीती है, काफ़ी बार उन्होंने अपने बल का नाम रोशन किया है हमारे जो ताऊ जी थे, तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली मैम।
0: जी बहुत बढ़िया। तो जब आप वो किस्से कहानियां सुनते थे तो क्या रग रग में, कहते हैं ना कि आपके जो आपका जो लहू होता है उसका संचार और भी ज्यादा तेज हो जाता है, कैसा
1: जी
0: होता था आपके साथ?
1: जी मैम, जैसे ही मैं किस्से कहानियाँ सुनता था तो मेरे अंदर एक अलग ही जोश होता था। सुबह को उठना, 4 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, दौड़ भाग करना कि बस अब फौज में ही जाना है, बस और किसी की तैयारी नहीं थी मैम, सिर्फ ओनली फौज।
0: वाह क्या बात है। तो उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम रही होगी।
1: जी मैम, मेरी उम्र जो है मैं 8वीं 7वीं से ही मैम जो है मैं फौज की तैयारी में लगा हुआ था। मेरा जो है गेम था फिजिकल, मेरे पहले से ही टफ था मैम, मैं कुश्ती और वेट लिफ्टिंग का बहुत शौकीन था मैम।
0: जी तो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर आप फौज में गए,
1: जी मैम,
0: तो क्या प्रक्रिया रही, कैसे गए?
1: मैं जैसे किससे कहानी सुनता था तो मेरी जो प्रक्रिया मेरे पापा जी से स्टार्ट होती है। मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते थे, उनसे बोल देना तो मेरे को 3 बजे उठना है तो उनको यार रात में 4 बजे उठना पड़े, 5 बार उठना पड़े, 6 बार, वो मेरे को सिर्फ उसी टाइम पर जगाते थे मैम जब मैं उनसे बोलता था।
0: वाह क्या बात है। तो निश्चित रूप से जब आप सेलेक्ट हुए होंगे तो पिताजी तो बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आपके ताऊ जी के बच्चे, ताऊ जी आपके
1: जी
0: बाबा
1: जी
0: सब फौज में रहे, लेकिन
1: जी
0: आप चार भाई बहन, इनमें से कोई फौज में नहीं
1: जी
0: था। पिताजी खुद जो है उन्होंने देश का दूसरा कार्यभार संभाल रखा है, वो कहते हैं कि कृषि जो है हमारे जीवन का आधारभूत स्तंभ है,
1: जी मैम,
0: तो वो वहाँ मिट्टी से जुड़े हुए और आप फिर मिट्टी से फिर जुड़ गए
1: फिर
0: देश
1: से
0: के प्रति।
1: जी
0: तो उस वक्त उनके अंदर क्या चल रहा था कि बेटा अब सशस्त्र सीमा बल यहाँ अपनी सेवाएं देकर देश के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा निभाएगा?
1: मैम, मेरे परिवार में से किसी ना किसी घर में से दो या तीन, किसी के दो लड़के हैं, दो भी भर्ती उसी में सेना में, तीन है तीन भी, सिर्फ एक मेरा परिवार ऐसा था जो कि सेना में भर्ती नहीं था। उसके बावजूद मैम मेरे पापा जी को जब ऐसा लगा कि ये सेना में भर्ती हुआ है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे परिवार में खुशी की एक लहर दौड़ गई मैम, घर में, परिवार में, गांव में, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे परिवार में से भी कुछ है। और जब मैं आ रहा था तो बोले बेटे कभी भी फौज में बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मैं सुनता भी रहता था कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है लोग जो है छोड़ना करते हैं, ऐसा मत करना जो है। तो मैंने पापा जी को आश्वासन दिया, मैं कह ऐसा कभी नहीं होगा,
0: वाह क्या
1: मेरे को
0: बात
1: देश
0: है,
1: से बहुत प्रेम है, मैं कभी नहीं आऊँगा।
0: वाह क्या बात है। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है ना, फैमिली सिस्टम, इसकी खास बात यही है।
1: जी
0: जिस तरह से बेटियों को जब ब्याह जाता है कहा जाता है कि जो जहाँ तुम जा रही हो वही तुम्हारा घर है, इसी प्रकार आपके पिताजी ने भी आपसे कहा कि
1: जी
0: वापस लौट कर मत आना,
1: जी
0: लेकिन शिद्दत के साथ ट्रेनिंग अपनी या तालीम अपनी पूरी हासिल करना। तो फिर बताइए कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, कितने अंतराल की थी और कितनी जटिल, कितनी मुश्किल थी?
1: मैडम, मेरी जॉइनिंग हुई थी 2005 में दिसंबर 15 को, तो मेरी ट्रेनिंग का जॉइनिंग मैंने दिल्ली 25 बटालियन घटोरनी में करी थी 15 दिसंबर 2005 को। तो उसके बाद मेरी ट्रेनिंग पीना तोली उत्तराखंड में हुई मैम, तो 1 साल की ट्रेनिंग थी। 1 साल ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी 18 बटालियन बीरपुर बिहार में।
0: वाह क्या बात है। और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है, वो पल याद आते हैं, क्योंकि जब हम युवा

0: होते हैं बहुत उमंग होती है, लेकिन अगर एक सिपाही की बात की जाए, एक सैनिक की बात की जाए, तो उसका जोश ना उतना का उतना रहता है। हम जितने भी ऑफिसर से मिलते हैं वो यही कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीना चाहते हैं। तो जो 20 सालों का जो समय रहा है जिसमें आप अपना योगदान दिया है और अभी भी कर्तव्य निष्ठा के साथ कर्मठ सैनिक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, तो अभी भी क्या महसूस होता है कि काश वो पल दोबारा से आ जाए, दोबारा से जिए उनको।
1: मैम बचपन के पल वापस तो नहीं आते, पर बहुत यादें जुड़ी रहती हैं और काफ़ी मात्रा में मैं जो आपको बताना चाहूँगा, मेरी यादें काफ़ी जो है ऐसे काम करें जो मेरे को याद आते हैं।
0: वाह क्या बात है, निश्चित रूप से आपने जो भी कार्य किए हैं इन 20 सालों में और जो आगे भी करेंगे काबिले तारीफ रहेंगे, लेकिन उनके पीछे की सोच सिर्फ देश प्रेम है ना
1: जी मैम,
0: और हमेशा जहन में ये चलता रहता हूँ कि देश के प्रति हमें कार्य करना है और देश का झंडा यूं ही लहराता रहे इसके लिए हमेशा हमें कार्य करना
1: जी,
0: है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो जैसा कि इन्होंने खुद कहा हेड कांस्टेबल भागेंद्र सिंह जी ने कि बहुत सी यादें इनकी जुड़ी हुई हैं सशस्त्र सीमा बल से, बहुत सारी बटालियंस में आपने अपना योगदान दिया होगा, जगह जगह आपको डिप्लॉय किया गया होगा, उनसे जुड़ी हुई सारी किस्से कहानियाँ आज इनके माध्यम से हम जरूर सुनेंगे।

आप सभी का पुनः स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और आज के इस अंक में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और इनकी कहानी बहुत रोचक है जिसे इन्होंने खुद ही बताया कि किस तरह से इनका बचपन इतना शानदार रहा है। जिसका बचपन इतना शानदार होगा उसका वर्तमान, और आगे चल के कहते हैं कि हमारा जो वर्तमान है वो हमारा भविष्य बनाता है, तो भविष्य तो सुखद ही होगा।

0: निश्चित रूप से, और सुखद उस व्यक्ति का जरूर होता है जिसे वो प्राप्त हो जाए जिसकी वो कामना करता है, क्योंकि जिसकी हम कामना करते हैं उसके लिए मेहनत भी बहुत करते हैं भागेंद्र जी, क्यों, सच कहा ना? और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि आपने मेहनत भी की, बहुत वर्जिश की, बहुत मेहनत करी और ईश्वर की कृपा से आपको वो प्राप्त हुआ जिसकी कहानियां, जिससे जुड़ी हुई कहानियां आप बचपन से सुनते आ रहे थे।
1: जी मैम
0: जी, आप वर्तमान में 25वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा कौन कौन सी बटालियन से आप जुड़े रहे और हर बटालियन की कुछ ना कुछ विशेषताएं रही होंगी, अलग अलग तरह के कार्यभार आपको दिए गए होंगे, वो सब बताएं हमें।
1: जी मैम, मैं सबसे पहले पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद 18 बटालियन वीरपुर बिहार में हुई, उसके बाद मैं फोर्स हेडक्वार्टर जो है डी जी टीम से कुश्ती के लिए क्लोज किया गया, तो मेरे को यहाँ पे गेम में काफ़ी दिन गेम में रहा। उसके बाद मेरे को जो है डेप्टेशन एनएजी के लिए डेप्टेशन हुआ, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। एनएजी करने के बाद वापस मैं 18 बटालियन में आया, 18 बटालियन के बाद 35 बटालियन में आया, जिसमें कि जो है झारखंड में थी।
0: वाह क्या बात है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आपको तो जैसा कि मैंने स्वयं अभी कहा, आपने पहले कहा कि वेट लिफ्टिंग में आपको सम्मान प्राप्त हुआ, तो जो आप वर्जिश करते रहे, सेनाओं में रहते रहते आप करते रहे, और साथ ही साथ आप खेलों के प्रति भी आपका रुझान, जैसे कि वेट लिफ्टिंग में आपको गोल्ड मेडल भी मिला है, तो ये साथ साथ आप करते रहे और कितना समय निकाल पाते?
1: मैम मैं जो है जब मेरे से ड्यूटी से समय मिलता था तो मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था, तो उसके बाद मेरे को मेरे बल ने मेरे को मौका दिया, मेरे को हेडक्वार्टर बुलाया और मेरे को टीम में शामिल किया, कंपटीशन करके मैं वहाँ पे आया, तो मैंने अपनी एसएसबी में अपने बल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मैं
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक प्रश्न जो है मैं भूल रही हूँ, मुझे लगता है कि उस प्रश्न को यहाँ ज़रूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि 20 सालों का यह सफ़र यादगार रहा है और आगे भी रहेगा। आपसे वो लोग मिलते होंगे ज़रूर जो आपके साथी होंगे, और कहीं ना कहीं कहते होंगे, कुछ ये कहते होंगे कि तुमसे प्रेरणा मिली, और कुछ ये कहते होंगे कि काश हम भी तुम जैसे बन पाए, ऐसा होता है?
1: हाँ मैम, काफ़ी लोग मेरे जो मित्र हैं बल्कि काफ़ी मिलते हैं और बहुत मतलब मेरा साथ देते हैं, बोलते हैं यार आपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और आप इस लायक थे, काश हम भी आपके साथ होते, और बोलते हैं कि और वो होते उस टीम का हिस्सा तो हो सकता है मेरे से भी अच्छा करते हो।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा वो लोग जो सीमा में यानी कि सशस्त्र सीमा बल में आने से पहले, आपके वहाँ जुड़ने से पहले वो साथी, वो भी तो आपसे प्रभावित हुए होंगे या होते होंगे, कहते होंगे, कुछ साथी ऐसे भी होंगे कि जो आज खुद सेनाओं में है, कुछ खुद फौज में है, तो वो उन दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी और क्या सा समा था उस वक्त जब आप तैयारी कर रहे थे, आपके साथ में बहुत से लोग और तैयारियां कर रहे होते?
1: मैम ज़्यादातर जो है हमारे गाँव में से काफ़ी लोग होते हैं, लास्ट में जैसे कि मैं बताना चाहूँगा सभी भर्ती हो लेते, लास्ट में मैं हुआ था, तो जितने भी तैयारी करते थे ज़्यादातर लोग सेना में भर्ती हो गए, और कुछ थे जो हमारे साथी थे जो कि नहीं हो पाए, जैसे कि मेरा एक मित्र था योगेश शर्मा, वो जो है कोशिश भी किया पर भर्ती नहीं हो पाया।
0: तो उनके मन में मलाल रहा होगा कि काश हम भी तुम जैसे बन पाते, काश।
1: हाँ मैडम बिल्कुल बोलते हैं।
0: अच्छा कुछ ऐसे भी होंगे ये बोलते होंगे कि तुम्हारी वजह से हम आज वहाँ हैं, हम भी आज सेनाओं का हिस्सा हैं, हम भी अपना गर्व से सीना चौड़ा करके चलते हैं, कुछ प्रेरणा स्रोत?
1: मैम ऐसा साथ में बोलते थे कि क्यों हमारे जो साथी थे जो हमारे साथ दौड़ते भागते थे वो एक दूसरे का एहसान जरूर मानते, और कुछ हमारे जो सीनियर थे जो फौज में थे वो स्टाफ वॉच लेके मैम सभी को दौड़ाते थे, तो वो यादें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनमें हमारे जो लगने में सिर्फ हमारा ही मेहनत नहीं, हमारे गांव के फौजियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने भी हम पे काफ़ी मेहनत करवाया, स्टाफ वॉच लेके खड़े होना, फौज में क्या होता है, भर्ती की तैयारी कैसे की जाती है, ये सब कुछ बहुत मतलब
0: सुखद रहा है। मतलब अच्छा मैंने तो ये भी सुना है कि आप भी तैयारियाँ करवाते थे।
1: जी मैम, मैं जो शुरू से ही जो कुश्ती में और गेम में था, तो जो मेरे कोच थे नेपाल पहलवान, तो उनसे मैं कोचिंग लेता था, तो उसी

0: प्रकार की मैं जो एक्सरसाइज वगैरह अखाड़े में इसमें करवाता था, तो उस प्रकार से मैं दौड़ भाग बताता था, इस प्रकार से करना है, डंडे ऐसे मारनी है, बैंड ऐसे करना है, सेटअप ऐसे लगाने, तो उस प्रकार की मैं जो है उनको ट्रेनिंग देता था मैम।
1: वाह, तो जो आप ट्रेनिंग देते थे उसके उपरांत जब उनके नतीजे आते थे निकल कर, तो कैसा महसूस होता था? और कितने दोस्तों को आपने ट्रेनिंग दी, और आपकी नियुक्ति कब हुई?
0: मेरी नियुक्ति 2005 में हुई थी
1: जी,
0: मैम।
1: ये तो आपने मुझे बताया।
0: जी,
1: तो क्या उन दोस्तों से पहले नियुक्ति हो गई थी, उनके बाद हुई?
0: उनके बाद में हुई मैम, मेरी
1: अच्छा,
0: सबसे बाद में मेरी नियुक्ति हुई थी मैम। और जो है मैंने काफ़ी और ज़्यादा लगन से मेहनत करी, मेरे साथ के सभी लग गए, जिनको मैं
1: सिखाता था।
0: सिखाता था वो लग गए, तो मेरे को और भी ज़्यादा लगन हुई मैम, मैंने और ज़्यादा कड़ी मेहनत करी और फिर जो है अपनी SSB बल में
1: तो
0: भर्ती हो गया।
1: आपने अपने साथ साथ सबकी नैया पार लगाई,
0: जी
1: यानी कि मास्टर जी।
0: नहीं, मैं
1: हाँ
0: नैया तो नहीं खैर ये बोल सकता,
1: हाँ
0: जो हमारे उनका मेहनत थी उनका फल था मिला।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत का फल जरूर व्यक्ति को मिलता है अगर उसमें ये भावना हो कि उसे प्राप्त करना है। और कहते हैं कि फौज तो वैसे भी आपको लक्ष्य को प्राप्त करना सिखाता है,
0: जी मैम,
1: अपने आप से लड़ना सिखाता है। और कहते हैं जब अपने आप से लड़ जाते हैं तो आप विजयी तो वहीं हो जाते हैं, और जब देश प्रेम की भावना हो तो बात ही कुछ और होती है।
0: बिल्कुल
1: तो आज हमारे साथ भागेंद्र जी हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद, जो हेड कांस्टेबल हैं सशस्त्र सीमा बल में। इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, भले ही इस बात का श्रेय ना लें, लेकिन हमारे लिए तो हम यही कहेंगे कि हर एक सैनिक, हर एक ऑफिसर जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश प्रेम मन में लिए, हमारे लिए दिन रात का चैन खोकर अपने प्राणों का भी ध्यान न रखते हुए अगर हमारे लिए मुस्तैद है, तो हम यही कहेंगे कि आप जैसा कोई भी नहीं। तो इन मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम सलाम और सलाम। और जैसे कि मैंने कहा था कि भागेंद्र जी का तो जुड़ाव मिट्टी से बहुत गहरा है, क्योंकि पिताजी ने मिट्टी में से फूल उगना सिखाया है और इन्होंने उसी मिट्टी को तिलक बनाया है।

0: आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हवलदार भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और हमारे लिए बहुत ही सुखद पल है ये, क्योंकि आप जैसे सिपाहियों से, वीरों से जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित हम महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां हर सिपाही अपने हाथ में अपने जीवन को लेकर चलता है, बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे, बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है और देश सेवा में अपने आप को समर्पित कर देश के प्रति अपने प्रेम को यहाँ दर्शाता है। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपके मन में कोई भी बात हो, आप कोई भी बात साझा करना चाहें, भागिंदर सिंह जी कोई कोई संदेश देना चाहें, तो आप 9868107070 इस नंबर पर हमें संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे पास बहुत सी बातें हैं भागिंदर सिंह जी से जानने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम बार बार ही कह रहे हैं कि 20 सालों का यह सफ़र बहुत यादगार इनके लिए रहा है। बहुत सी बातें हैं, बहुत से किस्से हैं, बहुत सी कहानियां इनके जहन में ज़रूर होंगी जो साझा करना चाहेंगे हमारे साथ। लेकिन आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ जानना चाहती हूँ। 10 जुलाई 2020 क्या हुआ था? क्या हुआ था जिसके बाद आपकी चेहरे की जो मुस्कान मुझे बता रही है कि कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसने आज आपको और भी गौरवान्वित महसूस करवाया, और आप उस बात का जिक्र बार बार करना चाहते हैं। क्या हुआ था 10 जुलाई 2020 को?
1: मैं बताना चाहूँगा, 10 जुलाई 2020 को मैं झारखंड में पोस्टिंग था 35BN में। एक मैम, हमारी जो झारखंड में एक स्मॉल एक्शन टीम हुआ करती थी, उसका गठन जो है संजय सर ने किया था, IPS संजय सर ने, और हमारे बल ने, SSV ने उसको बहुत सहारा था। हमारे जो बल की जो सबसे बड़ी नीम है हमारे डीजी साहब ने जो है अपनी SSV को जो कई बार मौका दिया है ऑपरेशन करने का, और उसका तो ये ऐसा था मैम, जो झारखंड में जब हम गए थे तो झारखंड में माओवादी बहुत चरम सीमा पर थे, जो कि दुमका, पाकुड़, देवघर, ये जो चार पांच जो ज़िले थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आम पब्लिक बहुत परेशान थी, लेवी वसूलना, आम पब्लिक को परेशान करना, फौज पर अटैक करना, ये काफ़ी जो है गतिविधियां होती थी वहाँ। तो ये 32 बटालियन थी जिसके जो है सर थे दीपक सर, वो भी थे उस ऑपरेशन में। संजय सर थे IPS IG संजय सर, और DIG सुमित जोशी सर थे, मनोरंजन पांडे कमांडेंट सर थे, और दीपक सर कमांडेंट, और ललित शाह DC डिप्टी कमांडेंट, नरपत सर डिप्टी कमांडेंट, ये काफ़ी जो है हमारी टीम के हिस्से थे, जो कि उनके द्वारा जो है ये ऑपरेशन किया गया। और इस टीम में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो टीम का गठन किया था वो संजय सर ने किया था, कि कोई एक ऐसी टीम हो जिसे मैम इनका जो है नक्सलियों का सफाया करा जाए। तो

0: उस टीम का नाम रखा गया सेट टीम, स्मॉल एक्शन टीम। तो स्मॉल एक्शन टीम जब उसका नाम रखा गया तो उसकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड जो है करवाई गई। हर एक प्रकार के उसमें जो है ट्रेनिंग में जो कि अच्छे बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब कुछ करा मैं।
1: जी अच्छा, फिर ये बताइए कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, चयनित हुए, क्योंकि आपकी टीम में मतलब आपकी जो बटालियन थी उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपका एक मेंबर के रूप में चयनित होना कितना गौरवशाली था उस वक्त? कैसा महसूस हुआ कि मेरा चयन हुआ है, मैं टीम का मेंबर हूँ? कैसा कैसा लगा आपको?
0: जी मैम, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा और खुशी भी होगी मैम कि इसके बारे में मैं बताऊँ। तो आईजी जो आईपीएस आईजी संजय सर थे वो, और अपने जो है डीआईजी सुमित जोशी, मनोरंजन कमांडेंट सर, ये अपना ललित सर, टू आईसी नरपत सर, डीसी, ये सभी आते थे और उनकी सभी लोगों की ट्रेनिंग होती थी वहाँ। उनका टेस्ट लिया जाता था, उसके बाद उनका सिलेक्शन किया जाता था। तो मेरा जब सिलेक्शन किया था टीम में हमारे सर ने, सुमित जोशी सर ने, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि ये जो है स्ट्रक्चर भी अच्छा है और जो है लीडर भी अच्छा बनेगा, तो इसको जो है एज ए स्ट्रक्चर और टीम का CHM बना दिया जाए।
1: वाह,
0: दो नंबर टीम का मैम एक प्रदीप कुमार था जो मेरा मित्र था, वो दो नंबर टीम का मैं CHM था, एक नंबर टीम का CHM वो था।
1: वाह, बहुत खुशी हुई होगी। किस किस के साथ साझा किया कि मैं मेंबर हूँ? किसी के साथ साझा किया था उस वक्त?
0: नहीं मैम, ये साझा तो
1: नहीं
0: ऐसी
1: किया
0: चीज़ें नहीं
1: जाता उस
0: किया
1: वक्त,
0: जाता,
1: ऑपरेशंस के दौरान नहीं किया
0: मगर
1: जाता।
0: जो है टीम जो है एक ही माइंड के, एक माइंड सेट के, सभी की सोच एक सी हो, ऐसी टीम मिलना बड़ा मुश्किल
1: मुश्किल
0: है।
1: होता है।
0: जो कि हमारे बल ने ऐसी टीम को ढूंढा और सबको एकत्र किया और टीम का हिस्सा बनाया। उसमें ऐसा मैम कभी हमें फील नहीं हुआ कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं हमारे प्रति कुछ ऐसा हो, एक जगह रहना, एक जगह खाना, कभी ऐसा नहीं, भाई की तरह रखना, बिल्कुल कोई भी वो नहीं। जो ट्रेनिंग एक जवान करता है वही एक ऑफिसर करता है, बराबर जितना वर्क वो करता है उतना ही वर्क, कोई ट्रेनिंग में कोई कैसी भी जो भाईबंदी नहीं होती मैम।
1: बिल्कुल, एक टीम की तरह काम
0: तो
1: करते हैं।
0: जी, जिसमें कि मैम जो है आईजी जो संजय सर और डीआईजी सुमित जोशी सर ये रहते थे, तो उसमें कोई भाईबंदी की कोई गुंजाइश नहीं, वो कोई भी हो अपना सात सात दिन की मैम हमारी जो है वहाँ पे जंगल ट्रेनिंग भी होती है, तो उसमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें मैं बता भी नहीं पाऊँगा कि
1: जी
0: अंदरूनी
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी
1: अंदरूनी बातें हैं।
0: जी
1: और जब हम कहते हैं, जब आपकी फोर्स की बात होती है, तो बहुत सारे
0: जी
1: ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनको
0: जी
1: हम उनके सिर्फ हम उनका सिर्फ निर्णय हमारे सामने आता है कि विजयी रहे हैं और विजयी प्राप्ति हुई है, लेकिन ऑपरेशंस की बात यहाँ नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम भी यही चाहेंगे कि
0: जी
1: आप अपनी फोर्सेस की या अपने बल की गरिमा को बनाए रखें। अब बात आती है कि 2024 में राष्ट्रपति द्वारा आपको पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया इस एंटी माओइस्ट ऑपरेशन के लिए। उस वक्त तो लगा होगा कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि सम्मान प्राप्त करना गौरव की बात तो होती है, लेकिन ये लगता है कि जब मुझ मेरा चयन किया गया, हम हमारी पूरी टीम विजय हुई है, सम्मान मिल रहा है, लेकिन जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। उस वक्त क्या सोचा आपने?

0: द्वारा आपको पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया इस एंटी मायोस्ट ऑपरेशन के लिए। उस वक्त तो लगा होगा कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि सम्मान प्राप्त करना गौरव की बात तो होती है, लेकिन ये लगता है कि जब मेरा चयन किया गया, हमारी पूरी टीम विजय हुई है, सम्मान मिल रहा है, लेकिन जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। उस वक्त क्या सोचा आपने?
1: मैम देखो, बहुत मेरे को खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई और एक जिम्मेवारी भी बढ़ गई। जैसे ऐसा होता है ना मैम, जैसे कि आम का पेड़ होता है, जब आम आते हैं ना तो वो झुक जाता है, तो उसी प्रकार से मेरे को जितने भी मेडल लगे, जितनी DGDs मिली हैं, उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। जब मैं डिसिप्लिन में रहूँगा तो हमारे जवान भी डिसिप्लिन में रहेंगे, तो जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं बढ़ती है मैम।
0: बिल्कुल, सम्मान हर्ष देते हैं, सुखद अनुभूति कराते हैं, गौरव महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इन कंधों को और चौड़ा करके चलना है, और जैसा कि आपने कहा कि डिसिप्लिन में रहना है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। आपने एक बात और कही कि बहुत सारे सम्मान और आपको प्राप्त हुए हैं, ये भी बताएं हमें, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे, आंसू रो रहे होंगे जानने के लिए, वो और कौन से सम्मान हैं जिनसे नवाजा गया आपको?
1: जी मैम, मेरे को पुलिस मेडल मिला है मैम, और आंतरिक सुरक्षा मेडल मिला है, डीजी साहब की तरफ से मेरे को सिल्वर DGDs मिली है, गोल्डन डीजी डिश 1 स्टार, गोल्डन डीजी डिश 2 स्टार, और प्रशंसा पत्र हमारे डीजी साहब ने, आईजी साहब ने, डीआईजी साहब ने, कमांडेंट सर ने, काफ़ी मात्रा में मेरे को जो है प्रशंसा पत्र भी मिले, काफ़ी जो है मेरे को नगद इनाम भी दिया गया है मैम।
0: वाह, क्या बात है। और आपके जो पदक हैं इस वक्त आपने धारण किए हुए हैं ठीक अपने वक्ष पर, तो वो जिस तरह से चमक रहे ना, उनकी दीप्ति, उनकी चमक आपके चेहरे पर भी नजर आ रही है, और ये सच्चे देश प्रेम की गाथा है। शायद आप अपनी आंखों से ना देख पाए, लेकिन मेरे शब्दों के माध्यम से आप उस चमक को, उस दीप्ति को महसूस कर सकते हैं जब किसी सिपाही को, किसी सोल्जर को सम्मान दिया जाता है। और यकीन मानिए, ये सम्मान यूं ही अर्जित नहीं किया जाता, इसके लिए कर्तव्य निष्ठा चाहिए, देश प्रेम चाहिए, और बहुत सारी मेहनत चाहिए, और वो मेहनत और वो देश प्रेम आपके चेहरे पर आपके पदकों के साथ एक साथ खिल रही है। हम बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति के साथ, आप जैसे सिपाही के साथ जो सशस्त्र सीमा बल में रहकर अपना योगदान दे रहा है, काबिले तारीफ है। तो एक नगमा हमारी ओर से आपके लिए, क्योंकि आप जैसे जो सिपाही हैं जो ये सोचते हैं कि हमें बस चलते रहना है, रुकना तो कभी सीखा ही नहीं
1: जी,
0: है ना,
1: मैं।
0: तो उनके नाम हमारी ओर से ये नगमा बहुत ही प्यारा है, कर्मा फिल्म का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बेहद पसंद आने वाला है।
1: जी जी।

पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर। और आज का अंक हर बार की तरह बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह, सहस्त्र सीमा बल जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया और इसके अलावा कई पुरस्कारों से ये अलंकृत हैं। और हम यही कहेंगे कि आप जैसे सिपाहियों से जब हम रूबरू होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये बात ज़रूर उठती है कि काश हम भी आप जैसे बन पाते, काश हम भी इस प्रकार देश की सेवा कर पाते। पर कहते हैं कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने चुना है, अपने अपने कार्यों को कहते हैं ईमानदारी के साथ करने के लिए। तो जिस कार्य के लिए आपको चुना उसको आप बखूबी बहुत प्यार से सम्मान से निभा रहे हैं। एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा कार्य था, कौन सी ऐसी बटालियन थी, कौन सा ऐसा रोल था आपका जो आपको लगा कि

0: ये ना मिलता तो शायद कुछ अधूरा रह जाता। कोई कोई ऐसा है?
1: मेरा ये 35 से जो बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, जो कि वहाँ के जो कार्य थे काफ़ी जो है मेरी यादों में घुले मिले हैं।
0: जी जी, तो जब दूसरों से बात करते होंगे, बताते होंगे, तो ज़रूर जिक्र करते होंगे, है ना?
1: बिल्कुल जिक्र करते हैं मैम।
0: अच्छा, एक बात बताइए मुझे, इन 20 सालों में बहुत सारे मिशन्स रहे होंगे जिसके आप हिस्सा रहे होंगे, उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स भी आपके जो कहते हैं आपकी सर्विसेज में शामिल रही होंगी, तो किस किस तरह से आपको प्रशिक्षित किया गया लगातार जिससे कि आपको स्वावलंबी बनाया जा सके, जिससे कि आप सहस्त्र सीमा बल के लिए कहते हैं ना कि मजबूत, एक मजबूत सिपाही बन सकें, तो कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स जो आपको प्राप्त हुई?
1: जी मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने SSB में कमांडो कोर्स किया, उसके बाद जो है NSG ब्लैकेट कमांडो कोर्स में गया, वहाँ पे एक कैप्सूल कोर्स चलता है NSG के अंदर, वो भी किया है, वहाँ पे मैंने PTI कोर्स भी किया और जो है PTI इंस्ट्रक्टर था NSG में, और VIP ड्यूटियाँ करी हैं।
0: वाह क्या बात है, तो निश्चित रूप से आपको बार बार ये महसूस होता होगा ना कि कुछ और नया अर्जित कर लिया, कुछ और नया सीख लिया, कुछ और नया दे दिया, ये नयापन हमेशा रहता होगा।
1: हाँ जी मैम, फौज में हर एक चीज़ जो नई होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और ना ही जब तक उम्र है आदमी खालीपन ही रहता है, बस सीखे जाओ सीखे जाओ।
0: वाह क्या बात है। अच्छा, एक बात और बताइए कि सहस्त्र सीमा बल में आप अपना योगदान दे रहे हैं और 20 सालों का सफ़र यादगार भी रहा, आगे आने वाले कहते हैं जीवन के लिए भी आपने बहुत कुछ सोचा हुआ होगा, निश्चित रूप से आप ये चाहते होंगे आप और सम्मान अर्जित करें और बड़े बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा बने, लेकिन इनके साथ साथ कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन में उसका परिवार, उसका पारिवारिक जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे में अपने परिवार सबसे पहले की सहस्त्र सीमा बल के प्रति जो आपका का कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, वो तो सर्वोपरि है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार, इन दोनों के बीच कैसे भूमिका निभाकर चलते हैं और आपकी अर्धांगिनी का क्या योगदान है? क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो स्पाउस होता है, जो हमारी अर्धांगिनी होती है या जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में शामिल है, अगर वो ना हो तो शायद हमारे लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, तो किस तरह से सामंजस्य बैठा पाते हैं आप?
1: मैम ऐसा है कि जो परिवार और देश कहीं ना कहीं दोनों ही सम्मान लायक हैं, पर मेरे लिए सर्वोपरि पहले मेरा देश है, उसके बाद परिवार है। मैं जब ड्यूटी करता हूँ तो बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटियाँ निभाता हूँ, और जब मैं लीव पर रहता हूँ तो पूरा समय अपने परिवार को देता हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे जब परिवार खुशहाल है तो मेरे को भी दिल करता है अच्छे जो देश की सेवा करूं, देश के प्रति समर्पित रहूं।
0: बहुत खूब बहुत खूब। अब आप हमें ये बताइए कि परिवार में कौन कौन है? वैसे तो आप अपने आपने बताया अपने भाई बहनों के बारे में, तो ये बताइए कि जब प्रथम बार अपनी अर्धांगिनी से मिले आप, तो उनसे क्या कहा आपने? क्योंकि आप फौज में और कहीं ना कहीं अर्धांगिनी को बात समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि देखो देश पहले है, ऐसे में हो सकता है कि मैं तुमसे बहुत दिनों तक बहुत दूर रहूं, कुछ ऐसा उनके साथ साझा किया, कुछ कोई कहते हैं ना कि उनसे कोई प्रॉमिस लिया?
1: मेरे को मैम समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा पूरा परिवार ही जो है डिफेंस में है, उनके परिवार के भी काफ़ी डिफेंस में, उनको पहले से पता था, पर फिर भी जो एक रहती है, तो मैंने शादी से पहले पूछा था कि मैं फौज में हूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन्होंने पहले जो है बोल दिया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो मदर फादर कर देंगे वो मेरे लिए सब ठीक है।
0: अच्छा ये बताइए कि आप आपके लिए कोई प्रेरणा स्रोत रहे और आपने किसी से प्रेरणा ली, अब बच्चों पर जब बच्चों से आप बात करते हैं, बच्चों को किससे कहानियां सुनाते होंगे, तो आपके बच्चे आपसे क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं कि हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं?
1: जी मैम, मेरा बड़ा लड़का है जो है वो भी फौज में आने का इच्छुक है, जो कि अब 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो उसकी बहुत रुचि है, वो NDA की तैयारी के लिए बोलता है और करने के लिए इच्छुक है।
0: वाह क्या बात है, और हम यही कहेंगे जिस तरह से आपने बहुत लोगों की

0: नया पार लगाई अपनी नैया के साथ साथ, वैसे बच्चों की नैया पार भी आप निश्चित रूप से लगाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि आपके गांव के जितने भी बच्चे हैं वो आपको देखकर, ये गांव के और भी जो हमारे फौजी हैं उनको देखकर वो जरूर प्रेरणा प्राप्त करें,
1: बिल्कुल मैम,
0: क्योंकि देश प्रेम से बड़ा प्रेम तो कोई और नहीं। और देश के प्रति अपना सम्मान दर्शाने के लिए शायद फौज से बेहतर कुछ भी नहीं।
1: बिल्कुल मैम, ऐसा नहीं है कि जो फौजी है, कोई भी देश का जहाँ भी जैसे भी है, जैसे FM रेनबो आप भी एक देश की सेवा कर रही हो,
0: जी
1: तो
0: शुक्रिया,
1: ये जो जहाँ भी जो भी है, ईमानदारी से कहीं भी देश की सेवा की जा सकती है।
0: बिल्कुल कहीं से भी देश की सेवा की जा सकती है। इस बात की मिसाल है हमारे लिसनर्स भी जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, संदेश हमारे पास आए हैं। यश शिंदे ने मुंबई से संदेश भेजा है और इन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा शो हमारा चल रहा है, उसका सारा श्रेय भगिंदर जी आपको जाता है, क्योंकि जो बातें आपने साझा की वो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत रहीं, और यही कहेंगे कि हमारे लिए एक याद बन गई क्योंकि आपसे आज मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई। हेमंत कुमार यादव ने संदेश भेजा है, लिखते हैं, जय हिंद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको यानी कि आपको धन्यवाद यहाँ पे ज्ञापित कर रहे हैं। FM रेनबो को हार्दिक बधाइयाँ यहाँ पर लिख रहे हैं, कृपया हमारी ओर से आदरणीय भागिंदर सिंह जी को सादर जय हिंद अवश्य प्रेषित करें। और 28वीं वाहिनी SSB अंतागढ़ की PIT टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं भेजी गई हैं। देखिए कितना सुखद पल है आपके लिए भी। अच्छा जी, आपके लिए संदेश आया है थाईलैंड से मिस्टर अमोल भवानी का, और इन्होंने भी आपको जय हिंद लिख यहाँ पर आपका धन्यवाद ज्ञापन किया है। संदेश हमारे पास आया है शंकर लोध का, द्वारका सेक्टर 15 ककरोला दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका भी, आपने संदेश भेजा, और आप सभी दोस्तों का जिन्होंने समय निकाला। यहाँ पर एक हमारे पास संदेश आया, यहाँ पर नाम ज़रूर नहीं लिखा गया है, हेलो सर लिखा गया है, लेकिन जो DP है उसे महसूस होता है कि आप भी सेनाओं में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त संदेश भेजने के लिए। भगिंदर सिंह जी, हमारे पास समय यहाँ पर कम है, लेकिन चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन युवाओं को जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जो सेवाएं देना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि वो देश के प्रति अपने सम्मान को सेनाओं में सेनाओं से जुड़कर ज्ञापित करें, क्या कहना चाहते हैं आप उन सभी के लिए?
1: अंत में मैं ये ही कहना चाहूँगा, कहीं ना
0: जी
1: कहीं देश सेवा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है,
0: जी
1: और मैं यही कहना चाहूँगा, सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। नौकरी ही नहीं, कहीं भी देश के किसी भी कोने में जो देश की सेवा करी जाती है ईमानदारी से, निष्ठा से, कहीं भी देश की सेवा कर सकते हैं।
0: जी एक और संदेश हमारे पास आया है CT दीपक निगम का, दिल्ली 25th बटालियन से हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भेज रहे हैं आपको दीपक निगम। तो हम यही चाहेंगे कि आप यूं ही अपना प्यार इस कार्यक्रम के प्रति दर्शाते रहें, और आज मैं बहुत उत्साहित हूं, प्रसन्न हूं संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक के माध्यम से। हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी, सशस्त्र सीमा बल, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गारंटी से सम्मानित किया गया, तो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज आपके माध्यम से हमने इतनी सारी बातें आपके माध्यम से सुनी, आपका यात्रा वृत्तांत सुना। और मैं कहती हूँ कि आगे की ये जो यात्रा है और भी ज़्यादा सुखद हो, कि जब अगली बार हम मिलें तो
1: जी
0: आपसे
1: मैम,
0: और भी बहुत सारी बातें हों करने की कहने की। तो एक गाना अंत में आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी कि लता
1: जी
0: मंगेशकर का एक नगमा यहाँ आपके लिए प्ले किया जाए, तो हम आप सभी वीरों के लिए, सभी फौजियों के लिए, क्योंकि हमारे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हम ये कहेंगे कि उन सभी के लिए है, उन सभी फौजियों के लिए है जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं या सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में राज कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आप सभी के लिए ये नगमा, और ख़ास तौर पर ये नगमा भागिंदर जी के लिए हमारी ओर से। तो हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं भागिंदर सिंह जी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद FM रेनबो के स्टूडियोज़ में आने के
1: थैंक यू
0: लिए।
1: मैम।
0: और हम यही चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें और इस कार्यक्रम को नित्य प्रति सुनते रहें, क्योंकि आप हमारे देश के सैनिकों की हौसला अफजाई इसी

0: कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारे संदेश आने शुरू हो चुके हैं, मैं माफी चाहूंगी, समय यहाँ पर गुजर रहा है। जीडी राजेंद्र सिंह जी 25th बटालियन, इन्होंने संदेश भेजा है, हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जोया का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से संदेश आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, देखिए ये आपके प्रति प्यार है जो देश से नहीं विदेश से भी बहुत संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शायद मुझे कोई इस शो को एंड करने नहीं देगा क्योंकि संदेश इतने सारे आ रहे हैं। और हमारे पास संदेश है HC/GD बलविंदर सिंह जी का दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का संदेश भेजने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भगिंदर सिंह जी।
1: थैंक यू मैम।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 5 बजे हैं। आइए सुने युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

समय के साथ हालात बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती है, जीवन जीने के तौर तरीके बदलते हैं। साथ ही बदलती इस जीवन शैली में बहुत सारे कारण जो है वो निश्चित होते हैं। वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करें तो बढ़ती जनसंख्या कहीं न कहीं हमारे आने वाले भविष्य को चुनौती दे रही है। साथियों, जनसंख्या वृद्धि से आने वाले समय में मनुष्य को बहुत सारी कठिनाइयों का, या यूं कहें कि कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। शिक्षा, यातायात, भोजन, वस्त्र, मकान और समुचित चिकित्सा व्यवस्था, ये सब चीज़ें जब तक एक दायरे में जनसंख्या होगी तब तक आसानी से सारी सुविधाएं मिलती रहेगी। जैसे हम किसी एक जमीन के टुकड़े की बात करें, आने वाली पीढ़ियां उसी जमीन के हिस्से को जनसंख्या वृद्धि में अगर विभाजित करेगी तो आप खुद सोचिए इस बात को कि कितनी उसके हिस्से में आएगी। श्रोताओ, विषय गंभीर है। जैसे जैसे शिक्षा वृद्धि हो रही है, ये पीढ़ी जैसे जैसे शिक्षित हो रही है, हमारा देश भी यकीन मानिए सफलता की ओर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान शिक्षित होगा, सब चीज़ें समझने में सक्षम होगा, तो निश्चित रूप से हम इन समस्याओं को कम कर सकेंगे, खत्म कर सकेंगे।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज श्रीपाल शर्मा का साथियों, परिवर्तन संसार का नियम होता है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओ, अभी आपने सफर फिल्म का ये गीत सुना। आवाज थी मन्ना डे की, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। आइए अब सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में नागिन फिल्म का ये गीत।

सुदौ हम जहाँ भी रहते हैं, सबसे ऊपर राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। देशभक्ति की, देश प्रेम की भावना जो है वो हमारे मन में सर्वोच्च रूप से होनी चाहिए। विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है। हमारा देश, हमारा भारत पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। आदिकाल से ही हमारे राष्ट्र के लिए एकता सबसे ऊपर मानी जाती है। साथियों, एकता के बल पर ही हमारे देश ने मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक की क्रांति की जो लड़ाई लड़ी, वो एकता, वो संबल हमारे देश को महान बनाता है, विजयी बनाता है। साथियों, जिस तरह से हमारे देश में अलग अलग राज्य है, अलग अलग भाषा है, संस्कृति, विज्ञान, परंपरा, रीति रिवाज, खान पान, भौगोलिक परिस्थितियाँ, उन सब के बावजूद हमारा राष्ट्र एक है और राष्ट्र सर्वोपरि है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का एक लक्ष्य है। राष्ट्र के

देश के सभी राज्यों के बीच आपस में प्रेम, भाईचारा और संस्कार, देश के एकीकरण के लिए लोगों के बीच नव ऊर्जा का संचार करने का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत का मुख्य उद्देश्य है। राज्यों के बीच शिक्षा, पर्यटन, व्यापार, सब चीजों को मजबूत करना, दो अलग अलग राज्यों के लोगों को एक दूसरे के राज्यों की संस्कृति और सभ्यता को समझने और अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, सशक्त भारत का निर्माण करना एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य है। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच गहरे संबंध स्थापित करने और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना का विकास करने का उद्देश्य है। आज के दौर में युवाओं में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना इस एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। गीत अभी आपने सुना फिल्म का नाम था बाबू, आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीतकार राजेश रोशन। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम है गोरा और काला।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम देनेरी बाता आकाशवाणी जयपुर से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बातें।
1: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुंडा उतार किया बैठा हो।
2: काई करूँ दाबू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और बिरो जीसोरो भी कौन।
1: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीनेरी बातें। काकी साहब ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन से जुड़ी सबली समस्या रो समाधान।
3: इस कार्यक्रम की प्रायोजक है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: धीनेरी बातें धीनेरी बातें कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखू भाई और
5: बंशी भाई रा भी
4: मोकला मोकला
5: राम राम
4: राम राम बंशी भाई राम राम
5: राम राम हरखू भाई राम राम।
4: देखो आज गुरुवार है सिंजरी, देखो कितनी बजगी
5: 5:30 बजगी।
4: जन देखो अब डीक है सगला पूरे प्रदेश रह जगह भी पशुपालक भाई है।
5: हाँ।
4: बे आज सोचे गई आज चर्चा किन बात पर उसी चौपाल में
5: भैया देखो सा जिज्ञासा नहीं सगला रे मन रे मायने रेवे।
4: हाँ।
5: और खाली राजस्थानी जिका अपना लोग है भाई है।
4: हाँ।
5: उनारी नहीं।
4: हाँ।
5: राजस्थान सुबारे भी तो लोग इना ने सुने है।
4: हाँ भाई हमें तो देखो मोबाइल रे माध्यम से।
5: हाँ।
4: आखो विश्व सुन सके
5: एकदम।
4: और FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। पण एक बात बताओ काल दिन भर डागले पर लग्योड़ा झाड़ू लेवड़ो कहीं कर रिया था।
5: हरकू भाई थे तो पूरी कहने की जानकारी रखो हर आदमी री कौन कहीं करे। खैर हूँ आपने बता दू कि भाई देखो सा हूँ कर रहे हो साफ सफाई।
4: मानसून री तैयारी कर रिया था।
5: हाँ भाई देखो सा मानसून आने वालो है। बरसात आने वाली है तो भाई उनसे पहले ही आप अपने घर री साफ सफाई कर लेवा आस पास री सफाई कर लेवा।
4: हाँ।
5: तो बीमारियां सु आप ही तो बच सा।
4: बिल्कुल सा। और जो पानी है नी वो है अनमोल।
5: हाँ।
4: ओ बरसा जल अगर अपने डागला साफ उसी छत साफ उसी तो वो साफ सुथरो पानी आप कुंडी तक पूगी। और वो आप पूरे बरस पी सका। और पीवे लोग
5: पीवे भी है भाई।
4: आपने
5: देखो गांव रे मायने तो वही तो साधन है पानी बचत रो।
4: हाँ और कई जना देखो पानी ने यही बेवाद है वो अच्छो को नहीं सा जितो आप इन्हें बचा सका। देखो पानी है सोनो अगर मानो तो
5: एकदम साची बात है सोने से भी महंगो है।
4: हाँ।
5: कि भाई बाकी री चीजें है जिकी ने तो आपा बना सका पर पानी ने बना सका की
4: नहीं नहीं सर। हमें देखो सरकार जगह प्रयास है नहीं हर घर नल।
5: हाँ, हर घर
4: पानी पूगे पर फिर भी जगी चीज आपने आराम से मिल रही है नी। कोई भी चीज अगर आपने आराम से मिल रही है चाहे पानी हो चाहे बिजली हो बेरो आपने सदुपयोग करना है।
5: हाँ दुरुपयोग तो भी करना ही नहीं चीज है।
4: कमरे से निकलिया लाइट जगरी तो जगरी है ना ना ना जी निकल रहे हो तो पहलो काम आपने कहीं करना है
5: खटको बंद कर दो।
4: हाँ ओ अगर छोटो सी काम है वो आप ध्यान रख सा तो आप बचत खाली आप ही को नहीं आ देश की बचत है। और जे अपन घर में पानी रे नल है नी आप वो भी आप देख लेंगे खुल्लो तो को नहीं है।
5: हाँ।
4: फालतू बह तो नहीं रही है,
5: सही है।
4: इन छोटी छोटी बातें ध्यान रख सा नहीं तो आज की बचत है नी आ महा बचत है आने वाली पीढ़ी वास्ते बचत है।
5: आज री जी की बचत है नी वो काल रो आप रो खुद रो जीवन उसी।
4: हाँ देखो सा सगड़ा न सिला रिया सामे जी का देखो कितना जना बैठे राम राम बैठो बैठो सा। तो अब आ बताओ आज चर्चा किन विषय पर कर सो।
5: भाई देखो सा यही है कि अपना जगह पशुपालक भाई है बड़ा ही सजग है और अपने कागजिया लिखे कि भाई इन इन विषय पर जानकारी चाहे तो मिथक हुआ करे अपने समाज रे मायने पशुओं से जुड़ोड़ी तो उन बाबत जानकारी दो। और कई लोग बाग में के भाई टीकाकरण कई हुए इन बाबत जानकारी दे रहा हो सा। और कई जना लिखे कि भाई टीका लगाने से फायदा हुए नहीं हुए ए जानकारी आप पूछो।
4: टीकाकरण ने ले पर अभी कहीं मिथक ऐसा है नी।
5: बिल्कुल है
4: तो जन विषय कहीं बनियो के पशुओं माए टीकाकरण मिथक साच और लाभ।
5: विषय बन गयो आज रो।
4: हाँ तो आज मैं चौपाल में जानकारी देने सारू आमंत्रित करिया है सहायक आचार्य राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारे डॉक्टर राम कुमार जांगीड। तो डॉक्टर राम कुमार जी आप चौपाल में घणो घणो स्वागत है। आपने मैं करा
5: राम राम, राम सा
4: राम राम सा। और अब देखो आज आप बातचीत करें पशुओं में टीकाकरण मिथक साँच और लाभ इन विषय पर आज डॉक्टर साहब आपसू मैं बातचीत कर सर आपसे उम्मीद करें कि आप मैंने अच्छी अच्छी जानकारी दे सो।
5: और इन सारू ये देखो सा हरखू भाई ठीक हो तो पहले सवाल हूँ कर लूंगी डॉक्टर साहब।
4: हाँ हाँ बिल्कुल।
5: हाँ तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आप आ बताओ कि पशुओं के खातिर टीकाकरण जरूरी क्यों है और किन बात रोगा से सुरक्षा दिया करे इन बाबत महाराजा का पशुपालक भाई है उन्होंने सगला ने आप जानकारी दिलाओ सा।
6: जैसा कि सभी पशुपालक भाई अनुभव करते रहते हैं कि पशुओं को समय समय पर अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। इनमें से कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका उपचार संभव होता है और उससे

पशुपालक को अधिक नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ एक संक्रामक बीमारियां इतनी गंभीर होती है कि वह पशु की जान भी ले सकती है और पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। उदाहरण के लिए गलगोटू हुआ, फड़किया हुआ, ये ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत तेजी से बढ़ती है और पशुपालक के पास उपचार कराने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता और पशु की अचानक मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में वैक्सीनेशन करके इन बीमारियों को रोका जा सकता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। वैक्सीनेशन या टीकाकरण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पशु के शरीर को किसी विशेष रोग से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है और वैक्सीन रोग उत्पन्न नहीं करती बल्कि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करती है। सामान्यतः टीका लगने के 15 से 30 दिन के बाद शरीर में उस रोग के विरुद्ध एंटीबॉडी या स्मृति कोशिकाएं विकसित होती है और ये एंटीबॉडी और स्मृति कोशिकाएं कुछ महीनों या वर्षों तक बनी रहती है। भविष्य में यदि वही रोगाणु जिसके लिए वैक्सीनेशन हो चुका है शरीर में प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र इन एंटीबॉडी या स्मृति कोशिकाओं की सहायता से उसे तुरंत पहचान कर प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर देता है। परिणाम स्वरूप अधिकांश मामलों में या तो संक्रमण नहीं होगा या होगा भी तो बीमारी बहुत हल्के रूप से रहेगी। तो इस प्रकार से टीका

0: कुछ महीनों या वर्षों तक बनी रहती है। भविष्य में यदि वही रोगाणु जिसके लिए वैक्सीनेशन हो चुका है शरीर में प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र इन एंटीबॉडी या समर्थी कोशिकाओं की सहायता से उसे तुरंत पहचान पाकर प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर देता है। परिणाम स्वरूप अधिकांश मामलों में या तो संक्रमण नहीं होगा या होगा भी तो बीमारी बहुत हल्के रूप से रहेगी। तो इस प्रकार से टीकाकरण पशुओं को स्वस्थ रखने का सबसे प्रभावी, सुरक्षित और किफायती निवारक उपाय है। इसका उद्देश्य बीमारी का उपचार करना नहीं बल्कि बीमारी से होने से पहले उसका बचाव करना है।
1: जी जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी कि टीकाकरण क्यों जरूरी है। टीकाकरण एक वैज्ञानिक पद्धति है और एक स्वस्थ राखण सारू और टीकाकरण होया करे रोगासु लड़ने की क्षमता बढ़ाया करे। एक डॉक्टर साहब कहीं महाराज जी पशुपालक भाई कहया करे के जे पशु स्वस्थ है तो फिर टीकाकरण क्यों?
0: स्वस्थ पशु में ही टीकाकरण करवाया जाता है वैसे।
1: अच्छा।
0: क्योंकि जितना ज्यादा पशु स्वस्थ होगा उसकी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम है, उतना ही अच्छा काम करेगा। और जब हम वैक्सीनेशन लगाते हैं तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसमें एंटीबॉडी और समर्थी कोशिकाएं विकसित करता है।
1: जी।
0: अगर पशु पहले से बीमार है या बहुत ज्यादा कमजोर है तो उसका प्रतिरक्षा प्रणाली वो अपेक्षित रूप से कार्य नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी और समर्थी कोशिकाएं बन नहीं पाएगी, तो उससे ये होगा कि टीकाकरण का प्रभाव भी कम हो जाता है, वो प्रभावशाली नहीं रह पाता। तो इसलिए प्रत्येक पशुपालक को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि टीका हमेशा स्वस्थ पशु में लगाया जाता है ताकि भविष्य में गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रह सके।
1: जी जी, तो थारा कहने का मतलब वो है कि पहला सु चौकीदार मायने खड़ा कर दे, जे चोर आवे तो वो पहला सु सक्षम रहे सु लड़न वास्ते, और जे अस्वस्थ पशु है पछे टीकाकरण करा तो भी फायदा तो जल्दी मिले को नहीं।
0: अस्वस्थ पशु में उसकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली होती है वो इतनी सक्रिय नहीं होती।
1: जी,
0: सुरक्षा उसमें मिलेगी, अस्वस्थ पशु उसमें सुरक्षा मिल सकती है पर इतनी अच्छी सुरक्षा नहीं मिलेगी जितनी स्वस्थ पशु में मिलेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
2: जी हाँ डॉक्टर साहब, बताओ कि भाई रोगाणु से लड़ने की शक्ति है जिसको टीकाकरण दिया करे, अब फिर भी डॉक्टर साहब लोग बात क्या करे कि टीको लगाने के बाद पशु बीमार पड़ जाया करे, तो इन मिथक में कितनी सच्चाई है, इन बाबत भी आप जानकारी दो सर।
1: हाँ,
0: यह एक भ्रांति है। अधिकांश टाइम में क्या होता है वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित रहती है। कुछ पशुओं में क्या होता है वैक्सीन लगने के 24 से 48 घंटे के भीतर हल्का बुखार, सुस्ती, भूख में हल्की कमी, इंजेक्शन वाली साइड पे थोड़ी सी सूजन आ सकती है। यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि यह इस बात का संकेत है कि पशु की प्रतिरक्षा प्रणाली है टीके के प्रति प्रतिक्रिया कर रही है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। ऐसे लक्षण अधिकांश मामलों में बिना किसी विशेष उपचार के अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ कुछ मामलों में किसान को यह लगता है कि टीकाकरण के बाद पशु में तेज बुखार आ रही है, सांस लेने में कठिनाई आ रही है, अत्यधिक सूजन या कोई अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे से संपर्क कर सकते हैं। पर टीकाकरण एकदम सुरक्षित होता है। टीकाकरण से होने वाली सामान्य और अस्थायी प्रतिक्रियाओं से घबराने की जरूरत नहीं होती। वास्तव में टीकाकरण न कराने का जोखिम टीका लगाने के बाद होने वाली सामान्य प्रतिक्रियाओं की तुलना में कहीं अधिक गंभीर होता है। इसलिए अपने सभी पात्र पशुओं को समय पर टीकाकरण कराना आवश्यक है।
1: बिल्कुल सर, देखो बात तो खरी है कि समय पर अगर टीकाकरण करा ले आपर पशु है वो स्वस्थ रहे। और अब डॉक्टर साहब बात आवे कि अपने क्षेत्र में किसा किसा महत्व रोग है जिन्हारे खातिर नियमित टीकाकरण की जरूरत होया करे या जरूरी मानी जाया करे।
0: हमारे क्षेत्र में गाय और भैंसों के लिए खुरपका और मुहपका, गलघोटू, ब्लैक क्वार्टर, लंपी स्किन डिजीज तथा निर्धारित आयु की मादा बच्चियों में ब्रुसेलोसिस के विरुद्ध टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार भेड़ और बकरियों में पीपीआर या फड़किया, एंट्रोटॉक्सेमिया तथा प्रभावित क्षेत्रों में सिपपॉक्स, गोटपॉक्स के विरुद्ध नियमित टीकाकरण की सलाह दी जाती है।
1: और देखो पेन कॉपी में लोग ले बैठा है वे भी लिखता जा रहे हैं पॉइंट के हाँ आ चीज नहीं है, आ चीज आपने ध्यान रखनी है।
2: हाँ, और देखो सा आ सजगता है नी आई आपने कई करे कि आपने बढ़ा वे अपना जो पशुधन है उन्होंने बढ़ावे और इनरो सूचक हो है, इनरो देखो सबूत हो है कि भाई देखो सर सरिता भाई है जो कागज में लिखकर भेजी है। डॉक्टर साहब पूछे कि भाई क्या गर्भवती मादा पशु, छोटा बछड़ा या मेमना रे भी टीको लागिया करेगी? जे लागी जाए अगर बीआर टीको तो किसी किसी बात रो ध्यान है जो माने रखनो चाहिए।
1: भाई प्रश्न तो सरिता भाई अच्छा पूछे, अब बताओ डॉक्टर साहब जानकारी दो।
0: असल में गर्भवती पशुओं और छोटे मेमनों का भी टीकाकरण किया जा सकता है लेकिन यह निर्धारित टीकाकरण कार्यक्रम और पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही किया जाना चाहिए।
1: जी,
0: गर्भवती पशुओं में केवल वही वैक्सीन लगाई जानी चाहिए जो गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित मानी जाती है। इसके अलावा गर्भावस्था के अंतिम चरण में पशुओं को अनावश्यक तनाव, लंबी दूरी तक ले जाने और अत्यधिक शारीरिक श्रम से बचाना चाहिए। इसलिए इस अवधि में टीकाकरण का निर्णय हमेशा पशु चिकित्सक की सलाह से ही लेना चाहिए। छोटे बछड़ों और मेमनों में जन्म के तुरंत बाद टीका नहीं लगाया जाता क्योंकि शुरुआती दिनों में माँ के पहले दूध से प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है। जैसे जैसे यह सुरक्षा कम होती है निर्धारित आयु और टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार वैक्सीन लगाई जाती है।
1: जी,
0: अधिकांश रोगों में छोटे मेमनों में 3 से 6 महीने की आयु के बीच

0: ये टीके लगाए जाते हैं, पर कुछ एक टीके होते हैं जो अर्ली एज में भी लगाए जा सकते हैं, जो टिक वगैरह जो उनसे बचाव वाले टीके, एक्टोपैरासाइट इंड्यूस्ड जो डिजीजेज होते हैं उनके लिए आप एक दो टीके ऐसे होते हैं जो लगाए जा सकते हैं अर्ली एज में भी, वो क्रॉस ब्रीड के लिए होते हैं सिर्फ,
1: अच्छा
0: इंडिजिनस के लिए नहीं, मतलब देसी ब्रीड के लिए उनको जरूरी नहीं, उनका महत्व नहीं इतना।
2: जी जी, तो सरिता भाई जो को आप सवाल पूछियो भाई, आप आशा करा कि भाई उन्होंने वो जवाब मिल गयो, और उन्होंने साथे साथे आपना जो पशुपालक भाई दूजा भी है उन्होंने भी इनकी जानकारी मिल गई उसी।
3: बिल्कुल मिल गई, और सरिता भाई जी की मुस्कुराहट इन बात बता दी के बाद संतुष्ट है जवाब से। हाँ। तो अब एक डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहवा कि अलग अलग पशु जिया गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, इन सारू टीकाकरण जो एक वार्षिक कार्यक्रम है वो किन बात होना चाहिए?
0: असल में टीकाकरण का जो कार्यक्रम होता है वो पशु की प्रजाति, आयु, क्षेत्र में प्रचलित रोगों तथा सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। जैसे हमारे राजस्थान में सामान्यतः गाय और भैंस के लिए खुरपका और मुंहपका की वैक्सीन होती है, वो प्रत्येक 6 माह के अंदर होती है, वर्ष में 2 बार बरसात से पहले की जाती है। इसी प्रकार गलगोटुआ, उसकी भी साल में 1 बार वैक्सीन होती है, मानसून से पहले अप्रैल जून में। इसके अलावा ब्लैक क्वार्टर जिसे लंगड़ा बुखार भी कहा जाता है, ये प्रभावित क्षेत्रों में 1 बार कर वैक्सीनेशन की जाती है। लंपी स्किन डिजीज हुआ, इसकी वर्तमान में 2 साल में 1 बार वैक्सीन लगती है। इसके अलावा ब्रुसेलोसिस हुआ, ब्रुसेलोसिस के लिए साल में जो छोटी बच्चियां होती है उनको 4 से 8 माह की अवधि में लगती है, सिर्फ बच्चियों में लगती है ये वैक्सीन। इसके अलावा भेड़ और बकरियों में PPR के लिए 3 वर्ष में 1 बार वैक्सीन लगती है सरकार के दिशा निर्देश अनुसार। इसके अलावा एंट्रोटॉक्सिमिया फड़किया के लिए वर्ष में 1 बार वैक्सीन लगती है, वो भी बरसात से पहले, और सिप और गोट पॉक्स के लिए वैक्सीन लगती है। तो ये इतनी वैक्सीन हमारे जो सिप और गोट या जो गाय और भैंस है इनके लिए अभी अपने राजस्थान क्षेत्र में लग रही है। तो इनका कार्यक्रम सरकार के दिशा निर्देश अनुसार चलता है सारा।
3: जी, राजस्थान सरकार का दिशा निर्देश है वीर हिसाब से टीकाकरण कार्यक्रम चालिया करें, और आपने वीर माने भागीदारी निभावनी चाहिए। आप जिका भी पशु है जिका समय पर जिको टीका लगावना है मैंने आपने समय पर अस्पताल जा पर आपने टीको लगावनो जरूरी है और लगाना भी चाहिए।
2: और अब जरूरी कहीं है की बताओ थे?
3: जरूरी तो डॉक्टर साहब का टीकाकरण जरूरी है।
2: हाँ, तो वो तो भी समय आवे जब लागी लगाना भी चाहिए, पर अब आरी बात करा अपना आज री बात करा
3: समझ गया, मनोरंजन नो टीको चाहिए। तो भैया वंशी भाई कहे के गीतड़ लो सुना दियो, तो आप से सुनो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।

0: तो भाई आभार, आप सुनियो एक मीठो मीठो सोगी तड़लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धूड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीणेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
0: इन बेड़ा आप से सुन दिया हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति धीणेरी बातियां। और आज आपने जानकारी दी उन सर पधारे राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर राम कुमार जांगीड़। और आज आप बातचीत कर सा पशुआ माए टीकाकरण मिथक साच और लाभ विषय पर।
2: भाई देखो सा, अपनो जो को काम है वो है मिथक जितना भी है उन्होंने दूर करने रहो। हाँ। और उन सारू आवे विशेषज्ञ डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, अबे मारो जो को आगलो सवाल है वो आपसू ओ है कि जे कोई पशु ने तय समय माथे टीको नहीं लगा पावा अगर जे, तो उन बेड़ा पशु पालक ने कई करनो चाहिए, इन बाबत आप जानकारी दे सा।
3: यदि किसी कारणवश निर्धारित समय पर टीका नहीं लग पाया है वो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले बिना देर किए अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशु चिकित्सक पशु की आयु, टीकाकरण का पिछला रिकॉर्ड, टीका छूटने की अवधि को ध्यान में रखकर यह निर्णय लेता है कि केवल छूटी हुई खुराक लगानी जरूरी है या टीकाकरण का कार्यक्रम पुनः प्रारंभ करना है। इसलिए बिना विशेषज्ञ की सलाह के स्वयं कोई टीकाकरण संबंधी निर्णय नहीं लेना चाहिए। ध्यान रखें कि टीकाकरण में अनावश्यक देरी होने पर पशु खुरपका, मुंहपका हुआ, गलघोंटू हुआ, ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ा बुखार हुआ तथा अन्य संक्रामक रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए यदि किसी कारण से टीका छूट जाए तो उसे यथाशीघ्र पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार पूरा करना ही सबसे सुरक्षित और प्रभावी उपाय है।
0: बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर साहब। और अब एक मिथक कहना या भ्रांति है कि क्या करे है कि पशुपालक के देसी नस्ल जगह पशु है भी टीका लगाने जरूरी गो बहने, आप बात कितनी सही है, इन बार थोड़ी बहने जानकारी दो सा।
3: यह धारणा सही नहीं है। असल में संक्रामक रोग नस्ल देखकर हमला नहीं करते। यह भी सही है कि कुछ परिस्थितियों में विदेशी या क्रॉस ब्रीड नस्लों के पशु स्थानीय जलवायु या उनके जेनेटिक मेकअप पशु प्रबंधन प्रणाली के साथ पूरी तरह अनुकूल न होने के कारण कुछ लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि देसी नस्ल के पशु सभी रोगों से पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। जैसे खुरपका, मुंहपका हुआ, गलघोंटू हुआ, लंपी स्किन डिजीज हुआ, पीपीआर हुआ, ब्रुसेलोसिस हुआ और रेबीज हुआ, ये ऐसे संक्रामक रोग हैं जो किसी भी नस्ल के पशु को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी

0: पशुपालक भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूंगा कि देसी नस्ल का होना रोगों से सुरक्षा की गारंटी नहीं है। पशु की वास्तविक सुरक्षा समय पर टीकाकरण, संतुलित पोषण और अच्छे प्रबंधन से ही सुनिश्चित हो सकता है।
1: जी साहब, देखो चर्चा करा जने मिथक टूटे
2: है ने भाई, अपन तो काम ही होई है कि भाई ज्ञान है जको डॉक्टर साहब रे माध्यम से उना तक पुगावनो। और डॉक्टर साहब जिया थे आप बताओ कि भाई टीकाकरण है बहुत जरूरी हुआ करे सगला पशु वाले खातर, तो टीकाकरण री बेला लगावती बेला और उनारे बाद रे मायने किनी किनी बातारो ध्यान राखनो चीजे इन बाबत भी तो महाराज का पशुपालक है उन्होंने आप जानकारी दियो साहब।
1: बिल्कुल,
0: टीकाकरण हमेशा प्रशिक्षित पशु चिकित्सक और पशु विभाग के अधिकृत कर्मचारी से ही करवाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करें कि वैक्सीन सही तापमान अर्थात कोल्ड चैन में सुरक्षित रखी गई हो। टीका केवल स्वस्थ पशु को लगाना चाहिए। यदि पशु गंभीर रूप से बीमार है तो पहले उसका उपचार कराना उचित है। टीकाकरण के बाद पशु को पर्याप्त आराम, स्वच्छ पानी, संतुलित आहार उपलब्ध कराना चाहिए और अगले 24 से 48 घंटे तक उसकी निगरानी करें। इंजेक्शन वाली जगह पे हल्की सूजन, हल्का बुखार, कुछ समय के लिए सुस्ती, सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है और सामान्यतः स्वयं ठीक हो जाती है। लेकिन यदि पशु को तेज बुखार है, सांस लेने में कठिनाई है, अत्यधिक सूजन है, कोई अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दे रहा है तो पशु चिकित्सक से संपर्क करें। बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि इस तरीके के दुष्प्रभाव वैक्सीन लगने के बाद होते हैं। इसके अतिरिक्त बेहतर प्रतिरक्षा के लिए पशुओं को नियमित कृमिनाशक और संतुलित पोषण और स्वच्छ आवास भी अत्यंत आवश्यक है।
1: जी साहब, देखो छोटी सी बात सुई जगह मिथक है, भ्रांतियां है, टूट जाए करे। और अब एक डॉक्टर साहब बताओ कि सरकार द्वारा भी कोई निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया करे कहीं, जे चलावे तो हमारा पशुपालक भाई भी रो लाभ क्या उठा सके।
0: भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत खुरपका मुंहपका हुआ, लंपी स्किन डिजीज हुआ, ब्रुसेलोसिस हुआ तथा कुछ अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम करना उनका उद्देश्य है। तो पशुपालक भाइयों को इन जो योजनाएं हैं इनका लाभ उठाने के लिए अपने निकटतम पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय या ग्राम पशु पंचायत, पशुधन सहायक अथवा पशुपालक विभाग से संपर्क करना चाहिए। कई स्थानों पर विभागीय टीमें गांव-गांव और घर घर में जाकर टीकाकरण करती है, तो हमें उस टाइम उनका टीकाकरण जो टीम है उसका सहयोग करना चाहिए और टीकाकरण के बाद उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए ताकि भविष्य में अगली खुराक समय पर लगाई जा सके। पर किसान को जो टीकाकरण करने वाली जो टीम है उसके साथ कॉन्टेक्ट करना ही सबसे उपयोगी जो तरीका है कि उसको टीकाकरण जो परियोजना है उनका लाभ मिल सके। तो इनकी जानकारी होना सबसे इम्पोर्टेंट है
1: भाई। आपने भी देखो जागरूक होने की जरूरत है कि आप गांव में जो टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है तो आपने भी बढ़ चढ़े हिस्सो लेने, आपने जानकारी लेने के भाई आप गली मायने कद आई और आपने किसो टीको लगाने है। फिर डॉक्टर साहब एक महत्वपूर्ण बात बताए कि आपने लिखना भी है कि वो टीको किसो लगे है और कद लगे, ताकि अगले टीको जद भी लगे बीरो बखत आपने ध्यान में रहे कैसा हाँ आज वो टीको लगे, हम इतना दिन बाद में, इतना महीना बाद में वो टीको लागणो है। जी आप लिखियोड़ो रहसिन जन अपन ध्यान में रहसिन के टीको कद लगवायोड़ो है।
2: और जो लिखा पट्टी है नी उन्होंने तो भाई खासो महत्व है, चाहे वो व्यापार री बात हो और चाहे वो पशुधन री, भाई पशुधन भी तो एक व्यापार है। भाई उन्होंने मायने भी तो आपने लेखो जोखो राखनो चीजे कि भाई किसो पशु है जो स्वस्थ है, कद टीको लगायो, कद वो बीमार पड़ियो, कद नहीं पड़ियो, तो ये जानकारी उसी उसी भी तो आपने लाभ मिलसी।
1: बिल्कुल साथ, देखो खाली व्यापार ही बात ना करो, स्वास्थ्य री भी बात करो, स्वास्थ्य भी लिखा पट्टी जरूरी है। टीका लगावा
2: भूल जावा पर लिखित मायने होसी नी आप जद भी कदी भी देख सका।
1: बिल्कुल
2: भाई, देखो सा आपा तो प्रयास करियो कि भाई घनकरा जका विषय है, बातना है, प्रश्न है, भाई डॉक्टर साहब से पूछा, फिर भी चालती चालती बेड़ा मारा पशुपालक ने आप रो कई संदेश है डॉक्टर साहब जिके सुबह आप रे पशुधन ने स्वस्थ और सुरक्षित राख सके।
0: अंत में मेरा सभी पशुपालक भाइयों और बहनों से यही अनुरोध है कि रोग होने का इंतजार न करें बल्कि समय रहते उसका बचाव करें। याद रखिए इलाज से बेहतर बचाव है और बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है समय पर टीकाकरण। सरकार और पशुपालक विभाग समय समय पर निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाते हैं। हमारे पशु चिकित्सक और पशुपालक विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी घर घर जाकर आपके पशुओं का टीकाकरण करते हैं। मेरा सभी पशुपालकों से अनुरोध है कि वे इन अभियानों में पूरा सहयोग करें, अपने पशुओं को समय पर टीकाकरण करवाने के लिए उपलब्ध कराएं। आपके सहयोग ही इन अभियानों की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि स्वस्थ पशु ही समर्थ पशुपालक, सुरक्षित परिवार और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पहचान है।
1: बिल्कुल सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर साहब आपने कि स्वस्थ पशु ही समृद्ध पशुपालक है और सुरक्षित परिवार और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पहचान है सर।

0: बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब, अब बात बताइए भाई।
1: एक और अब डॉक्टर साहब है तो पण बात कही जी की मारे माथेर माने नोट होगी कि रोग होने रो इंतजार ना करो
0: हाँ
1: के रोग उसी पछे आप टीकाकरण करा सा नहीं सा जागरूकता पर मन में होनी चाहिए और लिखा पढ़ी भी होनी चाहिए कि टीको कद लगे और अगलो टीको कद लाग सी। तो देखो टीकाकरण से जुड़ी आज अपने बहुत चीज की भ्रांतियां बे मिटी और महत्वपूर्ण अपने जानकारी मिली। तो हमें देखो बखत इशारों करने लग गए है
0: उनारी कदर तो भाई आपने ही करनी
1: बिल्कुल सा। तो पशुपालक भैया मैं आपने बता दूं आज चौपाल में जानकर दीवन सरू पधारिया है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से सहायक आचार्य डॉक्टर राम कुमार जांगीड और आज आप बातचीत करी पशु हमारे टीकाकरण मिथक साच और लाभ विषय पर। तो डॉक्टर राम कुमार जागीर साहब आप चौपाल में पधारे और हमारे पशुपालक ने बहुत ही महत्व जानकारी आप दी इन सारों में आपने देवा धन्यवाद और करा
0: राम राम, राम सा
2: राम राम सा।
3: तो आप ही आकाशवाणी बीकानेर रे ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति धीणे री बातिया कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्रीमती पुनीत बिश्नोई सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशीरी। तो सा हमें महने आज्ञा दिराव सा घणान घणा राम राम सा।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
5: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं पर आज मुन्ना उतार किया बैठा हो
6: काई करूँ दापू बेटा भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और विरोध जीसोरो भी कौन
5: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया काकी साहब कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन से जुड़ी होरी सबड़ी समस्या रो समाधान।
7: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धीनेरी बाता, जिसे हमने आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया। हम आकाशवाणी के कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज पर, एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। संध्या के 6 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिराय की। 6:30 पर आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिली किए जाएंगे। तत्पश्चात 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:40 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित की जाएंगी।

संध्या 7 बजे चौपाल कार्यक्रम में आज किसान भाई सुनेंगे जानकारी, मूंगफली की फसल में कीट नियंत्रण, प्रकाश पास और फेरोमोन ट्रैप से कीट नियंत्रण, मधुमक्खी पालन और उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा आज आप सुनेंगे एक वार्ता, बीजोपचार के लाभ। वार्ताकार होंगे राजेश गोदारा। 7:45 पर चंद फिल्मी गीत आपको सुनवाएंगे। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुनिएगा एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम फिल्म की जानकारी और गीत सुनवाए जाएंगे।

स्पोर्ट्स कैन, ये कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। समाचार संध्या का वक्त रहेगा रात्रि 8:45। रात्रि 9:15 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे गजलें।

रात्रि 9:30 पर हमारा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात 10 बजे राजस्थान दर्शन कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 10:30 पर। रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार अनुप्रसारित होंगे।

श्रोताओं, हमारी सभा का समापन होता है रात्रि 11:10 पर। कल प्रातः 5:50 पर हमारी सभा आरंभ होगी, जिसमें वंदे मातरम के साथ प्रारंभिक उद्घोषणा होती है 5:52 पर। वंदना कार्यक्रम आप सुना करते हैं प्रातः 6:10 पर। 6:45 पर कार्यक्रम सुनिएगा चिंतन। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम, उनका विवरण और प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

0: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुने कार्यक्रम सिराय की।
1: झोक माहिदी

लभ्या। मिस्टर ओब्राइन ने बहु मेहनत करके मुल्तान ते उंदे आस पास आले इलाके विच बोली वेंदी जबान दे हजारां लफ्जां को इकट्ठा कीता हाई ते हर लफ्ज़ दी तशरीह भी कीती हास। मिस्टर जे विल्सन ने पंडित हरे कृष्ण कौल दे जरिए मिस्टर ओम ब्रायन दी 30 साल पहलू इकट्ठी कीती ऊं लुगत को दूजी बार तरतीब दिवाई। पंडित हरे कृष्ण कौल आप भी मुजफ्फरगढ़ जिले विच कई साल सैटलमेंट कमिश्नर रहा हाई। मिस्टर जे विल्सन जिमें वह आखेंदे आप भी मुल्तान ते मुजफ्फरगढ़ विच फिर के लोगों ने मुँह चो बुलेंदे लफ्जों को इकट्ठा किया ते इवें वत ए किताब बनी ते सन 1903 विच इकू ओब्रायन दी मुल्तानी ग्लोसरी दे नां तले लाहौरों अंग्रेजी अखरां विच छुपाया गया। मिस्टर ओब्रायन लिखेंदा है जो जेड़े हालात विच ए अल्फाज इकट्ठे किए गए हैं वो इवें सन 1873 विच एक बी अंग्रेज सैटलमेंट कमिश्नर लायल ने मुल्तान ते मुजफ्फरगढ़ दे सैटलमेंट अफसरां को आख्या जो उत्थों दे खेतीबाड़ी मुतलक बोले वेंदे अल्फाज को इकट्ठा करें। बस वत की हाई जो मिस्टर रो ते मिस्टर ओब्रायन दोहां ने उन्हां लफ्जों को इकट्ठा करना शुरू कर दिता जो ऊ इलाके दे लोग बुलेंदे हन ते खेतीबाड़ी मुतलक खास खास लफ्जों दा इस्तेमाल करेंदे हन। दोहां ने लफ्जों दियां फरिश्तां बनाईयां तरतीबां देवण दा सिलसिला शुरू थी गया। इंदे नाल नाल लोक गीतां ते अखाण मुहावरियां को भी इकट्ठा किया गया हाई। मुल्तान ते मुजफ्फरगढ़ दे मुहावरे तो बहु करके मिलते जुलते हैं। मुजफ्फरगढ़ ऊ वेले एक इहो जिहा मरकज़ हाई जिथा मुल्तान डेरा इस्माइल खान डेरा गाजी खान बहावलपुर जंग जे डूरू डूरू इलाकों कने जमींदार लोग जमीन दे झगड़िया दे निपटारे वास्ते आते रहते हैं। मिस्टर ओब्रायन दे कटे किते लफ्जा दे तर्जुमे ते तलफ़ुज दा कम मौलवी अब्दुल रहमान दे हवाले कर दिता गया जो आप भी मुजफ्फरगढ़ दा रहण वाला हाई। जे वेले तर्जुमा ते तशरीह तैयार थी गई तो ऊकू काजी गुलाम मुर्तजा फाजल असिस्टेंट सैटलमेंट अफसर को तरमीम वास्ते भेज दिता गया। काजी साहेब जंग जिले के जनूब अहमदपुर के जमपल हैं ते मुजफ्फरगढ़ विच उन्हां दी शादी थी हाई। बहावलपुर इन्हां दियां जमीनां हन ते मुल्तान ते मुजफ्फरगढ़ विच 30 साल सरकारी नौकरी ते रहे हन। उन्हां मसौदे को दुरुस्त करन वेले जरा किती भी लिहाज ना किता ते अच्छी तरह दुरुस्त किता ते इस तरह ए वडबुली किताब तैयार थी। ए जुबान सारे जिला मुल्तान जिला मुजफ्फरगढ़ डेरा इस्माइल खान डेरा गाजी खान बन्नू लकी मरवत मियांवाली जंग दे बहुत सारे हिस्से ते बहावलपुर रियासत विच बोली वेंदी है। लेंदे विच मगरब वाले पासे सुलेमान पहाड़ियां दे सिलसिले दे यका यका शुरू थियण नाल उत्थां बलोची जुबान बोलीवण करके सरायकी जुबान दा इलाका यका यक कट वेंदा है। पर ए दसना बहु औखा है जो ए जुबान शुरू कित्थों थींदी है क्यों जो शुमाल विच पता ही नहीं लगता जो कें झां कणे पंजाबी विच तब्दील थी वेंदी है। जनूब विच वेंदे वेंदे सिंधी जुबान ईं दी झां घिन घिंदी है। मशरक आले पासे हिंदी आले राजस्थानी विच ए जुबान भी रल वेंदी है। मुल्तानी या जेको हुण सरायकी आंदे हन ओब्रायन दे मुताबक संस्कृत आंगे है बिल्कुल संस्कृत आंगे। सरायकी विच पंजाबी ते सिंधी दे बहुत सारे अल्फाज मिलदे हन पर इहदा आपणा लफ्जों का भंडार भी बहु वसी है। ई जुबान दे फायले यानी क्रिया दी गरदान रूप साधना पंजाबी ते सिंधी दोहे कड़े बहु करके वक्री किस्म दी है। कदा कदाई पंजाबी नाल ते कदा कदाई सिंधी नाल ए गरदाना मेल भी खा गिंदे हन। ओब्रायन कहिंदा है जो हालते इसम फाइली मफौली वाले जेनेटिक केस यानी संबंध कारक ओह पंजाबी वांगे दा दी दे इस्तेमाल थींदे हन। सरायकी विच

0: लेटिव यानी अपादान या अफउल अलिया सिंधी वांगे ऊ या कणु दा इस्तेमाल थींदा है। दूजे पासे डेटिव केस यानी संप्रदान कारक इच क्रिया यानी वर्ब दे अखीर इच कू लाया वेंदा है, जेड़ा सिंधी दे खे ते पंजाबी दे नू कड़े बिल्कुल वखरा है। ओबराइन दिसेंदा है जो सराइकी दी सब कने वड़ी खासियत ए है जो ई जबान विच प्रोनाउन यानी इसमें जमीर या प्रणाव दे इस्तेमाल करन दी बजाए इयां जे हरफ ते अलामता इन जेरे लफ्ज़ दे अखीर ते लगदे न। सराइकी को समझण वास्ते सब कने अहम ते मुश्किल काम इन्हां दे सफिक्स यानी पिछेतर दे इस्तेमाल ला जाना है, जेड़े सारे नाउन यानी इसम वर्ब यानी क्रियावां ते एडवर्ब यानी पड़नावां नाल लाए वेंदे न, जिवें के खादम खादई खादस, डिठम डिठई डिठस, लायम लायई लायस, मारियम मारियई मारियस। अगो सुनो, मरोड़ हिम मरोड़ हई मरोड़ हिस, मरोड़ हिसे मरोड़ हिबे मरोड़ हिने। सराइकी जबान भी संस्कृत वाली कार एहो जही खूबी है जो कई जावां ते बईयां जबाना दे त्रे चार लफ्ज़ां दे मुकाबले ई जबान विच इक्को लफज नाल कम थी वेंदा है ते बोलण वेले भी मिठी सुरीली आवाज़ मुँह निकलदी है। मिसाल दे तौर ते अगर ए आखणा पवे जो ए मुमकिन है जो मेडो भी होवे, सत लफ्ज़ां वाले ई फिक्रे को सराइकी विच इवें बोलेसूं, होसम या दूजे वास्ते खेसूं होसस वगैरह वगैरह। डिठा हिवे किवें सुरीली खुश आवाज़ संगीत ले ते तरनम भरे जमान हिने सराइकी।
1: ए हां जनाब बहादुर सिंह, जिन्हां कणे तुसां सराइकी बारे खोज भरिया हिक मकाला सुनिया। प्रोग्राम दे अखीर सुणवेंदे पयां भारद्वाज दी आवाज़ विच बेदिल दा कलाम।

होवे से हलकाऊं कोलो, एहसान न कहिंदा चा बाबा, कर कम न कोई तू ए जा, कोई कढ़े ठड़े सा बाबा।

भी साढ़े नवंजे, घर तैदा भी साढ़े नवंजे, बेघर लंबी लामी ना, रस्ता ते मिल वैसा तैकू, रस्ता ते मिल वैसा तैकू, मुश्किल विच घबरावी ना, अपना पटका देख संभाली, अपना पटका देख संभाली, दूजे दी पत लावी ना, कन ला के हर एक दी सुन, कहिंदी गाल वजावी ना, कहिंदी गाल वजावी ना। एक कथा पेशे, खोल के क्या क्या दसा हाल, ए बीबा ही मुकदी गाल, कहिंदे नाल ना गुजरे इवें, जिवें गुजरी साढ़े नाल, कहिंदे नाल ना गुजरे इवें, जिवें गुजरी साढ़े नाल। एक बिया कथा, हथ आवे कहिंदे क्यों दाढ़ी, हथ आवे कहिंदे क्यों दाढ़ी, रोटी जे होवे इज्जत दी, हुण तक ते कज्जा ही साकू, अगों भी रखी पत साडी, अगों भी रखी पत साडी। हुण एक गजल हाजिर है, झूठा क्या ते ताता थई, झूठा क्या ते ताता थई, सच बोलिया ते विपता पई, प्रेम

0: ਨਾਮ ਰਾਧਾ ਕਿਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिराय की आकाशवाणी का। ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को कल रवाना करेंगे। 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव पर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को 20 जुलाई तक चुनाव कार्यक्रम अदालत में पेश करने को कहा। प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े विषयों पर जयपुर में पहली बार विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस आयोजित। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की कमजोर परिस्थितियां अगले 3-4 दिनों तक बनी रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी की कल से शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से इसे रवाना करेंगे। ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल संचालित होगी। इस तकनीक में हाइड्रोजन को बिजली में बदला जाता है। इसके संचालन में कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई ये रेलगाड़ी भारत की उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग क्षमताओं को दर्शाती है। इस रेलगाड़ी के शुरू होने से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। इन देशों में जर्मनी

0: जापान, चीन और अमेरिका शामिल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल ही पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इनका आधुनिकीकरण किया गया है। इसमें प्रदेश के 8 स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर शामिल है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। जोधपुर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इसे हेरिटेज लुक के साथ पुनर्विकसित किया गया है।
1: ये स्टेशन के अंदर मॉडर्न फैसिलिटी अच्छी खासी बहुत अवेलेबल है। इसके अंदर हमारा एयर कॉन्ट्रोल्स है, उसकी कुछ चौड़ाई लगभग 36 मीटर है। इसके अलावा रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री की भी सुविधा है। रिटायरिंग रूम में 7 रूम्स हमारे अवेलेबल हैं और डॉर्मेट्री में 16 बेड्स हैं। तो ये फैसिलिटी जो यात्री हैं, खास करके जो विंटर सीजन में जो टूरिस्ट आएंगे, तो उन वो ये जो फैसिलिटी है उसका फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक एसी वेटिंग हॉल भी है, डिपार्चर हॉल से वो हैलिंग, और स्टेशन के ऊपर एंड टू एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म सेंटर की सुविधा है। 3 प्लेटफॉर्म है, तो जब भी ये बारिश के मौसम में लोगों को इस चीज की सुविधा मिलेगी।
0: राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार से शेड्यूल मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने आज हाईकोर्ट में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की तारीख बताने के निर्देश दिए। साथ ही आरक्षण लॉटरी का ब्यौरा और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सौंपने की तारीख बताने को कहा है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पहले 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, किंतु ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी का हवाला देते हुए सरकार की ओर से चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने मीडिया को बताया कि मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
2: डिपार्टमेंट्स के, लोकल बॉडीज के हैं, पंचायत के हैं, उन्हें निर्देश दिया है कि वो ये बताएं कि लॉटरी की डेट क्या रहेगी रिजर्वेशन के लिए, और थर्ड जो है इलेक्शन कमिश्नर को, इनको स्टेट अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन दिया है कि आप इलेक्शन की डेट बताएंगे। इसलिए 20 तारीख को मैटर की दोबारा सुनवाई होगी। 20 तारीख को ये तीनों डेट्स बताने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिए।
0: पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार पंचायत चुनावों को समय पर कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास की जो काम है, उसमें पंचायतों के चुनाव समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज हमारे जिस तरह से कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, उसके जो निर्देश है उसका पालन भी करेंगे और जल्दी उसका समाधान सरकार पूरी तरह से तैयार भी है।
0: राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने चुनाव की शुरुआती तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची निर्माण, मतदान केंद्रों का चयन, रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति और अन्य व्यवस्थाएं करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है। अदालत का कहना है कि इससे विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए, ताकि छात्र इसे आसानी से अपना सके। जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने केंद्र सरकार से नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू नहीं करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध और असाध्य रोग से पीड़ित कैदियों की जल्द या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए समान तंत्र सुनिश्चित करने के लिए नीति को 3 महीने में अधिसूचित करने का आदेश दिया है। देश में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए चलाई जा रही उड़ान योजना की अवधि 10 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। सरकार ने अगले 10 वर्षों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा है। ये जानकारी नागर विमानन मंत्री केंजरापू राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत संचालित होने वाली एयरलाइंस को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे

0: एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। जयपुर में पहली बार आज विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें सुरक्षित और वैध प्रवासन को बढ़ावा देने, विदेश भेजने वाले फर्जी एजेंटों से नागरिकों को बचाने, प्रवासियों के कल्याण, कौशल विकास, पर्यटन और निवेश पर चर्चा की गई। प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करने और वैश्विक स्तर पर राजस्थान की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में ये पहल की गई। विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती रंगनाथन ने बताया कि इस दौरान प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े विषयों पर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।
1: इसके बेसिस पे बहुत फायदा होगा राजस्थान के वासियों को, विदेश में अपॉर्चुनिटीज के लिए भी और जो भी उनको

0: स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें सुरक्षित और वैध प्रवासन को बढ़ावा देने, विदेश भेजने वाले फर्जी एजेंटों से नागरिकों को बचाने, प्रवासियों के कल्याण, कौशल विकास, पर्यटन और निवेश पर चर्चा की गई। प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करने और वैश्विक स्तर पर राजस्थान की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में ये पहल की गई। विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती रंगनाथन ने बताया कि इस दौरान प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े विषयों पर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।
1: इसके बेसिस पे बहुत फायदा होगा राजस्थान के वासियों को, विदेश में अपॉर्चुनिटीज के लिए भी और जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं उनके सुझाव के।
0: जयपुर के होम्योपैथी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने समारोह में 760 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। बिड़ला सभागार में हुए इस कार्यक्रम में चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट काम करने वाली प्रतिभाओं को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री बागड़े ने कहा कि भारत में प्राचीन काल से ही चिकित्सा से जुड़ी ज्ञान परंपरा रही है। उन्होंने होम्योपैथी को कारगर चिकित्सा पद्धति बताते हुए इसे अनुसंधान के आदर्श के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री जाधव ने इस मौके पर कहा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को दुनिया भर में अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है।
2: देश में भी आयुष शिक्षा का विस्तार हुआ है, आयुष चिकित्सा का ढांचा मजबूत हुआ है, अनुसंधान को नई गति मिली है और औषधियों के गुणवत्ता मानक भी सुदृढ़ हुए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित हुए हैं तथा वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। वे आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों की मेहनत से कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने ICAR के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वैज्ञानिकों को किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल 386 नई फसल किस्मों और 117 बागवानी किस्मों को विकसित किया गया है।
3: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: राज्य में चल रहे मॉनसून की कमजोर परिस्थितियां अधिकतर हिस्सों में अगले 3-4 दिन बनी रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। मौसम विभाग ने कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं बरसात के आसार जताए हैं। आज ज्यादातर जगह गर्मी और उमस का असर रहा, कहीं कहीं बादलों की आवाजाही देखी गई। वहीं 12 में करीब 1.25 घंटा पानी बरसा। इस बीच जल संसाधन विभाग के अनुसार जुलाई महीने में सुस्त मॉनसून के कारण बांधों के पानी की आवक में कमी आई है। प्रदेश के कुल 693 छोटे बड़े बांधों में से 282 खाली हैं, जबकि 404 बांध आंशिक रूप से भरे हैं। इनका जलस्तर भी बीते कुछ दिनों में घटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को कल रवाना करेंगे। 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव पर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को 20 जुलाई तक चुनाव कार्यक्रम अदालत में पेश करने को कहा। प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े विषयों पर जयपुर में पहली बार विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस आयोजित। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की कमजोर परिस्थितियां अगले 3-4 दिनों तक बनी रहने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। प्रतापगढ़ जिले में मातृ और शिशु स्वास्थ्य को मजबूत करने के उद्देश्य से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कल से 5 दिन के विशेष अभियान की शुरुआत की है। अभियान के दौरान जिले की सभी गर्भवती महिलाओं का 100% ANC पंजीकरण, 4 अनिवार्य प्रसव पूर्व जांचें, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान, एनीमिया की जांच तथा नियमित फॉलो अप किया जा रहा है। साथ ही जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, 104 स्वास्थ्य परामर्श सेवा और 108 एम्बुलेंस सेवा की जानकारी भी आम जन तक पहुंचाई जा रही है। राजस्थान समान नागरिक संहिता यानी UCC के प्रारूप को लेकर प्रतापगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन सुनवाई रखी गई। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, पुलिस अधीक्षक बी आदित्य तथा जिला स्तरीय समिति के सदस्यों की मौजूदगी में जन प्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विधिवेत्ताओं, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और छात्र छात्राओं ने अपने सुझाव रखे। समिति के सदस्य बसंत सिंह छाबा ने कहा कि प्राप्त सुझावों का गहन विश्लेषण कर समावेशी और पारदर्शी प्रारूप तैयार किया जाएगा। जूनोसिस जागरूकता सप्ताह के तहत जिले के राजकीय GNM प्रशिक्षण महाविद्यालय में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा पशुपालन विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में रेबीज, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, लैप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टाइफस जैसे पशुजन्य रोगों से बचाव के उपाय बताए गए। विशेषज्ञों ने पशुओं के नियमित टीकाकरण, स्वच्छता और समय पर चिकित्सकीय परामर्श लेने पर जोर देते हुए आमजन से सतर्क रहने की अपील की। पिछले दिनों जिला प्रभारी सचिव और संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने नगर परिषद में आयोजित शहरी सेवा शिविर तथा सुहागपुर पंचायत समिति के केसरपुरा गांव में लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, PM स्वनिधि और PM सूर्य घर योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र लोगों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भारत सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में सहकार सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत आयोजित कृषक सम्मान दिवस में जिले के प्रगतिशील किसानों, पैक्स अध्यक्षों और समिति व्यवस्थापकों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर ने किसानों से ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस, जैविक खेती, पुष्प उत्पादन और सौर ऊर्जा जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार जिले में लक्ष्मण रेखा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ANTF चौकी प्रतापगढ़ द्वारा नशा मुक्ति और साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। करीब 475 विद्यार्थियों और नागरिकों ने नशा मुक्त जीवन का संकल्प लिया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत जिला कलेक्टर ने जिले में लॉटरी प्रक्रिया संपन्न करवाई। योजना के माध्यम से 75 वरिष्ठ नागरिकों का हवाई यात्रा और 616 वरिष्ठ नागरिकों का रेल यात्रा के लिए चयन किया गया। जिले की सुहागपुरा तहसील के पंडावा गांव में नए 33/11 KV विद्युत ग्रिड सब स्टेशन का शुभारंभ किया गया। इसके शुरू होने से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग की समस्या से राहत मिलेगी तथा प्रतापगढ़ विद्युत वृत्त में ऐसे सब स्टेशनों की संख्या बढ़कर अब 95 हो गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 16 जून से स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से 5 साल से कम आयु के बच्चों में डायरिया, दस्त की रोकथाम, समय पर उपचार और जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार थीम के साथ आमजन को ORS, जिंक, स्वच्छ पेयजल और हाथों की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन

0: चलन वाली देश री पहली रेलगाड़ी ने काल रवाना करेला और बेहतर बनाई जा 75 रेलवे स्टेशन ने वर्चुअल तरीका जनता ने सौंपन रो कार्यक्रम। राजस्थान हाई कोर्ट, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव रो कार्यक्रम 20 जुलाई ताई अदालत में पेश करण शुरू कहो। प्रवासियों री हिफाजत और भलाऊ जुड़िया मुद्दा माथे जयपुर में पहली दफा विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस राखी ची। और राज्य में घनखर ठोड़ा चौमासारी बिरखा आवता 3-4 दिन ताई मंदी रहवन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में हाइड्रोजन चालन वाली पहली रेलगाड़ी ने काल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन रवाना करेला। आ गाड़ी जींद और सोनीपत बीच चलेला। ई गाड़ी ने हाइड्रोजन गैस ने बिजली में बदलन वाली देशी तकनीक हाइड्रोजन फ्यूल सेल चलाई चावेला। ई तकनीक बिजली बनावन रे दौरान कार्बन बिल्कुल पैदा नहीं वह है। आ रेलगाड़ी चलने पाछे भारत, जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका सागे हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलावन वाला देशों री जमात में शामिल वह चावेला। प्रधानमंत्री रो काल ही पंजाब राज जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन देश भर रा और बेहतर बनाई जा 75 रेलवे स्टेशन रो वर्चुअल तरीका उद्घाटन करन रो कार्यक्रम है। आमाय राजरा, जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर ही शामिल है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन माथे रखा जावन वाला जलसा में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावती मौजूद रहवेला। जोधपुर रा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव बतायो कि करीब 140 करोड़ रुपया रा खर्च जैसलमेर स्टेशन माथे मुसाफिरा सारू नुआ सुविधा मुहैया कराई चिया है।
1: ये स्टेशन के अंदर मॉडर्न फैसिलिटी अच्छी खासी बहुत अवेलेबल है। इसके अंदर हमारा एयर कॉन्फ्रेंस है, उसकी कुछ चौड़ाई लगभग 36 मीटर है। इसके अलावा रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री की भी सुविधा है। रिटायरिंग रूम में 7 रूम हमारे अवेलेबल है और डॉर्मेट्री में 16 बेड्स हैं। तो ये फैसिलिटी जो यात्री हैं, खास करके जो विंटर सीजन में जो टूरिस्ट आएंगे वो ये जो फैसिलिटी है उसका फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक एसी वेटिंग हॉल भी है, डिपार्चर हॉल से वो है लिंक और स्टेशन के ऊपर एंड टू एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म शेल्टर की सुविधा है। 3 प्लेटफॉर्म है तो जब भी ये बारिश के मौसम में लोगों को इस चीज की सुविधा मिलेगी।
0: राजस्थान हाई कोर्ट, राज्य सरकार, पंचायत और निकाय चुनाव रो कार्यक्रम पेश करन रा हुकम तीना है। मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा री खंडपीठ आज सुनवाई रे दौरान राज्य सरकार और प्रदेश रा निर्वाचन आयोग ने चुनाव करावन री तारीख बतावन रा हुकम दीना। अदालत आरक्षण, लॉटरी रो ब्यूरो और ओबीसी आयोग री रपट सौंपन री तारीख बतावन बाबती कहो। ध्यानजोग है कि हाई कोर्ट पहली 31 जुलाई ताई चुनाव करावन रा हुकम दीना हा, पण ओबीसी आयोग री रपट माय मोड़ा रो हवालो देता थका सरकार री ओरू चुनाव करावन रो काम शुरू नी करी जियो। वकील प्रेमचंद देवंदा खबरनवीसा ने बतायो कि मामला री आगली सुनवाई 20 जुलाई ने फैला।
2: डिपार्टमेंट्स के, लोकल बॉडीज के हैं, पंचायत के हैं, उन्हें निर्देश दिया है कि वो ये बताएं कि लॉटरी की डेट क्या रहेगी रिजर्वेशन के लिए, और थर्ड जो है इलेक्शन कमिश्नर को, इनको स्टेट अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन दिया है कि आप इलेक्शन की डेट बताएंगे। इसलिए 20 तारीख को मैटर की दोबारा सुनवाई होगी। 20 तारीख को ये तीनों डेट्स बताने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिए।
0: दूजगानी पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी जोधपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का कहो कि सरकार पंचायत चुनाव टेम सरकारावनो तय किन्नो है।
3: ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास की जो काम है उसमें पंचायतों के चुनाव समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज हमारे जिस तरह से कोर्ट का हम सम्मान करते हैं उसके जो निर्देश है उसका पालन भी करेंगे और जल्दी उसका समाधान सरकार पूरी तरह से तैयार भी है।
0: इबीच राज्य निर्वाचन आयोग रा मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा चुनाव री शुरुआती तैयारियां सारू जरूरी दिशा निर्देश जारी कीना है। वह जिला निर्वाचन अधिकारियां वोटर लिस्टा बनावण, मतदान केंद्रां रो चयन, रिटर्निंग अहलकारां री नियुक्ति और दूजी व्यवस्थावां करण सारू कहो। सुप्रीम कोर्ट सगला राज्यां और केंद्र रा राज वाला प्रदेशां ने बुजुर्ग और घणा मंदा कै

0: ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੇ ਬਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਗੀ ਰਿਹਾਈ ਰਾ ਬਾਰਾ ਮਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵਣ ਔਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਮਾਏ ਐੜਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਏ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਾਰੂ ਏਕ ਸਰੀਖੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵਣ ਸਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨ ਤੀਨ ਮਹੀਨਾ ਮਾਏ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਰੋ ਹੁਕਮ ਈ ਦਿਨੋ ਦੇਸ਼ ਰਾ ਨਿਆਰਾ ਨਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਰੋ ਸੂਬਿਤੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਣ ਸਾਰੂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਰੀ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਵਧਾ ਦੇਰੀ ਚੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਵਤਾ 10 ਸਾਲ ਮਾਏ 100 ਨਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਔਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਨ ਰੀ 200 ਠੋਣਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਨੋ ਹੈ ਨਾਗਰ ਵਿਮਾਨਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਜਰਾਪੂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਏ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਾਰਾ ਮਾਏ ਰਾਖੀ ਜੀ ਕਾਰਯਸ਼ਾਲਾ ਪਾਛੇ ਖਬਰ ਨਵੀਂ ਸਾਗੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤਾ ਥਕਾ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਨੀ ਵੇ ਬਤਾਇਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤਹਿਤ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਵਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਵਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ 3 ਨੂੰ ਵਧਾਰ 5 ਸਾਲ ਕਰਨ ਰੋ ਫੈਸਲੋ ਕੀਨੋ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਆਪ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜੈਪੁਰ ਅਜਮੇਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋ जयपुर में आज पहली दफा विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस राखी जी इन माए सुरक्षित और वैध प्रवासन न बधावो देवन परदेश भेजन वाला फर्जी एजेंटाओं जनता न बचावन प्रवासियों रा भला कौशल विकास सैर सपाटा और निवेश रबारा माए चर्चा करी जी विदेश मंत्रालय माए सचिव श्री प्रिया रंगनाथन और राज्य रा मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ही ई सम्मेलन माए शामिल थिया खबर नवी सागे बातचीत करता थका रंगनाथन कहो कि कॉन्फ्रेंस माए प्रवासियों री हिफाजत और कल्याण जुड़िया मुद्दा मत जाग जगावन री कोशिश करी जी
1: इसके बेसिस पे बहुत फायदा होगा राजस्थान के वासियों को विदेश में अपॉर्चुनिटीज के लिए भी और जो भी उनको प्रॉब्लम्स है उनके सुझाव के
0: जयपुर रा होम्योपैथी विश्वविद्यालय रो दीक्षांत समारोह आज राखी चियो इन माए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव 760 विद्यार्थियों ने उपाधियां देर नवाजा कार्यक्रम माए चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा रा हलका माए बेहतरीन काम करण वाला रो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देर मान करी चियो जलसा माए विश्वविद्यालयों रा कुलाधिपति कहो कि भारत माए गुजरिया जमाना हुई इलाज जुड़ी ज्ञान परंपरा रही है वे होम्योपैथी ने इलाज रो कारगर तरीको बताता थका अनुसंधान रा आदर्श सागे आगे बधावन री अरज कीनी कार्यक्रम माए केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव कहो कि होम्योपैथी ने इलाज रा तरीका रा तौर आखी दुनिया माए अपनाई ची है वह नौजवानों बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया करावण माए योगदान देवण री अरज कीनी जाधव कहो कि लाडला कुछ वर्षा माए देश माए जनता री स्वास्थ्य सेवाओं ताई पहुंच तेजी बधी है
2: देश में भी आयु शिक्षा का विस्तार हुआ है आयु चिकित्सा का ढांचा मजबूत हुआ है अनुसंधान को नई गति मिली है और औषधियों के गुणवत्ता मानक भी सुदृढ़ हुए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित हुए हैं तथा वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एकीकृत कृषि पद्धतियां ने बधावो देवण माथे जोर दिनो है वे आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR रा स्थापना दिवस समारोह में बोल रहा है चौहान कहो कि किसान और वैज्ञानिकों की मेहनतों खेतीबाड़ी रा हलका माए चोखा नतीजा मिल रहा है केंद्रीय मंत्री ICAR री कोशिशां री सराहना करता थका कहो कि वैज्ञानिकों ने किसानों की जरूरत रे मुताबिक अनुसंधान करनो चाहिए वे कहो कि देश 376 करोड़ टन खाद्यान्न री उपज रो रिकॉर्ड बनायो है श्री चौहान बतायो कि लारला साल न्यारी न्यारी साखा री 386 नवी किस्मा विकसित करी ची
3: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है 29 बायोफोर्टिफाइड है ये विकसित की है बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है आज मैं गर्व से कहता हूँ ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है
0: अरब मौसम राज्य में आवता 3-4 दिन ताई बिरखा रो दौर मंदो रहवण रा आसार है हालांकि प्रदेश रा उगनी हल्का

0: हवाएं कठे-कठे, बरसात फेवन री संभावना है। मौसम विभाग कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में कठे-कठे में बरसबारा आसार जताया है। इन बीचे आज घनखर थोड़ा गर्मी और उमस रही। दूजी कानी 12 माई करीब पौन घंटा ताई पानी बरसियो। कम बिरखा रे कारण बंधा माए पानी री आवा की थोड़ी कम भी है। राज्य रा 693 छोटा मोटा बंधा मायू 282 रीता है, जदका 404 बंधा थोड़ा घना भरिया है, जमाई लारला दिना पानी रो लेवल उतरियो है। करौली जिला माए पांचना बंधाओं पानी री निकासी रा सिस्टम री आज तकनीकी जांच करी ची। इन दौरान कमांड हलकारी नहरा माए पानी छोड़न वाला दरूजा री जांच करी जी और गैर कमांड हलका सारू बनाई जी लिफ्ट प्रणाली रोई कामयाबी सागे ट्रायल करी जियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला ई कार्यक्रम री 136वीं कड़ी फैला। इंसारू आप ई सुझाव मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 24 जुलाई ताई भेज सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फेरू सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन उचालन वाली देश की पहली रेलगाड़ी ने काल रवाना करेला और बेहतर बनाई जा 75 रेलवे स्टेशन ने वर्चुअल तरीका जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम। राजस्थान हाई कोर्ट पंचायत और निकाय चुनाव रे बारा माए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जुलाई ताई पंचायत चुनाव रो कार्यक्रम अदालत माए पेश करण सारू कहो। प्रवासियों की हिफाजत और भलाऊं जुड़िया मुद्दा माथे जयपुर में पहली दफा विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस रखी जी और राज्य में घनखर थोड़ा चौमासारी बिरखा आवता 3-4 दिन ताई मंदी रहवन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। संध्या के 7 बजे हैं, ग्रामीण परिवार सुने अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

का दीमक को प्रकोप दिखाई देने पर 2.4 लीटर क्लोरोपाइरीफास 20 cc प्रति हेक्टेयर सिंचाई के साग पानी सका पानी दे देनी चाहिए। बात करें सफ़ेद लटकी तो जुताई गए पहले सप्ताह यानी मानसून शुरू होने गए 3-4 सप्ताह पर खड़ी फसल में किए गए 2.4 लीटर क्लोरोपाइरीफास 20 cc प्रति हेक्टेयर सिंचाई पानी का सागा पाना किया किसान भाइयों प्रयोग की है व करनी चाहिए। बात करें मोयला या चेपा की तो इन ऊपर कोप दिखाई देता ही आपा किए कि 1 लीटर मिथाइल डेमोटेन 25 cc या डाइमिथ्यूएट 30 cc या फिर 1.2 लीटर मेलाथियान 50 cc प्रति हेक्टेयर की दरों पर छिड़काव जो है वो किसान भाइयों कर देना चाहिए। कातरा कीट की रोकथाम खातर 24 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण प्रति हेक्टेयर अपन किया गया बुरकाव जो है वो किसान भाइयों कर देना चाहिए। मकड़ी की रोकथाम खातर इंगो ज़्यादा प्रकोप होने की दशा में गंधक चूर्ण स्वरों लेके 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक अपन बुरकाव जो है वो कर देना चाहिए। टिक्का रोग की रोकथाम की जो बात करें तो फसल की 40 दिन की अवस्था पर पत्तियां पर मटमेला या गहरा भूरा रंग का धब्बा पड़ जाए ऐसी स्थिति में बावस्टिन गो 0.1% घोल यानी 1 ग्राम प्रति लीटर पानी या फिर मैनकोजेब 0.2% घोल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी को छिड़काव अपन कर देना चाहिए। बात करा मूँगफली की फसल में लागन वाला कलर रोट और जड़ गलन रोग की तो बुआई गए पहला क्या 4 किलोग्राम टाइक्रोडर्मा ने 200 किलोग्राम गोबर की खाद में रला के छाया में सुखा देना चाहिए और बुआई तुरंत पूर्ण प्रति हेक्टेयर की दरों अपन खेत में रला देना चाहिए। साथ ही 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दरों के बीजोपचार भी करना चाहिए जो कि किसान भाई लारा कर ही चुके हैं। और किसान भाइयों आपने किया कि जैविक कीट नियंत्रण भी जो है वो भी करना चाहिए रासायनिक दवा के साथ साथ जैविक उपाय भी अपनाना अपनी फसल खातर लाभदायक रहे। इनमें सारू अच्छी बात आ रहा है कि आपने नीम को उपयोग करना चाहिए नीम के तेल को छिड़काव करना चाहिए नीम की गिरी को अर्क नीम आधारित जैव कीटनाशी अपने प्रयोग करनी चाहिए यह लाभदायक जीव कीटा ने नियंत्रण करे और पर्यावरण ने क्या सुरक्षित बनावे और केवल अनुशंसित कीटनाशकों को अपन प्रयोग करना चाहिए सही मात्रा में किए कि अपन कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए तेज हवा में अपने छिड़काव नहीं करना चाहिए और सागे किए कि छिड़काव करते टाइम सुरक्षात्मक कपड़ा मास्क दस्ताना जगह है वह पहनना चाहिए और खाली डिब्बा को सुरक्षित निस्तांतरण अपन कर देना चाहिए टावर के पहुँचों वह दूर रहना चाहिए और कटाइयों पहला किया गया जरूरी प्रतीक्षा अवधि को अपने पालन जो है वो किसान भाइयों कर लेना चाहिए। और किसान भाइयों खातर विशेष सुझाव जगह है वह यह है कि समय पर बुआई अपन करनी चाहिए संतुलित उर्वरक देना चाहिए और पानी निकासी व्यवस्था अपन पहले ही कर लेनी चाहिए खरपतवारों को नियंत्रण रखना चाहिए फेरोमोन और लाइट ट्रैप अपन जरूर लगाना चाहिए। सागी किया गया जगह मित्र कीट है वह अपने संरक्षण करना चाहिए केवल आर्थिक क्षति स्तर पर ही रासायनिक नियंत्रण अपने करना चाहिए और कृषि वैज्ञानिक जगह है बाकी टाइम और टाइम पर सलाह अपने जरूर ले लेनी चाहिए। तो किसान भाइयों मूँगफली की अच्छी उपज प्राप्त करने खातर किया कि कीटा ने टाइम पर बंगी पिछाण और समेकित कीट प्रबंधन अपनाना अपने बहुत ही जरूरी है। खेत की नियमित निगरानी जैविक उपाय ने प्राथमिकता संतुलित पोषण और जरूरी होने पर ही अनुशंसित कीटनाशकों का प्रयोग करके आप अपनी फसल को उत्पादन बढ़ा सका और लागत भी किए कम जगी है कर सका। तो किसान भाइयों अब टाइम है एक भजन सुनने को और बिंग बात थाना सुनाशियाँ एक वार्ता बीजोपचार के लाभ और आज का हमारा वार्ताकार है राजेश गोदारा पर अब टाइम है भजन सुनने को तो थाना सुनावा सुहास कटारिया को गाइडो ओ भजन।

0: तो भाइयों आप सुनो भजन, और अब टाइम है एक वार्ता सुन गो। बीजोपचार के लाभ, वार्ताकार हैं राजेश गोदारा। तो थाना सुनावा आ वार्ता।
1: किसान भाइयों, अपा उत्पादन लेने के लिए हर संभव प्रयास करा। भी हर संभव प्रयास में पहलो चरण है बीज। अगर अच्छो बीज वगो तो उत्पादन भी निश्चित रूप अपन अच्छो मिलेगो। बीज की पहचान के वगी अपा बीज किया बढ़िया ले सका। किसान भाइयों, सबू पहला तो अपन बीज बिजाई पहला चिन्हित करना है कि आपनी भूमि जिकी है बा किसे बीज ने माने, यानी कि भी सिंचाई की कितनी आवश्यकता होगी। आपा जी को बीज लेने लाग रहा वो रोग मुक्त है, और इन अलावा हाइब्रिड बीज लेने लाग रहा या प्रमाणित बीज लेने लाग रहा, आपा जी को भी बीज लेने लाग रहा बिंगी किसी श्रेणी है बिंगी अपन पहचान होनी चाहिए। अच्छो बीज लेने के लिए अपन सबसे पहला विश्वसनीय जगह बीज लेना चाहिए। बीज के सागे सागे भी बीज की जिकी गुणवत्ता है बस जांच परख के बीज लेना चाहिए, बिंगो पक्को बिल लेना चाहिए। जी हाँ, आप बात करा प्रमाणित बीज की, तो प्रमाणित बीज का सोर्स वो कठो निकल रो है, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी किसी अनुसंधान केंद्र वो बीज निकल रो है। बीज की क्या खासियत है, जी आप फसल की बात करा तो कोई पीलापन अवरोधी है या कोई अन्य बीमारियां प्रति अवरोधी है, ज्यादा उत्पादन देने वाली है, पर सारी चीजों को अपन पता होना चाहिए। तो किसान भाइयों, अच्छे बीज को सिलेक्शन तो आज के समय हम लगभग किसान भाई करने लाग रहे हैं, आपको घर को अच्छा बीज भी तैयार करने लाग रहे हैं, पर आज को एक महत्वपूर्ण विषय पर आप बात करांगा, वो विषय है बीज को उपचार। किसान भाइयों, बीज उपचार आज के लिए बहुत ही आवश्यक है। जी आप बात करा प्लस पोलियो की एक बूंद बिना पोलियो आए पिलावे ताकि आगे भी बीमारी को सामना ना करना पड़े। बीज उपचार जिको है वो एक जन्म घुंटी की तरह काम करे, और बिया ही अच्छो बीज तैयार कर लो, अच्छो बीज उपचार कर लो, एक अच्छो उत्पादन देवे। किसान भाइयों, अब जी की खरीफ की फसलांगी बिजाई होने लाग रही है, बीमापा देखने लाग रहे हैं अधिक तापमान अधिक आद्रता इन कारण बीमारियां भी ज्यादा फैले। जी आप बात करा उखेड़ो जी का नापा बोला उकटा रोग है, जड़ गलन है काली जड़ जी का बोला, और कोलर रोट है आदि अनेक बीमारियां हैं जी की लागे। किसान भाइयों, बीज के अंदर बीमारियां दो तरीके में लागे, एक तो बीज जनित हो सके या बा बीमारी जी की बा मिट्टी के अंदर रहे, और जब आप बीज की बिजाई करा जब वो बा बीमारी जी की है लाग जाए। तो किसान भाइयों, आप दो तरीका बीज उपचार कर सका या दोनों तरीका मिक्स करके भी आप बीज उपचार कर सका। आप पहला बात करा रासायनिक प्लस जैविक बीज उपचार की, आप रासायनिक बीज उपचार और जैविक बीज उपचार करके अपनी फसल ने किया बचा सका। किसान भाइयों, थे एक नाम सुने है FIR, जिकन क्रम में बोले एफ बोला तो फंगिसाइड यानी कि कवकनाशी, जिकी कवक को लगने वाली बीमारियां बन बचाने खातर। इंसेक्टिसाइड की यदि आप बात करा तो कीटनाशी जिकी कीटा कीट नुकसान करे बीहू बचाने खातर। और यहाँ आर को मतलब है राइजोबियम या जिकन आप जीवाणु बोल दें, इन अंदर आप अगर दलहन ही फसल लेने लाग रहे हैं तो राइजोबियम है या दूसरी फसल ले तो बिंगी भी आप बात करेंगे। किसान भाइयों, सारा पहला बीज उपचार के अंदर पहलो चरण है कवकनाशी या फंगिसाइड। कवकनाशी के अंदर आप देखा थायरम है कार्बेंडिजम है, अन्य 2 ग्राम प्रति किलो सीड आप उपचारित कर सका। जी हाँ, उखेड़े की समस्या है या और आप बात करी कोलर रोट है, यदि आप बढ़िया बीज उपचार करांगा तो आ समस्या अपन बाद में कौन मिले। यदि आप बीज उपचार करांगा तो शुरू के अंदर बहुत कम लागत में बीज उपचार हो जाए, यदि बीज उपचार नहीं करे और बात समस्या आवेगी तो बहुत ज्यादा जी का रुपया भी लागेगा और आप नुकसान में भी लेवल तक जी को हो चुके होगा। यहाँ आप बात करा फंगिसाइड उपचारित करने के बाद में दूसरा तरीको है अपनो इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में कुछ रसायन का नाम है जी, फिप्रोनील है, इमिडा क्लोरोपीड है, क्लोरोपाइरीफास है। अंग आप 4 ml प्रति किलो सीड आप उपचारित कर सका कवकनाशियों करे बाद में। यही अगर आप बात करा फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड इन बाद में तीसरो जिकन आर बोल रहे राइजोबियम, यदि आप दलहनी फसल ले ला रहे जी हाँ मूंग है और है बंग लिए आप राइजोबियम ले सका, यदि खाद्यान्न फसल है तो आप एजोटोबैक्टर ले सका। यहाँ एजोस्पाइरिलम है, ये अलग अलग प्रजातियां जी की है बायो फर्टिलाइजर की जी की आवे जैव उर्वरक की आवे बन आप आर कैटेगरी में ले सका। किसान भाइयों, आजकल NPK की विभिन्न श्रेणियां आवे जिकम एजोटोबैक्टर PSB और KMB जिको है तीनों मिश्रण आवे। यही एजोस्पाइरिलम PSB KMB अलग अलग मिश्रण जिका भी अपन बाजार में मिले बाहू भी आप बीज उपचार कर सका। किसान भाइयों, एक चीज थे देखोगा यदि बीज उपचार करोगा तो निश्चित रूप ऊपर दो बीमारियों तो बचाओ वगो ही वगो, और बिना सही पोषण मिलने के कारण 8-10% जी को उगाओ वो भी ज्यादा वगो और उपज पर भी प्रभाव पड़े। वो तो है किसान भाइयों रासायनिक और जैविक बीज उपचार। यदि कोई किसान भाई जैविक बीज उपचार ही करना चाहे रसायना बचाव करना चाहे तो बिंग लिए जिको फंगिसाइड के अंदर ट्राइकोडर्मा बीज उपचारित करना चाहिए। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा के बारे में थे जानो, ट्राइकोडर्मा एक कवक नासी है जिको लाभदायक कवक है नुकसान पहुंचाने वाली कवक ने खत्म करे। ट्राइकोडर्मा यदि अपन बीज उपचारित करना है 8-10 ग्राम प्रति किलो सीड गए लगावांगा वो सीधो पाउडर फॉर्म में होने का नहीं लगे तो आप गुड़ के अंदर एक घोल तैयार करके और बीज अच्छी तरह चिपा देगा तो अच्छी तरह चिपकने के कारण जिसका ट्राइकोडर्मा है वो बीज के सागे चिपक के अंकुरण के टाइम अपन कवकाऊ बचाव रखेगा। ये ट्राइकोडर्मा उपचारित करे बाद में आप आर जी की आप बात करें राइजोबियम यानी कि जी की नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का जी का जीवाणु है बहु उपचारित कर सका। किसान भाइयों आज को बीज उपचार जी को है वो भविष्य की बहुत बड़ी बचत है। आप देखने लाग रहे हैं जी आप बात करा उखेड़ेगी जब पूरा पौधो तैयार हो गए उखड़े तो किसान भाई ने बड़ी चिंता हुआ क्योंकि वह पार्टी फसल बिंग जावे तो बिंग उपचार वही है। ये यहाँ पर देखा गया उखेड़ेगी बहुत ज्यादा समस्या हर जगह आने लाग रही है तो ट्राइकोडर्मा बिंग लिए बहुत ही अच्छो एक माध्यम है। ट्राइकोडर्मा ने आप बीज उपचार के

0: में भी काम में ले इसका और भूमि उपचार के रूप में भी आप ट्राइकोडर्मा ने काम में ले इसका। ट्राइकोडर्मा 1 किलो प्रति बीघा लियागे बिन अच्छी गोबर की खाद जिकी नमी वे बिंग अंदर मिक्स करके मिलागे तैयार कर लेगा और खेत की जुताई की टाइम अपा बिन खेत में मिलावांगा अपा लगातार 2-3 साल तक करांगा तो जो कि खेड़े की समस्या बा अपनी जड़ों खत्म हुए। यहीं ही अपा बीज उपचार के अंदर गुड़ में मिला के करांगा तो उगतो बीज को वो कहूं बच्चे को। किसान भाइयों अपा जी बात करा वो बीज उपचार को जिको तरीको बीज उपचार का बड़ा फायदा है। एक तो अपा बीज उपचार करांगा तो खेत में जितना ही बीज है सारा को समान अंकुरण होगा पौधा की संख्या उचित होगी क्योंकि अपा जितना बीज डालांगा बिम लगभग पौधा उगेगा। सामान्य बिना बीज उपचार करे उपचार करके बीजांगा तो दोनों मापा अंतर देखांगा तो 8-10% पौधा जिका ज्यादा उगेगा और जिका पौधा उगेगा फसल जिकी अब रोग और कीटा मुक्त होगी और सागे सागे बिन पोषण भी मिलेगा बिंगी पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी और लागत में भी कमी होगी। किसान भाइयों आप बात करा इम सावधानियां चूंकि रासायनिक उपचार करा तो भी रसायन काम में ले जाए तो सारा पहला तो यदि आप रसायन खरीदा तो भी गुणवत्ता देखा बिंग एक्सपायरी डेट देखा फिर ही वो रसायन खरीदो। दूसरो किसान भाइयों आप देखने लाग रहा थे खुद फील भी करो क्या मानव को स्वस्थ है बड़ो महत्वपूर्ण है। आप जितनी भी स्प्रे यानी कि रसायन खेत में छिड़का में बहुत हानिकारक रसायन हुए मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े पर आप देखने ला रहे यदि बीज उपचार करा तो आप हाथ पर कोई भी ग्लव्स कौन डाला या मुंह पर आपा कोई मास्क कौन लगावा आंख ऊपर कोई भी चश्मा कौन लगावा। आंख बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है यही ही आतंग माध्यम हो गए आपने शरीर में वो रसायन पहुंचे तो अपन पहलो बचाव रखना है कि कोई भी रसायन को एक भी कण आपने शरीर में नहीं जाना चाहिए। बिंग लिया बढ़िया हाथों पर ग्लव्स डाल गए मुंह पर मास्क लगा गए फिर ही बीज उपचार करो और बीज उपचार जठे करो बिन बिल्कुल छाया में करो। धूप में अपन बीज उपचार कौन करनो बीज उपचार करे बाद में अपन छाया में रखना है और अपन क्या करना है जिको बच्चा है बांगी पहुंचू दूर अपन में रखना है। किसान भाइयों बीज उपचार 24 घंटा 48 घंटा पहले तक ही करना चाहिए कि जितनी भी सर्टिफाइड सीड आवे बिंग अंदर थाने एक पूड़ी के अंदर थायरम है कार्बेडियम है या अदर जिका भी बाकी है बे कवकनाशी डाल के ही अपन देवे तो किसान भाई के करे भी थैली निकाल के और फेंक दे जबकि वह महत्वपूर्ण दवाई है बात आने इंग वास्ते सागे डाल के दी है जब थे बीज को उपचार करो भी बढ़िया मिला के भी उपचार कर लो तो अपन के करना है जिको बात थैली दी है अपन बिन फेंकनी कोनी है भी बढ़िया अपन जिको वो बीज को उपचार करना है। तो किसान भाइयों वो बीज उपचार की विधि है मैं दोबारा थाने बताऊं सारों पहला फंगीसाइड फिर इंसेक्टिसाइड और फिर कल्चर जिकन जैव उर्वरक या जीवाणु बोले तीनों यदि आप बीज उपचारित करांगा तो आपा निश्चित रूप में फायदो मिलेगा। आपा देखा हमने किसान भाइयों कई बार बात करा कि बीज उपचार क्यों कौन करो तो बिंगो कारण भी बतावे क्या जी टाइम कौन मिलो तो किसान भाइयों मैं थाने बताना चाहूँ अब तो बहुत ही कम समय लगे जब आपा बीज लेवा तो अपन फंगीसाइड सागे मिले अपन जी को कल्चर है वो थोड़ो ले गया है इंसेक्टिसाइड थोड़ो ले गया है अगर आपनी खेती बड़ी है तो आप इकट्ठो भी लागे रख सका बहुत ही कम समय नाम मात्र को समय अब आपनो लागे लेकिन यदि अब आप बीज उपचार नहीं करो तो वो बीज उपचार गुजी को नहीं करने को नुकसान है वो अपन आगे जाके ज्यादा वेगो अपन कई क्विंटल नुकसान है उसके तो इन खतर अपन क्या करना है बीज उपचार अवश्य करना है। यदि और भी कोई बीज उपचार संबंधित जानकारी आप कोशिश करेंगे कि इन माध्यम उधार तक और पहुंचाएंगे ताकि किसान भाई कम लागत पर अधिक उत्पादन ले सके और वो बेझिझक हो गए बीज उपचार करे और भी किसान साथियों प्रेरित करे ताकि बीज उपचार बिंग जी की फसल के अंदर नुकसान भी ना आवे और फायदो भी ज्यादा आवे। बीज उपचार किसान भाइयों दो कारण करा फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड को बीज उपचार आप इन खतर करा कि अपनी फसल में कीड़ा और बीमारी ना लगे और जिको राइजोबियम या कल्चर को जिको बीज उपचार करा वो इन खतर करा कि अपनी फसल ने पोषण मिले अपनी फसल में कीड़ा बीमारी भी कम लगे और अपनी फसल ने पोषण भी जिको है वो भरपूर मिले।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। Financially

0: एजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भाइयों आप सुनी वार्ता, बीजोपचार के लाभ, वार्ताकार हा राजेश गुदारा। और अब बात करें आप खेती बाड़ी की। तो भाइयों आधुनिक खेती में क्या है, रासायनिक कीटनाशकों को ज़्यादा उपयोग हूँ, किसान भाइयों की लागत बढ़न का सागर सागर है, पर्यावरण माटी और मानव स्वास्थ्य पर भी किया है प्रतिकूल प्रभाव जो है वो पड़े। और इसे में किया गया एकीकृत कीट प्रबंधन गैमा प्रकाश पास और फेरोमोन ट्रैप प्रभावी पर्यावरण अनुकूल और कम लागत वाला विकल्प अपने सामने उभर गया है। प्रकाश पास एक इशू उपकरण है जिसका मैं किया गया रात के टाइम जलन वाला प्रकाश स्रोत हो है और बहुत सारा जगह हानिकारक कीट है विशेषकर पतंगा प्रकाश की ओर आकर्षित होकर ट्रैप में लगड़े पानी तेल और संग्रह पात्र में गिर जाए और नष्ट हो जाए। आ तकनीक जगह है वह मुख्य रूप वहाँ कीटांग की निगरानी और नियंत्रण खातर उपयोगी है जगह रात में किए गए किसान भाइयों सक्रिय रहे। बात करें किसान भाइयों प्रकाश पास जो है वो किया काम करे, तो शाम के टाइम किया गया ट्रैप में बल्ब या LED जलाई जावे और बिंग में किया प्रकाश दे के कीट बंगी और उड़गी आने लग जाए। कीट नीचे रखेड़े पानी मिट्टी के तेल में मिलेड़े पानी और संग्रह पात्र में किए गिर जाए, यूँ खेत में किया गया कीटांग की संख्या जगी है बा किसान भाइयों कम हो जाए। अब प्रकाश पास के जगह लाभ जगह हुआ है किसान भाइयों बांगी बात करा तो रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता की है कि यूँ कम हो जाए, कम लागत में किए के ज़्यादा प्रभावी नियंत्रण रहे और कीटों की संख्या को अनुमान लगाने में अपना बड़ी सहायता मिले और पर्यावरण प्रदूषण जो है वो कम हुआ है। IPM को महत्वपूर्ण वो भाग है, इन्हें लगाने को सही तरीको वो है कि प्रति हेक्टेयर एक उले के दो प्रकाश पास पर्याप्त हो है, खेत के बीच या मेड़ पर अपना लगाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद 2-3 घंटा पानी चलाना चाहिए, नीचे साबुन मिलेड़े पानी या मट्टी के तेल में मिलेड़े पानी में पत्र के बाहर रखना है। वर्षा के टाइम की एक सुरक्षा उपाय थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फेरोमोन ट्रैप की बात करें तो किसान भाइयों फेरोमोन ट्रैप एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसका मैं कृत्रिम फेरोमोन यानी गंध को उपयोग जो है वो करे जावे। आ गंध मादा कीट के द्वारा छोड़ी जाने वाली प्राकृतिक गंध वर्गी हुए जिसका मैं किया नर कीट आकर्षित हो गए ट्रैप में फंस जाए और यूं किए गए बांगो प्रजनन जो है वो किसान भाइयों कम हो जाए और कीटांग की संख्या है वह घटन लाग जाए। फेरोमोन ट्रैप जो को है वो फेरोमोन ल्योर लगाया जावे, नर कीट गंध आकर्षित हो गए ट्रैप में प्रवेश करे ब्यू किए गए फिर बारह को निकल पावे, मादा ऊँ स्योंक को नहीं हो पावे और नई पीढ़ी के कीटांग की संख्या भी किए गए कम हो जाए। और फेरोमोन ट्रैप का उपयोग बहुत सारी फसलों में किसान भाई अपना करे जी हाँ, कपास टमाटर मिर्च भिंडी बैंगन गोभी चना मूँगफली गन्ना अमरूद और दूसरी फल फसलों में किए गए वो बड़ो कारगर साबित हो। फेरोमोन ट्रैप लगाने खातर प्रति एकड़ सामान्यतया 4-6 ट्रैप अपन लगाना चाहिए। ट्रैप ने फसल की ऊंचाई के बराबर अपन रखना चाहिए, ल्योर की प्रत्येक 15-20 दिन में अपन ये बदलना चाहिए, नियमित रूप में ट्रैप की अपन जांच करनी चाहिए, पकड़ेड़ा कीड़ा को अपन रिकॉर्ड रखना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप लगाने की उसी केवल लक्ष्य कीट ने वो आकर्षित करे, मित्र कीट जगह है वह सुरक्षित रहे, कीटनाशकों का उपयोग घटे, सागी उत्पादन की लागत है पाकिस्तान भाइयों अपनी कम हो जाए, पर्यावरण और स्वास्थ्य खतरे एकदम सुरक्षित है और कीटांग की निगरानी में बहुत ही उपयोगी है। अब बात करें किसान भाइयों प्रकाश पास और फेरोमोन ट्रैप में अंतर की है। प्रकाश पास चुको है वो प्रकाश को कीटा आकर्षित करे, फेरोमोन ट्रैप गंदू नर कीट ने आकर्षित करे। प्रकाश पास कई प्रकार का उड़न वाला कीट इंगवा आवे और फेरोमोन ट्रैप में केवल विशेष कीटा खातर ही उपयोगी है। प्रकाश पास रात में ज़्यादा प्रभावी रहे, फेरोमोन ट्रैप दिन और रात दोनों टाइम काम करे, प्रकाश पास निगरानी और नियंत्रण दोनों करे, फेरोमोन ट्रैप निगरानी और प्रजनन रोकने में प्रभावी रहे। तो अपन कई सावधानियां भी रखनी है जी हाँ, सही टाइम पर अपन ट्रैप लगाना है, अनुशंसित संख्या में ही अपना

प्रयोग करना है। ल्योर ने हाथों ज़्यादा नहीं छूना चाहिए, समाप्त हो चुके हैं ल्योर अपन बदल देना चाहिए। अत्यधिक कीटनाशक छिड़काव के साथ अनावश्यक प्रयोग अपन ने नहीं करना चाहिए, नियमित रूप में अपन ने निरीक्षण करना चाहिए। प्रकाश पास और फेरोमोन ट्रैप अपा ए उपाय अपना गए और अपा अच्छा परिणाम ले इसका। जखम किया कि टैंपर बुआई, फसल चक्र, खेत की सफाई, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, जैविक नियंत्रण और जरूरी होने पर अनुशंसित कीटनाशकों को अपना प्रयोग जो है वो करना चाहिए। और किसान भाइयों, जे आपा केवल रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भर रहने के बजाय प्रकाश पास और फेरोमोन ट्रैप वर्गी वैज्ञानिक तकनीक ने अपनावांगा तो कीट नियंत्रण ज़्यादा प्रभावी और कम खर्चीलो और पर्यावरण के अनुकूल आपा बिना बना सका। आ तकनीक उत्पाद बढ़ाने, लागत घटाने और सुरक्षित खेती ने बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका जगी है बा निभावे। तो किसान भाइयों, बातचीत आपा और कर सा। अब टाइम है एक गीत सुन गो, तो थाने सुनावा शहनाज़ गो कैडो ओ गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम

0: ब्रांच ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: किसान भाइयों, आपनों जो को देश है वो कृषि प्रधान देश है और अठा बड़ी संख्या में लोग किए गए खेती पर निर्भर है, लेकिन बढ़ती लागत, मौसम की अनिश्चितता और घटते मुनाफे के कारण के किसान भाइयों ने आएगा नए स्रोत की आवश्यकता महसूस होने लग रही है। और इसे में किया गया मधुमक्खी पालन जो को है वो एक इशो विकल्प बन गए उभरियो है, जो को न केवल अतिरिक्त आयापन देवे बल्कि फसलों की पैदावार भी किए गए बढ़ावा है। मधुमक्खी पालन वह प्रक्रिया है जिसका में किया

0: वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: किसान भाइयों, अपना कहना है बाजार भाव भी आड़ा है तो बंगी बात कर लिया। सारों पहला बात करा श्री गंगानगर अनाज मंडी के भाव की। थोड़ा सरसों का भाव रहा 6,970 ले गए 7,751 रुपया प्रति क्विंटल, और चना का भाव रहा 5,301 ले गए 5,531 रुपया प्रति क्विंटल। कणक का भाव रहा 2,441 ले गए 2,800 रुपया प्रति क्विंटल। ग्वार का भाव रहा 4,900 ले गए 5,945 रुपया प्रति क्विंटल, और मूंग का भाव रहा 6,400 रुपया प्रति क्विंटल। सूरतगढ़ अनाज मंडी के भाव की बात करें तो कणक का भाव रहा 2,435 ले गए 2,516 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों का भाव रहा 7,190 ले गए 7,246 रुपया प्रति क्विंटल। ग्वार का भाव रहा 5,540 ले गए 5,833 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग का भाव रहा 6,360 ले गए 6,700 रुपया प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, इंग सागी आज को टेमी तो ही वेद भाई ने देव आ गया। राम राम सा राम राम।

फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है। स्मार्ट डिसीजन

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 7:45 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

0: जाने अनजाने। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में। गीत SH बिहारी का था, संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें यशुदास और साथियों की, गीतकार संगीतकार रविंद्र चैन। फिल्म का नाम है नैया।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मुद्दत फिल्म का गीत सुनिए, आशा भोसले, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज़ में। गीत इंडिवर का, संगीतकार बप्पी लहरी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुने कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज श्रीपाल शर्मा का। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुमराह के कुछ गीत।

स्वतो फिल्म गुमराह सन 1963 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे बी आर चोपड़ा, लेखक थे अख्तरुल इमाम, जिन्होंने लेखन में और संवाद में अपना योगदान दिया था। निर्माता और निर्देशक के रूप में बी आर चोपड़ा ने इस फिल्म में योगदान दिया था। कब जुदाई के सफ़र को मेरे आसान करो, अब जुदाई के सफ़र को मेरे आसान करो, तुम मुझे ख्वाब में आकर ना परेशान करो।

सुदाव फिल्म गुमराह जो सन 1963 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में अभिनय करने वाले कलाकार थे सुनील दत्त और इसके साथ अशोक कुमार, माला सिन्हा, निरूपा राय, देवेन वर्मा और शशिकला ने इस फिल्म में अपना योगदान दिया। संगीत की अगर बात करें तो संगीतकार रवि ने इस फिल्म के लिए अपना संगीत दिया और शाहिर लुधियानवी जिन्होंने इस फिल्म के लिए गीत लिखे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म रही और अपने प्रदर्शन के लिए शशिकला ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में फिल्मफेयर का पुरस्कार जीता।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं फिल्म गुमराह के कुछ गीत। श्रोताओं, मीना यानी माला सिन्हा और कमला यानी निरूपा राय दोनों इस फिल्म में एक अमीर पिता की दो बेटियां हैं। कमला अपने पति अशोक यानी अशोक कुमार के साथ रहती है और वहीं मीना मुंबई में एक गायक कलाकार राजेंद्र यानी सुनील दत्त से प्यार करने लगती है। कमला जब नैनीताल में आती है तो उसे मीना के राजेंद्र के साथ दोनों का आपस में बातचीत होना पता चलता है और वो उसकी शादी कराने के बारे में सोचती रहती है। कमला उसकी शादी के लिए कुछ कर पाती इससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। कमला के बच्चों के लिए सौतेली माँ लाने और उसके बच्चों को इससे परेशानी होगी, ये वजह से इस डर से मीना अशोक से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। एक दिन उसकी मुलाकात दोबारा राजेंद्र से होती है। वो उसका पीछा करते हुए मुंबई आ जाता है और वो दोनों वहाँ अकेले में मिलते हैं। एक दिन मीना को लीला यानी शशिकला पकड़ लेती है और वो अपने आप को राजेंद्र की पत्नी बताती है और उसे ब्लैकमेल करती है। अब मीना उन दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर हो जाती है।

कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। श्रोताओ, फिल्म गुमराह में आवाज देने वाले, गीत गाने वाले कलाकार थे महेंद्र कपूर, आशा भोंसले, जिन्होंने इस फिल्म के लिए गीत गाए। इस फिल्म के सारे गीत एक से बढ़कर एक हिट हुए। महेंद्र कपूर को इसी गीत के लिए, जो अभी हमने आपको सुनवाया, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार मिला था। साहिल लुधियानवी को इस गीत के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए नामित किया गया। वहीं बी आर चोपड़ा को भी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ

यूं लगे दोस्त तेरा मुझसे खपा हो जाना, जिस तरह फूल से खुशबू का जुदा हो जाना।

मैंने समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, मैंने समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, तूने जाकर तो जुदाई मेरी किस्मत कर दी। श्रीपाल को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज आपने गुमराह फिल्म के गीत सुने। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब हमारा अगला कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर अपने को होस्ट प्रशांत के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रशांत, फुटबॉल विश्व कप का महाकुंभ अब अपने अंतिम पायदान पर पहुंच गया और रविवार को अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने होंगे। इसके अलावा और किन खेल खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी?
1: नवीन स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में अपने लिसनर्स को इंग्लैंड के कार्डिफ के मैदान में ले चलेंगे, जहां इस समय दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत और इंग्लैंड आमने सामने है और रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने नया इतिहास रचा, इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं नवीन, आगामी एक दिवसीय और T20 वर्ल्ड कप के नए क्वालिफिकेशन सिनेरियो पर भी बात होगी।
0: शांत, क्रिकेट के मैदान से निकलकर हम अपने लिसनर्स को जापान लिए चलेंगे, जहां बैडमिंटन कोर्ट पर पीवी सिंधु लगातार शानदार प्रदर्शन कर रखी हैं और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं।
1: लेकिन नवीन, आज की सबसे पहली खबर रहेगी बॉक्सिंग के कोर्ट से, जहां भारत ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किए हैं।
0: तो अगले 15 मिनट तक बने रहिए मेरे और प्रशांत के साथ और नजर उन तमाम खबरों पर जिसके साथ आपको इंतजार रहेगा। खेल प्रेमियों को क्या है उनका सरोकार आपसे।
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मुक्केबाजी से नवीन, जहां भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किए हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम किए। नवीन, अगर पुरुषों के अंडर 23 वर्ग की बात की जाए तो विश्वनाथ, सुरेश और गंगा ने स्वर्ण, जबकि वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। विश्वनाथ ने 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में जापान के डाइची इवाई को और गंगा ने कजाकिस्तान के लाटन बुरान बेग को 3-2 से हराया। नवीन,
0: वही प्रशांत, वंशज ने बहादुरी दिखाई लेकिन उन्हें उज्बेकिस्तान के इल्मे खुवाजून एर्गोशेव के हाथों 1-4 चार अंक से हारकर मैच अपने हाथ से गंवाना पड़ा और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। लेकिन अगर अंडर 19 पुरुष फाइनल की बात करें तो भारतीय बॉक्सरों ने प्रशांत जबरदस्त कोशिश की, लेकिन सिर्फ हमें सिल्वर मेडल ही मिला। 65 किलोग्राम वर्ग में आदित्य उज्बेकिस्तान के एलियोर रुस्तमोव से 5-0 से हार गए। वहीं 90 किलोग्राम वर्ग में शुभम राजपूत को उज्बेकिस्तान के अजदबेक सुल्तान बोएव के हाथों 0-0 के मुकाबले 5 शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि लगातार भारत बॉक्सिंग में बेहतरीन प्रदर्शन करता आ रहा है और जिस तरह से हमारे युवा खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, उम्मीद है कि भारत आगे और शानदार प्रदर्शन करेगा और कई पदक अपने नाम करेगा।
1: बिल्कुल नवीन,
0: इससे पहले अगर बुधवार की बात करें, कल की बात करें, तो इंडोनेशिया में हुए फाइनल में अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में महिला वर्ग में भी शानदार प्रदर्शन हुआ।

0: अंडर 19 और अंडर 23 श्रेणी में कुल 5 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए। और अब आपको हम लिए चलते हैं सीधा कार्डिफ, जहां पे इसमें दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी है और भारत ने ताजा समाचार मिलने तक क्या स्कोर बना लिया है प्रशांत?
1: 38वें ओवर में नवीन 7 विकेट पर 201 रन बना लिया है भारत ने।
0: 38वें ओवर में भारत के 201 रन बन चुके हैं, 7 विकेट प्रशांत गिर चुके हैं। शुरुआत मैच की बहुत अच्छी हुई थी और हमें लग रहा था कि भारत एक लंबा स्कोर करेगा, लेकिन एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते गए। जिस तरह से ईशांत का विकेट गिरा और उसके बाद एक समय ऐसा आया जब लग रहा था कि शायद हैट्रिक भी हो जाएगी।
1: जी बिल्कुल नवीन, और भारत टीम जो है इस मुकाबले में एक बदलाव के साथ भी उतरी है। KL राहुल के स्थान पर ईशान किशन को विकेट कीपिंग का जिम्मा दिया गया है।
0: वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम में भी 2 बदलाव किए गए हैं। शाकिब महमूद और एटकिंसन को जॉस्टन और लियाम जासन की जगह टीम में शामिल किया गया है। और भी कई तरह के रिकॉर्ड बने हैं प्रशांत।
1: जी बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नवीन 8000 रन पूरे कर लिए हैं। रोको ने यह कारनामा इंग्लैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में, यानी आज के मुकाबले में ही किया है नवीन। ये भारत के लिए सभी फॉर्मेट में सर्वाधिक रन जोड़ने के मामले में 3rd नंबर की जोड़ी बन गई है। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली सबसे आगे हैं,
0: जिन्होंने सभी फॉर्मेट पे कुल मिलाकर 12400 रन जुटाए हैं। थोड़े और आंकड़ों की प्रशांत अगर बात करें तो तेंदुलकर ने राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर लगभग 11000 रन जोड़े हैं और इसी लिस्ट में सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ की जोड़ी 4th स्थान पर रखी है।
1: बिल्कुल, और तीनों फॉर्मेट में इन्होंने करीब 7500 रन से ज्यादा रन जुटाए। और वीरेंद्र सहवाग और मौजूदा जो कोच है भारत के गौतम गंभीर ने भी 7000 से ज्यादा रन जुटाए हैं इस फॉर्मेट में नवीन।
0: भारतीय टीम की बात करें तो पहला मैच भारत ने 1-0 से जीत लिया है। दूसरे मैच में भारत लगातार कोशिश कर रहा है। 12 ओवर इस समय लगभग बचे हैं प्रशांत, 201 रन है, कितनी उम्मीद हम कर सकते हैं? हालांकि इस समय भारतीय पुछल्ले बल्लेबाज इस समय मैदान पर हैं। उम्मीद हमें ईशान किशन से थी, उम्मीद हमें और भी बहुत सारे बल्लेबाज से थी, लेकिन शायद वो खरे नहीं उतरे हैं।
1: बिल्कुल नवीन, और अभी इस वक्त श्रेयस अय्यर जो कि T20 भारत के कप्तान भी है, वो एक तरफ से डटे हुए हैं और बहुत मजबूती देकर भारत को 200 के पार पहुंचाया, और अगर भारत 250 तक पहुंचती है नवीन तो एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है।
0: प्रशांत, खेल प्रेमियों को और खासकर अगर क्रिकेट प्रेमियों की बात करें तो उन्हें अक्षर पटेल और उनके जोड़ीदार वॉशिंगटन सुंदर पे आज एक खासी नजर उनकी रही होगी, जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में एक शानदार प्रदर्शन किया था और भारत को जीत दिलाई थी, लेकिन इस बार दोनों ही बल्लेबाज नहीं चले।
1: बिल्कुल, वॉशिंगटन सुंदर ने 5 गेंदों का सामना कर 2 रन बनाए और अक्षर पटेल महज 1 रन ही बना सके। और उधर शिवम दुबे जो खाता भी नहीं खोल सके, लगातार T20 में अच्छा प्रदर्शन रहा है नवीन शिवम दुबे का, लेकिन एक दिवसीय में वो छाप नहीं छोड़ सके हैं अब तक।
0: मुझे लग रहा है टीम प्रबंधन ने यहां कुछ अलग तरह से टीम उतारी है और कुछ अलग तरह से बैटिंग ऑर्डर रखा है, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर से एक पायदान ऊपर आएंगे, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा पिछले मैच में तो शिवम दुबे को नीचे खींचा गया। शायद इससे ऐसा लगता है कि उन पर थोड़ा बहुत प्रेशर रहा हो, क्योंकि लगभग 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे।
1: बिल्कुल,
0: इसके अलावा हमारी नजर रहेगी एक और क्रिकेट से जुड़ी खबर पर, वो है कि ICC ने कल नए फॉर्मेट में बदलावों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 2028 T20 वर्ल्ड कप के लिए नया क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर बनाया गया है। इनका ऐलान एडिनबर्ग में हुई ICC की सालाना बैठक के बाद किया गया।
1: नवीन, वनडे और T20 वर्ल्ड कप नए फॉर्मेट में होंगे। वनडे में सेमीफाइनलिस्ट सुपर 7 से, T20 में सुपर 10 से तय होंगे। क्वालिफिकेशन का सिस्टम भी बदला गया है। सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट,
0: विशाल की रिपोर्ट।
2: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आगामी एक दिवसीय और T20 के लिए नए फॉर्मेट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 2027 का एक दिवसीय विश्व कप और 2028 का T20 विश्व कप नए फॉर्मेट में खेला जाएगा। एक दिवसीय विश्व कप में 14 टीमों के साथ नया 3-स्टेज फॉर्मेट लागू होगा। इसमें सेमीफाइनलिस्ट सुपर 7 राउंड से चुने जाएंगे। वहीं T20 विश्व कप में सुपर 8 की जगह सुपर 10 स्टेज खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 2 नए एलिमिनेटर मुकाबले भी जोड़े गए हैं। एक दिवसीय विश्व कप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी। नए फॉर्मेट में सबसे पहले सुपर सीरीज खेली जाएगी। इसमें रैंकिंग की आखिरी 3 टीमें राउंड रोबिन फॉर्मेट में आमने सामने होंगी और एक टीम दूसरे राउंड में पहुंचेगी। दूसरे राउंड में 12 टीमें ही होंगी। 6-6 टीमों के 2 ग्रुप होंगे। दोनों ग्रुप की टॉप 3 टीमें और दोनों ग्रुप को मिलाकर एक सर्वश्रेष्ठ टीम तीसरे राउंड यानी सुपर 7 में पहुंचेगी। इसके बाद टॉप 4 टीमें

0: फाइनल में पहुंचेंगी। इनकी विजेता टीमें फाइनल खेलेंगी। वहीं 2027 में एक दिवसीय विश्व कप में कुल 14 टीमें खेलेंगी। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इन 14 टीमों में से 12वें, 13वें और 14वें स्थान पर रहने वाली टीमें राउंड 1 खेलेंगी, जिसमें सिर्फ एक टीम अगले दौर में पहुंचेगी। इसके बाद 12 टीमें दो ग्रुप में खेलेंगी। दोनों ग्रुप से टॉप 3 और चौथे स्थान पर रहने वाली दोनों टीमों में से बेहतर एक टीम सुपर 7 में पहुंचेगी। सुपर 7 की 7 टीमें राउंड रॉबिन मुकाबले खेलेंगी, जहां से टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल और फिर फाइनल के जरिए चैंपियन तक का सफर तय करेंगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: प्रशांत, एक नया फॉर्मेट आया है क्रिकेट के मैदान पर, अब देखना होगा कि ये जो नया फॉर्मेट है ये किस तरह से दर्शकों को, खेल प्रेमियों को लुभाता है, और मुझे लगता है कि क्रिकेट की लोकप्रियता को और बढ़ाने के लिए इस तरह के बदलाव किए गए हैं।
2: बिल्कुल नवीन, जो नए जो एसोसिएट नेशन है उनको भी बराबरी का मौका मिले और अच्छा प्रदर्शन हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और बहुत ही लोकप्रिय और रोमांचक बनाने के मद्देनजर इसको ऐसा किया गया है नवीन।
1: और प्रशांत, लगता है कि खेलों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए और खेल नीरस ना हो जाए, क्योंकि

0: सुपर सेवन में पहुंचेगी। सुपर सेवन की सातों टीमें राउंड रॉबिन मुकाबले खेलेंगी, जहां से टॉप फोर टीमें सेमीफाइनल और फिर फाइनल के जरिए चैंपियन तक का सफर तय करेंगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: प्रशांत, एक नया फॉर्मेट आया है क्रिकेट के मैदान पर, अब देखना होगा कि ये जो नया फॉर्मेट है ये किस तरह से दर्शकों को, खेल प्रेमियों को लुभाता है, और मुझे लगता है कि क्रिकेट की लोकप्रियता को और बढ़ाने के लिए इस तरह के बदलाव किए गए हैं।
2: बिल्कुल नवीन, जो नए जो एसोसिएट नेशन है उनको भी बराबरी का मौका मिले और अच्छा प्रदर्शन हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और बहुत ही लोकप्रिय और रोमांचक बनाने के मद्देनजर इसको ऐसा किया गया है नवीन।
1: और प्रशांत, लगता है कि खेलों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए और खेल नीरस ना हो जाए, क्योंकि जितना क्रिकेट इस समय देखा जा रहा है और जितना क्रिकेट इस समय हो रहा है खासकर क्रिकेट नेशन देशों में, तो उससे लगता है कि कहीं कहीं लोकप्रियता कम हो रही थी, और शायद ये बदलाव क्रिकेट के लिए भी अच्छे होंगे।
2: जी बिल्कुल।
1: और अब नजर करते हैं सीधा हम फुटबॉल यानी कि फीफा विश्व कप पे। अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है।
2: नवीन, अर्जेंटीना 86 मिनट तक कोई गोल नहीं कर सकी, 0-1 से पिछड़ रही थी। इसके बाद आखिरी 7 मिनट में अर्जेंटीना ने अपनी किस्मत बदल दी और 2 गोल दागकर जीत हासिल की। अब फाइनल में उसका मुकाबला 19 जुलाई को स्पेन से होगा।
1: अगर हम अर्जेंटीना के खेल पे नजर डालें, पिछले क्वार्टर फाइनल में नजर डालें और सेमीफाइनल की बात करें, तो प्रशांत लगता है कि अर्जेंटीना का डिफेंस जो है वो कमजोर हो गया है। अर्जेंटीना के खेल की बात करें तो लगातार उनका अटैकिंग खेल होता है, उनके लगता है कि गोलकीपर को छोड़कर उनके 10 के 10 खिलाड़ी दुश्मन टीम पे आ जाना चाहते हैं और गोल करना चाहते हैं, और शायद यही कमी रह जाती है। अगर स्पेन के साथ मुकाबले की बात करें तो स्पेन ने उनके डिफेंस को भेदते हुए गोल कर दिया और लगातार 87 मिनट तक उन पर प्रेशर बना रहा।
2: जी बिल्कुल।
1: सुनते हैं इस पर रिपोर्ट सर फिरोजी की और फिर और कुछ जानकारी इस मैच के बारे में।
3: डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। अटलांटा में एंथनी गॉर्डन के 55वें मिनट के गोल से इंग्लैंड फाइनल की ओर बढ़ता दिख रहा था। हैरी केन के लंबे पास पर अर्जेंटीना का डिफेंस पूरी तरह क्लियरेंस नहीं कर सका और एंथनी गॉर्डन ने बॉक्स से आसान फिनिश किया। ये टूर्नामेंट में गॉर्डन का पहला गोल था और इस गोल के साथ ही इंग्लैंड 1-0 से आगे हो गया है। इसके बाद अर्जेंटीना ने अटैकिंग गेम खेलना शुरू कर दिया। टीम को 86वें मिनट में कॉर्नर मिला। लियोनेल मेसी ने शॉर्ट कॉर्नर खेलकर गेंद एंजो फर्नांडिस को दी। फर्नांडिस ने करीब 25 गज की दूरी से शॉट लगाया। इस गोल के साथ स्कोर 1-1 हो गया। फिर इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में मेसी ने फिर कमाल कर दिया। उन्होंने दाईं ओर से बॉल बॉक्स में भेजी। सब्स्टिट्यूट स्ट्राइकर लोटारो मार्टिनेज डिफेंडरों से आगे निकले और शानदार हेडर के जरिए गेंद को गोल में पहुंचा दिया। अर्जेंटीना ने 7 मिनट के भीतर मैच पलटते हुए 2-1 से बढ़त बना ली और फिर मुकाबले को अपने नाम कर फाइनल में प्रवेश कर लिया।
4: This one's on target. This one's an absolute beauty. Messi. Oh, England are in trouble. And maybe through Lautaro Martinez they're going out to the semi-final stage. And Argentina, the world champions, are going to the 2026 final. Argentina will play Spain on Sunday.
3: Sir Firozi, SportsCan.
2: नवीन, इस विश्व कप में अर्जेंटीना का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और अर्जेंटीना का यह 7वां वर्ल्ड कप फाइनल होगा और टीम इससे पहले 1930 हो, 1978, 1986, 1990, 2014 और 2022 में फाइनल खेल चुकी है और अर्जेंटीना 1978, 1986 और 2022 में विश्व कप भी जीत चुकी है। अब उसके पास लगातार दूसरी बार और कुल 4था खिताब जीतने का मौका होगा।
1: और प्रशांत, स्पेन की बात करें तो फ्रांस को 2-0 से हराकर 16 साल के अंतराल के बाद फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने प्रवेश किया है और स्पेन फीफा विश्व कप के एक ही संस्करण में 6 बार क्लीन शीट रखने वाले इतिहास की पहली टीम बन गई है। और खास बात यह कि 2018 से 2021 के बीच 37 मैचों की अजेय लय के साथ उन्होंने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। और अब बात बैडमिंटन की। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सुनते हैं करिश्मा की रिपोर्ट।
5: 2019 की BWF चैंपियन सिंधु ने दूसरे राउंड में 5वीं वरीयता प्राप्त चीन के खिलाड़ी पर शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने सिर्फ

0: 35 मिनट का समय लिया और 21-16, 21-14 से मैच अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही चीन के खिलाड़ी हान के खिलाफ सिंधु का रिकॉर्ड भी बेहतर होकर 8-1 हो गया। पहले गेम में हालांकि शुरुआत धीमी रही, लेकिन बाद में सिंधु ने अपनी लय हासिल की और अपना दबदबा बनाते हुए 21-16 से पहला गेम अपने नाम किया। भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे गेम में भी वही लय बनाए रखी, 8-0 की बढ़त हासिल की और हान यू को वापसी का कोई खास मौका नहीं दिया। हालांकि चीनी खिलाड़ी ने कुछ समय के लिए अंकों का अंतर कम किया, लेकिन सिंधु ने समय बनाए रखा, मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत रखी और शानदार जीत दर्ज की। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और श्रोता, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से एक नजर डाल लेते हैं भारतीय पारी पर। 40 ओवर में भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 210 रन बना लिए हैं।
2: स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में बस इतना ही। ये अंक आपको हमें कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है sportscan.air@gmail.com। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और प्रशांत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनों से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनों के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी

0: शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के 1 वर्षीय प्लेटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों

0: पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
1: ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी बीजे और छेरा पहरा की पवित्र रस्म में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
0: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है।

ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। सुनिए जगजीत सिंह की गाई ये गजल।

तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। आइए सुने जगजीत सिंह की गाई ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपने जगजीत सिंह की गाई गजलें सुनी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत की कृषि यात्रा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: श्रोताओं, भारत कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत जहां एक तरफ बहुतायत में अनाज या अन्न का उत्पादन करता है, तो दूसरी तरफ भारत की जो खेती है वो वैज्ञानिक और उन्नत है और तकनीकी रूप से सक्षम है। भारत की खेती को इतना उन्नत, तकनीकी रूप से सक्षम और भारत के अन्न भंडारों को लगातार भरने का जो एक बीड़ा उठाते हैं हमारे कृषक उठाते हैं, लेकिन कृषकों के समर्थन और उनकी सहायता के लिए बहुत से संस्थान भी काम करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक ऐसा ही संस्थान है जिसने लगभग 98 वर्षों से देश की सेवा की है, कृषि क्षेत्र को लगातार समृद्ध बनाया है। तो आज हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 98 स्थापना दिवस के अवसर पर और जिस तरह से इस संस्थान ने भारत को कृषि प्रधान देश और उन्नत कृषि के मामले में सक्षम बनाने में जो भूमिका निभाई है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट कार्यक्रम में जुड़े हैं। डॉक्टर मांगीलाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो आपको जो ये लंबा सफर रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का और 98वां जो स्थापना दिवस मनाया है, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और चर्चा की शुरुआत इससे ही करते हैं कि जो ये एक पूरा सफर रहा है, कैसे आप देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारत की खेती के लिहाज से इस सफर को, क्या सबसे बड़ा योगदान आप मानते हैं इस संस्थान का?
2: धन्यवाद। सबसे तो पहले मैं आज अपने श्रोताओं को, स्पेशली हमारे किसानों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आज इस 98वें स्थापना दिवस के मौके पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97 साल का ये सफर, क्योंकि 98वां स्थापना दिवस आज मनाया है, काफी गौरवशाली रहा है। यदि आप देखें तो हम खाद्यान्न में, हॉर्टिकल्चर में, लाइव स्टॉक सेक्टर में, फिशरीज सेक्टर में हमने जो सफर तय किया है वो बहुत अद्भुत है। हमें आयात पर निर्भर होना होता था, आज हमारे देश में अन्न के भंडार इतने भरे हुए हैं। आज हमारा जो एवर हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन जो इस साल का मैं बताऊं आपको, 376.7 मिलियन टन हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, 377 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, मिल्क का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, लगभग 20 मिलियन टन के आसपास फिश का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट। ये सारा का सारा जो जितना हुआ है, इसके बैकग्राउंड में विज्ञान, तकनीकी, पॉलिसी, किसानों की मेहनत सारा शामिल है। और ये पूरा इकोसिस्टम के साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूरे देश में काम करता है। ये विश्व का एक सबसे बड़ा नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। हमारे जो 114 संस्थान, हमारे 731 कृषि विज्ञान केंद्र है जिनको हम काम करते हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं 80, उनके साथ में काम करते हैं।

0: हैं तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है
1: जी
0: और काफी हमने प्रगति की है। और स्पेशली यदि हम आज, क्योंकि आज हमारा स्थापना दिवस है, एक रिफ्लेक्शन पिछले 1 साल का यदि मैं करूं तो बहुत बड़ा काम इसमें हुआ है। पिछले 1 साल में हमने 19.5 मिलियन टन के लगभग फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाया है। 1 साल में 7 मिलियन टन के लगभग हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाया है, फिशरीज का, लाइव स्टॉक का, और इन सब की यदि वैल्यू मैं करूं तो लगभग 1.25 लाख करोड़ के लगभग एडिशनल वैल्यू मैं बता रहा हूं जो 1 साल में हुआ वो है। और इस सब के पीछे अनुसंधान का हाथ है, उसके साथ साथ पॉलिसी और किसान की मेहनत तो है ही है। तो ये गौरवशाली
1: जी
0: इतिहास है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का।
1: बिल्कुल, आपने जैसे कि बात की शुरुआत में ही कि जो भारत की कृषि है, या कृषि को हम अगर पूरी परिभाषा के साथ देखें तो इसमें फिशरीज है, डेयरी है, लाइव स्टॉक है, हर तरह का क्षेत्र शामिल है। और इसमें भारत के जो प्रगति है उसके आपने बहुत पॉजिटिव आंकड़े और एक समृद्ध देश के आंकड़े आपने प्रस्तुत किए। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो कौन से अहम नवाचार, इनोवेशन या रिसर्च या फिर खेती के लिए बड़े पॉलिसीज रही हैं जिन्होंने भारत की खेती की तस्वीर को बदला है इन बीते कुछ वर्षों में, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है।
0: सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो है बीज, और क्वालिटी बीज, हाई यील्डिंग सीड, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड, इसके ऊपर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बहुत काम किया है। हमारा पिछले 10-11 साल का देखें तो 3,000 से ज्यादा क्रॉप वैरायटी जो हमने रिलीज किए हैं उनमें से ज्यादा वैरायटीज क्लाइमेट रेजिलिएंट है। और इसी को यदि आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में चाहे वातावरण की विषम परिस्थितियां रही हो उसके बावजूद भी हमारा प्रोडक्शन घटा नहीं, बढ़ा है। तो
1: जी
0: क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने में बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे क्रॉप्स की हो चाहे हॉर्टिकल्चर की हो। उसके साथ साथ में पशुधन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ब्रीडिंग और बाकी मटेरियल, इंप्रूव्ड ब्रीड और उनकी तो बात है ही है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके कॉन्टेक्स्ट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो वैक्सीन पे काम किया है, हमने क्विकली उसको जो रेस्पॉन्ड किया है, चाहे फुट एंड माउथ डिजीज हो चाहे लंपी स्किन डिजीज हो। और मैम मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज हमने फाउंडेशन डे के दौरान एक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का वैक्सीन रिलीज किया है जो एक अपने आप में ब्रेक थ्रू है। तो उसके कारण से जो एनिमल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। हमारे प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि चाहे मिट्टी हो चाहे पानी हो चाहे वातावरण हो, उसके ऊपर हमने बहुत काम किया है। लैंड डिग्रेडेशन जो वाटर से होता था 125 मिलियन हेक्टेयर वो कम होके 80 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। उसके अलावा सैंड ड्यून स्टेबिलाइजेशन, चाहे आप डेजर्ट की बात करते हैं तो उसपे काम हुआ है। हमने क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेज बना के जो काम किया और उसका अप स्केलिंग किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। हमारी ऊसर भूमि और इस तरीके की जो भूमि थी डिग्रेडेड, उनका रिक्लेमेशन का बहुत बड़ा काम हुआ है। हमने फार्म मैकेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा काम किया है और फार्म मैकेनाइजेशन का लेवल काफी बड़ा है, क्योंकि अभी लेबर की अवेलेबिलिटी और टाइमलीनेस ऑफ द ऑपरेशन ये काफी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो मैकेनाइजेशन पे बहुत बड़ा फोकस हमने किया है। लेकिन इसके साथ साथ ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ
1: जी
0: बनाना ही काफी नहीं है, टेक्नोलॉजी को किसान तक पहुंचाना सबसे
1: बिल्कुल
0: इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है।
1: बिल्कुल, अगला सवाल मेरा डॉक्टर मांगेलाल इसी पर ही था कि जैसे ही आपने बहुत से प्रयोगों की बात की, लेकिन प्रयोगशाला से लेकर किसानों तक, खेतों तक उस तकनीक को पहुंचाना ये कितना बड़ा कदम रहा है और कैसे इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया है संस्थान द्वारा, इस पर भी आप प्रकाश डालें। और क्योंकि हम इन दिनों बहुत कुछ ऐसा भी सुन रहे हैं कि भविष्य में जो बीज की तकनीक है वो बिल्कुल बदलने वाली है और जो प्रयोगशालाओं में इस पर शोध भी हो रहे हैं, और हमने पहले भी देखा है कि जो एक जैविक प्रयोग होते रहे हैं फसलों को लेकर, बीजों को लेकर, ये तकनीकें किसानों तक पहुंचे, धरातल पर इनका क्रियान्वयन हो, तो कैसे संस्थान ने बड़ी भूमिका निभाई है इसमें।
0: बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं ये बताना चाहता हूं कि डिस्कवरी और डिलीवरी आइसोलेशन में नहीं हो सकती, और
1: बिल्कुल
0: हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो पूरा फोकस है वो है डिस्कवरी टू डिलीवरी कॉन्टिनम। और डिस्कवरी टू डिलीवरी कॉन्टिनम के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारा फोकस है डिमांड ड्रिवन रिसर्च। हम रिसर्च वो करें जिसकी किसान को जरूरत है, जो किसान मांगता है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में वन वे ट्रैफिक नहीं करते हुए ये हम पार्टिसिपेटरी जो काम करते हैं कि टेक्नोलॉजी लैब में बनती है लेकिन उसका पार्टिसिपेटरी वैलिडेशन इवेल्युएशन जो हमारे प्रोग्राम्स हैं केवीकेज के थ्रू एक्सटेंशन के थ्रू उसपे काफी काम करते हैं। और डिलीवरी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके संज्ञान में होगा कि पिछले साल मई जून में हमने एक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया। हमारे वैज्ञानिकों की 2,000 से ज्यादा, 2100 से ज्यादा टीम 15 दिन तक खेतों में थी, पूरे देश में 730 लगभग जिलों में। और 15 दिन में हमने लगभग

0: 1,35,00,000 किसानों से सीधा संवाद किया ना। उस संवाद से एक तो है कि टेक्नोलॉजी किसान तक पहुंचाएं, लेकिन दूसरा तथ्य उसका यह भी था कि हम किसान की डिमांड साइड को समझें, और उसी को लेते हुए हमने हमारी रिसर्च में क्या हमें नया करना है, किस चीज की डिमांड है वो कर रहे हैं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लैब टू लैंड का जो फोकस है उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून के बीच में चलाया।
1: जी
0: देश
1: जी
0: में लगभग 1,650 से ज्यादा टीम उस पर फिर जुटी, और उसमें सिर्फ आईसीएआर की बात नहीं है, हमारा फोकस है एक देश एक कृषि एक टीम, और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम इस पे काम कर रहे हैं। तो हम कृषि विश्वविद्यालय स्टेट्स का जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स का जो अमला है वो भारत सरकार के डिपार्टमेंट आईसीएआर हमारे इंस्टीट्यूशन सभी लोगों को यूनिवर्सिटीज को मिला के और इसके ऊपर काम किया, क्योंकि इस साल विशेष परिस्थितियां रही है, और उसमें खेत बचाओ में यही है कि फर्टिलाइजर का जो अंधाधुंध उपयोग हो रहा है उसको कैसे ठीक किए, बैलेंस कैसे करें, तो उस पर जागरूकता, प्राकृतिक खेती पे देश का बहुत बड़ा एक फोकस है तो उसकी जानकारी किसानों को वो पहुंचाएं। उसके अलावा जो एल नीनो का इफेक्ट है तो कौन सा वैरायटीज, कौन सा सीड, कौन सी

0: सभी लोगों को, यूनिवर्सिटीज को मिला के, और इसके ऊपर काम किया, क्योंकि इस साल विशेष परिस्थितियां रही है, और उसमें खेत बचाओ में यही है कि फर्टिलाइजर का जो अंधाधुंध उपयोग हो रहा है उसको कैसे ठीक किए, बैलेंस कैसे करें, तो उस पर जागरूकता, प्राकृतिक खेती पे देश का बहुत बड़ा एक फोकस है, तो उसकी जानकारी किसानों को वो पहुंचाएं। उसके अलावा जो एलनिनो का इफेक्ट है, तो कौन सा वराइटीज, कौन सा सीड, कौन सी क्रॉप कहाँ पे, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वो हम, उसके अलावा ये भी कर रहे हैं कि जैसे मैं एलनिनो की बात करूं, तो हमने 315 जिले जो वल्नरेबल देश के हैं उनके लिए कंटिजेंसी प्लान बना के सारे स्टेट्स के राज्यों के साथ में
1: जी
0: डिस्कशन
1: जी
0: करके हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको पहुंचाया है। तो हम एक्सटेंशन की दिशा में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारा एक पूरा एक्सटेंशन का डिवीजन है।
1: क्योंकि आपने एलिनो की चर्चा की, उसी से मेरे मन में यह सवाल आया कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक चुनौती तो ये रहेगी पूरी दुनिया के सामने कि दूध या खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने रहे। हमारे देश में भी एक इतनी बड़ी जनसंख्या की पेट भरने के लिए दुग्ध उत्पादन की एक बहुत बड़ी टारगेट रहेगा। तो ऐसे में जो फसलें और जलवायु परिवर्तन भी एक चुनौती है, तो क्लाइमेट रेजिलियंट फसलें हों, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन हो, इन सब की चुनौतियों को लेकर क्या लक्ष्य रखता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने सामने?
0: मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जितना भी हमारा फोकस है ये क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर ही है, और जो आज भी जैसे हमने वैरायटीज रिलीज की है तो 94% वैरायटीज क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटीज है। हमारा सारा का सारा फोकस क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने पे है, और उसी का परिणाम है कि हमारा प्रोडक्शन क्लाइमेट की रिस्क होते हुए भी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। लेकिन मैं क्रॉप वैरायटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे लाइव स्टॉक की ब्रीड हो, चाहे फिश की ब्रीड हो, सभी में क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर हमारा पूरा फोकस है। नाउ ये तो हो गया ब्रीडिंग वैरायटीज ब्रीड्स की बात, लेकिन हमारा बहुत बड़ा फोकस क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर पे है। यदि आप देखें तो पिछले 15-20 साल में यदि रेनफेड एग्रीकल्चर जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है क्लाइमेट चेंज के कारण से, जहां रेनफॉल की अनसर्टेनिटी होती है, डिग्रेडेड लैंड होती है, वहां पे हमने प्रोडक्टिविटी गेन इवन इरिगेटेड एरिया की तुलना में, मैं कंपेरेटिव गेन्स की बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा किए हैं। तो हमारी क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ी है, क्योंकि रेनफेड एरियाज में वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो हमारे सारे एफर्ट हैं कि सोयल का इरोजन कम हो, वाटर का कंजर्वेशन हो, सोयल हेल्थ इंप्रूव हो। अभी मृदा का स्वास्थ्य सबसे बड़ा एक
1: बिल्कुल।
0: इश्यू है।
1: और आखिर में आपसे मैं यही समझना चाहूंगा डॉक्टर मांगीलाल, सस्टेनेबल खेती के मॉडल को लेकर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें हम आपसे थोड़ी सी चर्चा ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी करना चाहेंगे, जिसमें जो खादों का प्रयोग है वो सस्टेनेबल तरीके से हो और मिट्टी भी स्वस्थ रहे। तो ऐसे में ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, इसको लेकर भी कितने प्रयास हैं और कैसे इस विषय को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है संस्थान की ओर से?
0: फूड इज मेडिसिन, उस लाइन पे हम काम कर रहे हैं। और हाल ही में हमने ICAR और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने मिलके एक जॉइंट मिशन लॉन्च किया है,
1: बिल्कुल।
0: सेहत स्टैंड फॉर साइंस एक्सलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेहत है। और उसमें जो हमारी बायोफोर्टिफाइड वराइटीज जो न्यूट्रिशियस होती है उस पर फोकस है, उसका वो क्लिनिकल ट्रायल करके उसको हम आगे कैसे लेके जाएं। लेकिन उसके अलावा जो छोटे किसान है, हमारे जोत छोटा है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिसमें सिर्फ फसल ही नहीं हो, उसमें हॉर्टिकल्चर भी हो, उसमें लाइव स्टॉक भी हो, उसमें सेकेंडरी एग्रीकल्चर की एंटरप्राइजेज भी हो, सारी होगी, तो एक तो किसान की आमदनी बढ़ेगी, जो क्लाइमेटिक शॉक्स हैं उनसे रेजिलियंस बढ़ेगा, लेकिन ये वो डाइवर्सिफाइड फूड होगा तो सस्टेनेबल एंड हेल्थी डाइट जो कंट्रीब्यूट कर देगा, तो वो ह्यूमन हेल्थ में भी कंट्रीब्यूट करेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज की डेट में जो फूड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के बहुत ज्यादा हैं, एक तो फूड और एक हमारी लाइफ स्टाइल, वो दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स हो रही है। तो हम एग्रीकल्चर को हेल्थ के साथ में कनेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ये सारी की सारी चीजें आती है। और इन सब चीजों के पीछे यदि हमारी मृदा स्वस्थ रहेगी, सॉयल हेल्थ हमारा फाउंडेशन है, तो हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे, पौधे स्वस्थ रहेंगे तो उसमें जो दाने आएंगे उसको खाके मानव स्वस्थ रहेगा, उसका चारा खाके पशु स्वस्थ रहेगा, और यदि सारा स्वस्थ रहेगा तो हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। और इसलिए भारत सरकार का एक कमीशन है वन हेल्थ, तो ये सारा वन हेल्थ की तरफ कंट्रीब्यूट करता है, और हम इसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर मांगीलाल जाट, आप कार्यक्रम में जुड़े।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत की कृषि यात्रा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल

0: पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: Countrywide

0: Dhimmal on a YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
1: Insights.
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम राजस्थान दर्शन आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

श्रोताओं, राजस्थान का शेखावाटी अंचल अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान, समृद्ध लोक परंपराओं और जीवंत ग्रामीण जीवन के लिए जाना जाता है। झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों में फैला यह क्षेत्र केवल अपनी भव्य हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ की लोक संस्कृति भी राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रेत के धोरों, रंग बिरंगे परिधानों और सदियों पुरानी रिवायतों से सजी शेखावाटी की संस्कृति आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है।

बात करें लोकगीतों की तो शेखावाटी का लोक संगीत यहाँ के जनजीवन का आईना है। लोकगीतों में प्रेम, विरह, उत्सव, भक्ति और प्रकृति के विविध रंग दिखाई देते हैं। विवाह अवसरों पर गाए जाने वाले बन्ना बन्नी गीत, गणगौर और तीज के गीत, सावन के झूला गीत और फसल कटाई के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत ग्रामीण जीवन को मधुरता से भर देते हैं। यहाँ की महिलाओं की सामूहिक स्वर लहरियाँ गांव की चौपालों और आंगनों में एक अलग ही वातावरण निर्मित करती है। केसरिया बालम और धरती धोरारी जैसे गीतों की लोकप्रियता ने शेखावाटी सहित पूरे राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। शेखावाटी के लोक नृत्य उत्सवों और सामाजिक आयोजनों की शोभा बढ़ाते हैं। घूमर, चरी, गेर और कच्ची घोड़ी नृत्य यहाँ विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य विशेष रूप से शेखावाटी की पहचान माना जाता है। इस नृत्य में कलाकार घोड़े की आकृति धारण कर वीरता और हास्य का अनूठा प्रदर्शन करते हैं। ढोल, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र इन नृत्यों की ऊर्जा को और अधिक बढ़ा देते हैं। रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाएं जब घूमर नृत्य करती हैं तो मानो रंगों का चक्रवात सा उत्पन्न हो जाता है।

मरुस्थलीय प्रदेश होने के बावजूद शेखावाटी के लोगों ने अपने जीवन में रंगों का अद्भुत समावेश किया है। पुरुष पारंपरिक रूप से धोती, कुर्ता और रंग बिरंगी पगड़ी धारण करते हैं।

रखते हैं। यहाँ की पगड़ियाँ केवल वस्त्र नहीं बल्कि सम्मान और पहचान का प्रतीक मानी जाती हैं। महिलाएं घाघरा, कुर्ती और ओढ़नी पहनती हैं। गोटा पट्टी, कढ़ाई और शीशे के काम से सुसज्जित वस्त्र उनकी सुंदरता को और भी निखारते हैं। चांदी के आभूषणों का विशेष महत्व है। हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल और गले में पारंपरिक हार ग्रामीण संस्कृति की पहचान है। शेखावाटी के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में लोक देवताओं का भी विशेष स्थान है। गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी और भैरव जी जैसे लोक देवताओं की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से की जाती है। इन लोक देवताओं को जन रक्षक और लोक कल्याणकारी माना जाता है। गोगा जी के मेले और रामदेव जी के जागरण धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता के भी प्रतीक हैं। लोक देवताओं से जुड़ी कथाएं और भजन पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच प्रचलित हैं और समाज को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं।

शेखावाटी का ग्रामीण जीवन सादगी, सहयोग और सामुदायिक भावना का अनुपम उदाहरण है। गांवों में आज भी चौपालें सामाजिक संवाद का केंद्र बनी हुई हैं। किसान कृषि और पशुपालन को अपनी आजीविका का मुख्य आधार मानते हैं। जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जोहड़, तालाब, कुएं और बावड़ियां यहाँ के लोगों की दूरदर्शिता को दर्शाती हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद शेखावाटी के लोगों ने श्रम, धैर्य और सामूहिक प्रयासों से जीवन को समृद्ध बनाया है। ग्रामीण मेलों, तीज त्योहारों और पारंपरिक आयोजनों में पूरा गांव एक परिवार की तरह सहभागी बनता है। यही सामाजिक एकजुटता शेखावाटी की सबसे बड़ी ताकत है।

श्रोताओं, यद्यपि आधुनिकता और शहरीकरण के प्रभाव से लोक संस्कृति के अनेक स्वरूप प्रभावित हो रहे हैं, फिर भी शेखावाटी के लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। लोक कलाकार, साहित्यकार, सामाजिक संस्थाएं और युवा पीढ़ी लोक गीतों, लोक नृत्यों और पारंपरिक कलाओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पर्यटन के बढ़ते महत्व ने भी शेखावाटी

की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दी है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ की कला, संस्कृति और ग्रामीण जीवन को निकट से देखने आते हैं। शेखावाटी की लोक संस्कृति वास्तव में रेत, रंग और रिवायतों का अद्भुत संगम है। यहाँ के लोक गीतों में संवेदनाएं हैं, लोक नृत्यों में उत्साह है, वेशभूषा में रंगों की छटा है, लोक देवताओं में आस्था है और ग्रामीण जीवन में सामूहिकता की मिसाल है। यह संस्कृति केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि वर्तमान की जीवंत पहचान और भविष्य की अमूल्य विरासत भी है। शेखावाटी की यह सांस्कृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करती रहेगी।

राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित शेखावाटी क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति, रंग बिरंगी परंपराओं और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार यहाँ का खान पान भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। मरुस्थलीय जलवायु, सीमित जल संसाधन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों ने यहाँ की भोजन संस्कृति को ऐसा स्वरूप दिया है जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी है। शेखावाटी का पारंपरिक भोजन स्थानीय कृषि, मौसम और जीवन शैली से गहराई से जुड़ा हुआ है। शेखावाटी में सदियों से ऐसा भोजन प्रचलित रहा है जो कम पानी में उगने वाली फसलों और स्थानीय उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है। बाजरा, मूंग, मोठ, चना, ग्वार और जौ यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न रहे हैं। ये अनाज न केवल पौष्टिक हैं, बल्कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने और मौसम के अनुरूप स्वास्थ्य बनाए रखने में भी सहायक हैं। शेखावाटी के भोजन में बाजरे की रोटी का विशेष स्थान है। बाजरा फाइबर, आयरन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सर्दियों में बाजरे की रोटी के साथ लहसुन की चटनी, छाछ या घी का सेवन शरीर को गर्मी और शक्ति प्रदान करता है।

श्रोताओं, आज जब दुनिया मोटे अनाजों यानी मिलेट्स की ओर लौट रही है, तब शेखावाटी की यह पारंपरिक खाद्य संस्कृति आधुनिक पोषण विज्ञान के अनुरूप सिद्ध हो रही है। मूंग और मोठ की दाल यहाँ के भोजन का अभिन्न हिस्सा है। ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं और शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करती हैं। दही से बनी कढ़ी भी यहाँ बड़े चाव से खाई

जाती है जो पाचन तंत्र के लिए लाभकारी मानी जाती है। गर्मी के मौसम में छाछ और मट्ठा शेखावटी के लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। ये शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं, पाचन को बेहतर बनाते हैं और निर्जलीकरण से भी बचाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन के साथ छाछ का सेवन आज भी सामान्य परंपरा है। शेखावाटी में उगने वाली केर, सांगरी, काचरी और ग्वारफली जैसी स्थानीय वनस्पतियां भोजन को विशेष स्वाद प्रदान करती हैं। इनमें अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये मरुस्थलीय परिस्थितियों में भी आसानी से उपलब्ध रहती हैं। श्रोताओं, पारंपरिक मिठाइयों की बात करें तो चूरमा, मालपुआ, रबड़ी, घेवर और मूंग दाल का हलवा शेखावाटी की लोकप्रिय मिठाइयां हैं। विशेष अवसरों और त्योहारों पर इनका विशेष महत्व होता है। हालांकि इनका सेवन संतुलित मात्रा में करना स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक भी माना जाता है। ग्रामीण शेखावाटी में कृषि और पशुपालन से जुड़े लोग शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, इसीलिए पारंपरिक भोजन में पर्याप्त ऊर्जा देने वाले तत्व शामिल किए गए हैं। घी, दूध, दही और मोटे अनाजों का संतुलित उपयोग शरीर को लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। श्रोताओं, समय के साथ खान पान की आदतों में बदलाव आया है। फास्ट फूड, अधिक चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बढ़ते उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी समस्याएं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगी हैं। ऐसे समय में शेखावाटी की पारंपरिक भोजन पद्धति हमें संतुलित और प्राकृतिक आहार का महत्व याद दिलाती है। शेखावाटी का खान पान केवल स्वाद का विषय नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन शैली का एक समृद्ध दर्शन है। बाजरे की रोटी, दालें, छाछ, स्थानीय सब्जियां और पारंपरिक व्यंजन इस क्षेत्र की जीवन शक्ति का आधार रहे हैं। आधुनिक समय में भी यदि इन पारंपरिक खाद्य आदतों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपनाया जाए तो स्वस्थ जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। शेखावाटी की थाली में केवल भोजन नहीं बल्कि प्रकृति, परंपरा और स्वास्थ्य का सुंदर संगम परोसा जाता है। श्रोताओं, राजस्थान की धरती सदियों से वीरता, त्याग और बलिदान की गाथाओं के लिए प्रसिद्ध रही है। इस वीर भूमि का एक महत्वपूर्ण अंचल है शेखावाटी, जिसने न केवल कला, संस्कृति और व्यापार के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई बल्कि शौर्य और राष्ट्रभक्ति की ऐसी मिसालें भी प्रस्तुत की जिन पर संपूर्ण देश को गर्व है। झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों में फैला शेखावाटी क्षेत्र आज भी वीरों की धरती के नाम से जाना जाता है।

की झलक दिखाई देती है। राजस्थान की अन्य रियासतों की तरह शेखावाटी के लोगों ने भी अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए अनेक युद्ध लड़े। वीरता यहाँ केवल राजाओं और योद्धाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामान्य जनजीवन का भी अभिन्न अंग बन गई। यदि भारत में सैनिक परंपरा वाले क्षेत्रों की बात की जाए तो शेखावाटी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। देश की सेना में इस क्षेत्र के हजारों जवान और अधिकारी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लगभग हर गांव में ऐसे परिवार मिल जाते हैं जिनकी कई पीढ़ियां सेना से जुड़ी रही हैं। कहा जाता है कि शेखावाटी के अनेक गांवों में सैनिक बनना केवल एक रोजगार नहीं बल्कि गौरव और परंपरा का विषय माना जाता है। बचपन से ही युवाओं में अनुशासन, देशभक्ति और साहस के संस्कार विकसित किए जाते हैं। शेखावाटी ने देश को अनेक वीर सैनिक दिए हैं जिन्होंने युद्ध भूमि में अदम्य साहस का परिचय दिया। इस क्षेत्र के अनेक सैनिकों को वीरता पुरस्कारों से सम्मान

शेखावाटी का इतिहास संघर्ष और साहस की अनेक घटनाओं से भरा हुआ है। इस क्षेत्र का नाम शेखावत राजपूत शासकों के नाम पर पड़ा, जिन्होंने अपनी वीरता, कुशल नेतृत्व और स्वाभिमान के बल पर इस क्षेत्र को विशिष्ट पहचान दिलाई। यहाँ के किलों, दुर्गों और ऐतिहासिक स्मारकों में आज भी उस गौरवशाली अतीत

विशेष रूप से झुंझुनू जिले के सैनिकों का योगदान उल्लेखनीय रहा है। यही कारण है कि झुंझुनू को कई बार भारत का सैनिक जिला भी कहा जाता है। यहाँ के सैनिकों ने स्वतंत्रता के बाद हुए लगभग सभी प्रमुख युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया है। सन 1999 के कारगिल युद्ध में शेखावाटी के अनेक वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके साहस और त्याग की कहानियां आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं। सीमा पर तैनात सैनिकों के प्रति यहाँ के समाज में विशेष सम्मान का भाव दिखाई देता है। जब कोई जवान छुट्टी पर गांव लौटता है तो उसका स्वागत किसी नायक की तरह किया जाता है। वहीं शहीद सैनिकों की अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ता है। शेखावाटी की शौर्य परंपरा केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यहाँ के लोक गीतों, लोक कथाओं और लोक नाट्यों में भी वीरता की झलक मिलती है। ग्रामीण महिलाएं अपने गीतों में वीर पुत्रों और रणबांकुरों का गुणगान करती हैं। लोक कथाओं में वीर योद्धाओं की गाथाएं सुनाई जाती हैं, जिससे नई पीढ़ी को साहस, त्याग और देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। गांवों के चौपालों पर आज भी युद्ध नायकों और शहीदों की कहानियां सुनाई जाती है। शेखावाटी की विशेषता यह है कि यहाँ वीरता और संस्कृति साथ साथ विकसित हुई हैं। एक ओर यहाँ भव्य हवेलियां, लोक कला और सांस्कृतिक धरोहरें हैं, तो दूसरी ओर देशभक्ति और बलिदान की गौरवशाली परंपरा भी है। यहाँ के लोक देवता गोगाजी और तेजाजी भी साहस, लोक कल्याण और रक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। उनके जीवन प्रसंग लोगों में निर्भय

श्रोताओं आज जब समाज तेजी से बदल रहा है तब शेखावाटी की शौर्य परंपरा युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। यह परंपरा सिखाती है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और कठिन परिस्थितियों में भी साहस अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा नहीं छोड़नी चाहिए। शेखावाटी के सैनिकों का जीवन यह संदेश देता है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करने में भी है। शेखावाटी की शौर्य परंपरा राजस्थान की गौरवशाली विरासत का अमूल्य अध्याय है। यहाँ की मिट्टी में वीरता स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के संस्कार रचे बसे हैं। इस क्षेत्र ने देश को ऐसे रणबांकुरे दिए हैं जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम बनाया है। शेखावाटी की रेत केवल हवाओं के साथ नहीं उड़ती, यह अपने साथ वीरता बलिदान और देशभक्ति की अनगिनत गाथाएं भी समेटे रहती हैं। श्रोताओं रेत के कणों में इतिहास रंगों में संस्कृति और रिवायतों में जीवन का दर्शन समेटे शेखावाटी वास्तव में राजस्थान की सांस्कृतिक आत्मा का एक उज्जवल स्वरूप है।

0: राजस्थान दर्शन। इस कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे शेखावटी की लोक संस्कृति और शौर्य परंपरा। ये आकाशवाणी
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उस्ताद बिस्मिल्ला खान का शहनाई वादन राग मल्हार का प्रकार विमल और द्रुत, तीन ताल में निबद्ध है।

0: शहनाई वादन। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने को लिए डटे हुए थे।
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई।

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं। प्रातः 5:52 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

0: three-match series at Sophia Gardens, Cardiff, when reports last came in. In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu outclassed world number 5 Han Yui of China to storm into the quarterfinals of the Japan Open in Tokyo today. She will next face Nozomi Okuhara of Japan tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं। प्रातः 5:52 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि, जय हिंद।